FM 102 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 21वीं तिथि, तदनुसार 11 मई सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:59 हो रहे हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ये पर्व मनाया जा रहा है। श्री मोदी सोमनाथ महादेव की पूजा करेंगे और कुंभ अभिषेक करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे और रोड शो में शामिल होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी उपस्थित रहेंगे। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने श्री हेमंत बिस्व शर्मा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। इससे राज्य में एनडीए के लगातार तीसरे कार्यकाल का रास्ता साफ हो गया है। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के विधायक दल का सर्वसम्मति से नेता चुने जाने के बाद श्री शर्मा ने गठबंधन के नेताओं के साथ लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और औपचारिक रूप से सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री आचार्य कल श्री शर्मा और नई मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता के शपथ दिलाएंगे। स्पेन के कैनरी द्वीप समूह के पास जहाज पर घातक हंता वायरस प्रकोप के बाद यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को उतारकर उनके देशों में भेजा जा रहा है। बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए सभी यात्रियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अंतर्गत रखा गया है। स्पेन और फ्रांस के नागरिकों को लेकर सरकारी विमान स्थानीय समय अनुसार कल दोपहर मैड्रिड और पेरिस पहुंचे। यात्रियों को परीक्षण के लिए अस्पताल ले जाया गया। कनाडा, तुर्की, ब्रिटेन, आयरलैंड और अमेरिका के नागरिकों के आज पहुंचने की संभावना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जहाज के सभी यात्रियों के लिए 42 दिन के क्वारंटाइन की सिफारिश की है। स्पेन में भारतीय दूतावास ने कहा है कि हंता वायरस से प्रभावित जहाज से उतारे गए दोनों भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और उनमें बीमारी के कोई लक्षण नहीं है। इस जहाज पर दो भारतीय सहित लगभग 150 लोग सवार थे। रूस ने कहा है कि वह नाटो या जर्मनी के साथ युद्ध नहीं चाहता, लेकिन यूरोप में संयुक्त परमाणु सुरक्षा कवच पर चर्चाओं से महाद्वीप का रणनीतिक संतुलन बिगड़ सकता है। जर्मनी में रूस के राजदूत सर्गेई नेचेयोव ने बर्लिन में कहा कि यूरोप में परमाणु खतरे के किसी भी विस्तार से रूस को अपने परमाणु सिद्धांत पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मॉस्को को सैन्य खतरों का सामना करना पड़ा तो वो संयम की गारंटी नहीं दे पाएगा। भारत के 6 खिलाड़ी ताशकंद में एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए, जबकि 7 को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। सेमीफाइनल में कल यश कुमार ने 33 किलो वर्ग संयुक्त अरब अमीरात के कियान इकबाल को 5-0 से हराया। 37 किलो वर्ग में वसंत अशोक कुमार ने किर्गिस्तान के अजतरेताली संझार बेकोफ को हराया। वहीं 43 किलो वर्ग में समीर बोहरा ने उज्बेकिस्तान के अदिजबेक इकलोमेव को 4-1 से जीत दर्ज की, जबकि सुदर्शन वासुदेव चांडक ने 52 किलो वर्ग में ईरान के अमीर मेहदी शाद को पराजित किया। 58 किलो वर्ग में मोहम्मद यासिर ने ईरान के सैयद दरिया मोहम्मद मूसा को, जबकि 67 किलो वर्ग में रौनक पराग लोखंडे ने किर्गिस्तान के मुखमदाली बेर्दिकोव को हराया। रोहित पोथियाना, नितिन नोकपोंगनबा, मेतई ओइना, प्रशांत हर्षवर्धन जीना, देव और सुशांत जयानी सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया है। मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 166 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.103.6 MHz, मीडियम वेव 212.3 मीटर अर्थात 1413 किलो हर्ट्स पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल का प्रसारण। आइए प्रभात काल के कुल कुछ पल समर्पित कर दें परम परमात्मा के श्री चरणों में, लीन हो जाएं प्रभु भक्ति में। भक्ति संगीत के कार्यक्रम अर्चना के माध्यम से

0: ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। कुछ ही क्षणों में आप हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। श्री मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लोगों से ईंधन का संयमित उपयोग करने की अपील की।
2: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
1: प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में लगभग 9400 करोड़ रुपए की ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार

मुझे शाम तेरी दरकार है, तू ही सांवरे मेरी सरकार है, तू ही मेरी नैया की पतवार है, तू ही मेरे नैनों का श्रृंगार है, तुझ पर ये जीवन निसार है।

पलके झुके और नमन हो जाए, मस्तक झुके और वंदन हो जाए। ऐसी दृष्टि कहाँ से लाऊं कि प्रभु को याद करूं और दर्शन हो जाए।

जिसका कोई नहीं आकार, वही करता सब कुछ साकार। भाव भक्ति से कर लो वंदन, तभी करें वो याचना को स्वीकार।

आओ भगवान भोले का वंदन करें, मन शुभ सुभाषित तन को चंदन करें, श्रद्धा भक्ति आस्था बढ़ती रहे सर्वदा, ये जीवन शिव चरण में समर्पित करें।

आज की अर्चना को सुशोभित करने वाले पुष्प स्वर थे हरिहरण, अनूप जलोटा, तुलसी कुमार और जगजीत सिंह के। ये जीवन तुमने दिया, संभालोगे भी तुम, आशा नहीं विश्वास है, हर मुश्किल से निकालोगे भी तुम। इसी के साथ भक्ति संगीत के कार्यक्रम अर्चना को देते हैं विराम।

अभी आप भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना सुन रहे थे। FM 102 व 103.6 MHz, मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल का प्रसारण। लीजिए सुनिए श्री रामचरितमानस गान। मुख्य स्वर सुरेश वाडेकर का, संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का।

राजा जनक की नगरी देखने के क्रम में पुरवासियों के मन मोहते हुए श्रीराम अपने अनुज लक्ष्मण के साथ नगर के पूर्व भाग में पहुंचते हैं, जहां धनुष यज्ञ की रंगभूमि की रचना की गई है। जनकपुर के बालकगण बड़े उत्साह तथा आदर के साथ दोनों भाइयों को यज्ञशाला की रचना दिखा रहे हैं। श्रीराम ने अपनी मधुर मनोहर वाणी में अनुज लक्ष्मण को यज्ञ भूमि का परिचय दिया और दोनों भाई सारा कौतुक देख गुरु के पास लौट चले।

अभी आप श्री रामचरितमानस का संगीतमय प्रसारण सुन रहे थे। मुख्य स्वर था सुरेश वाडकर का, संगीत निर्देशन था सतीश भाटिया का। FM 102 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1400

0: 413 किलोहर्ट्ज़ पर। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंपल चैनल का प्रसारण। लीजिए सुनिए पर्यावरण चेतना से जुड़ा कार्यक्रम आबोहवा। लघु वार्ता का विषय है कार्बन का अर्थशास्त्र। वार्ताकार हैं डॉक्टर शिबा खान।
1: कार्बन आवर्त सारणी के आवर्त द्वितीय तथा वर्ग 14 का सदस्य है। ये पी ब्लॉक का सदस्य है। आवर्त सारणी में कार्बन को किंग ऑफ एलिमेंट अर्थात तत्वों के राजा का दर्जा प्राप्त है। कार्बन प्राकृतिक रूप से सूर्य में, तारों में, ग्रहों में और उल्कापात पिंड के मलबे में पाया जाता है। भूगर्भिक दृष्टि से यदि हम कार्बन का वितरण देखें तो हम पाते हैं कि भूगर्भिक कार्बन 99% तथा वायुमंडलीय कार्बन 1% है। पृथ्वी में कार्बन प्रचुर मात्रा में शुद्ध व अशुद्ध रूपों में पाया जाता है। कार्बन के शुद्ध रूप ग्रेफाइट, हीरा, फ्लोरिन्स एवं ग्रेफीन है, जबकि अशुद्ध रूप में चारकोल व कोक है। पृथ्वी पर कोयले की प्रचुर मात्रा में भंडार है, जिनमें पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनी व एंथ्रासाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है। एंथ्रासाइट सर्वश्रेष्ठ प्रकार का कोयला है, जिसमें कार्बन की मात्रा 92% से अधिक होती है। कोयला विद्युत उत्पादन हेतु ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। कोयला देश की सभी थर्मल प्लांट में ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग किया जाता है, जिससे विद्युत का निर्माण होता है। पृथ्वी पर कार्बन वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पाया जाता है, जिसकी सांद्रता 390 ppm है, जो लगातार बढ़ रही है। वायुमंडल में इसका चक्रण गैसीय रूप में होता है। कार्बन जीवन के लिए अति आवश्यक तत्व है। कार्बन के बिना जीवन की कल्पना करना असंभव है, क्योंकि कार्बन अपनी श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति के कारण सभी कार्बनिक पदार्थों जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व लिपिड का निर्माण करता है। जीवन का आधार प्रोटोप्लाज्म है और प्रोटोप्लाज्म का निर्माण मुख्यतः ये तीनों कार्बनिक पदार्थ करते हैं। हर जीव, चाहे वो पादप हो या सजीव हो, उनका शरीर कोशिकाओं के द्वारा निर्मित है और हर कोशिका का भौतिक आधार प्रोटोप्लाज्म है। जीव कार्बन का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में या जल में घुलनशील अवस्था में करते हैं। मनुष्य के शरीर में कार्बन कार्बोनेट व बाइकार्बोनेट के रूप में मौजूद होता है। यदि हम पौधों के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो हरे पादप कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में ग्रहण करते हैं तथा पर्णहरित व सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल के साथ क्रिया कर स्वांगीकृत कर ग्लूकोज का निर्माण करते हैं एवं ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। ये ऑक्सीजन पादप जगत व सजीव जगत दोनों के लिए प्राणदायिनी है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में कार्बन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये उत्पादकों को कार्बनिक यौगिक बनाने हेतु कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध करवाता है। कार्बनिक यौगिक शर्कराओं के रूप में होते हैं, जो उपभोक्ताओं तथा शेष पोषण स्तरों के जीवन का आधार होता है। समस्त जीवों के कार्बनिक पदार्थों के शुष्क भार का लगभग 49% भाग कार्बन ही होता है। कार्बन कई रसायनों के संश्लेषण के लिए आधारी इकाई का कार्य करता है, जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोल, कीटोन, एस्टर, एसिड, एमाइड, साइनाइड एवं एरोमेटिक यौगिक। वर्तमान में कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि कार्बन का मुख्य गैसीय स्रोत है, की मात्रा में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसका मुख्य कारण वन विनाश, जीवाश्म ईंधन का दहन, औद्योगिकरण, वाहनों से निकला धुआं आदि है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। इसके परिणाम व्यापक एवं भूमंडलीय हैं। हरित गृह प्रभाव का मुख्य परिणाम भूमंडलीय तापन है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की सतही वृद्धि से कम तरंग दैर्ध्य की अवरत विकिरणों को अवशोषित कर लिया जाता है। ये परावर्तित होकर पुनः वायुमंडल में नहीं लौट पाती है और पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ाती रहती है। कार्बन डाइऑक्साइड वाहनों के लगातार उपयोग करने के कारण इसकी मात्रा में वृद्धि होती जा रही है। इस कार्बन डाइऑक्साइड को हमें रोकना होगा, क्योंकि इस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ग्लोबल वार्मिंग अर्थात भूमंडलीय तापन बढ़ता जा रहा है, जिसका सीधा असर पृथ्वी की जलवायु एवं मौसम पर पड़ रहा है। वर्तमान में जो भी आपदाएं आती हैं, जैसे चक्रवात, ओलावृष्टि, भूकंप, बाढ़, इनमें निरंतर वृद्धि हो रही है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण जैव विविधताओं को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इन सब का कारण पर्यावरणीय घटकों में असंतुलन है। इस कार्यक्रम के जरिए मैं आप सभी

0: से यही कहना चाहूंगी कि हमारे प्रयास हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए होना चाहिए। हमें कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए अपना योगदान देना चाहिए। हमारे पर्यावरण का हम संतुलन नहीं बिगाड़ सके और पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखें।
1: कार्बन का अर्थशास्त्र, ये लघु वार्ता अभी आप सुन रहे थे पर्यावरण चेतना से जुड़े कार्यक्रम आबोहवा में। वार्ताकार थी डॉक्टर शिबा खान। कार्यक्रम का संयोजन था हिमांशु नामा का। समय है कार्यक्रम विवरण का। लीजिए आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी हम आपको दे दें। स्थानीय सूचनाओं से जुड़ा कार्यक्रम नमस्कार कोटा सुबह 7 बजे आप सुनेंगे। सुबह 8:15 का समय रहेगा काव्यांजलि में कोमल नाजुक का काव्य पाठ सुनने का। कार्यक्रम महिला जगत का समय रहेगा सुबह 9:30 का। इसके अंतर्गत चर्चा होगी फूड स्टोरेज के लिए सेफ्टी टिप्स। सकारात्मक पारिवारिक संस्कृति का निर्माण विषय पर जानकारी देंगी स्वाति गौतम। फिल्म संगीत में आज आप सुनेंगे एक ही फिल्म से सुबह 7:30 पर। सुबह 8:30 पर सुनिएगा सुगम संगीत और सुबह 9:10 का समय रहेगा फिल्म संगीत का। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनेंगे दोपहर 12 बजे। शाम 5 बजे कार्यक्रम युवाणी में आज का संवाद होगा सम्मान अर्जित किया जाता है मांगा नहीं विषय पर। परिवेश हमारा में आप सुनेंगे हीटवेव। नॉलेज कॉर्नर में जय कृष्णमूर्ति की जन्म जयंती, आसफ अली की जयंती, सदा सादत हसन मंटू की जन्म जयंती, साथ ही आप सुनेंगे करंट अफेयर्स, रोजगार सूचनाएं और खेल गतिविधियां। सायं 7 बजे कार्यक्रम चौपाल में चर्चा होगी किसानों के लिए स्टार्टअप और एग्री बिजनेस अवसर विषय पर। कद्दू और खीरा वर्गीय फसलों में कृषि कार्य विषय पर जानकारी देंगी रितिका चौधरी और जानकारी में एकीकृत कीट नियंत्रण प्रबंधन के बारे में आप जानेंगे। फिल्म संगीत आप सुनेंगे शाम 6:05 पर और रात्रि 8 बजे। रात्रि 9 बजे का समय रहेगा फिल्म संगीत में बदलते साथी का और लोक संगीत आप सुन सकते हैं सायं 7:30 पर। समाचारों का समय और विविध भारती के कार्यक्रम यथावत रहेंगे। ये थे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम।

एफएम 102.103 MHz, मीडियम वेव 212.1 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज़ पर आप बने हुए हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल के साथ। प्रातः के 6:55 होने को हैं। कुछ ही क्षणों में आप हमारे दिल्ली केंद्र से संस्कृत में समाचार सुनेंगे।

0: हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
1: इदानींतन वर्षेषु वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकेषु शीर्ष श्रेण्यां भारतस्य उल्लेखनीयां प्रगतिम् उद्धृत्य प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् पेट्रोल ईंधनेन सह इथेनॉल इत्यस्य मिश्रणे अपूर्व प्रगतिः अभवत्।
0: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा।
1: प्रथमस्य

FM 102-103 दशमलव छह मेगा हर्ट्स, मीडियम वेव 212 दशमलव 3.1 मीटर अर्थात 1413 किलो हर्ट्स पर सुंदर सुबह का विचार आकाशवाणी गोटा बूंदी का चंबल चैनल करे साकार। जानकारियों का खजाना, सूचनाओं का भंडार, किसी खास शख्सियत से मुलाकात और गीत संगीत की बहार, हम लेकर उपस्थित हैं आपका मनचाहा कार्यक्रम नमस्कार कोटा।

प्रयास करना आवश्यक है। ध्रुव तारे को पाने के लिए यदि दक्षिण दिशा में परिक्रमा करते रहोगे तो लक्ष्य को कैसे प्राप्त करोगे? जब भी अग्निकांड होता है तो सबसे पहले आप उस अग्नि को बुझाने का प्रयास करते हैं और उसके बुझते ही प्रश्न करते हैं, विचार करते हैं कि आग कैसे लगी, किस कारण लगी। उसके बाद सावधानी बरतते हैं कि दोबारा ऐसा न घटे। समस्या आने पर सही दिशा में सोचना आवश्यक है। पहले निवारण फिर चिंतन करोगे तो खुद समाधान बनोगे, समस्या नहीं। तो लक्ष्य साधने की अगर बात करें तो सभी को धनुष बाण का स्मरण आता है। बाण और धनुष दोनों में उचित संतुलन का होना आवश्यक है, तभी वे लक्ष्य साध सकते हैं। शक्ति का प्रयोग यदि उचित दिशा में ना हुआ तो उसका कोई उपयोग नहीं। प्रतिभा को जब तक आगे बढ़ाने का बल न मिले तो वो फलीभूत नहीं होती। एक दूसरे के बिना इनका कोई अर्थ नहीं, इसलिए न शक्ति का अभिमान करो न प्रतिभा का। साथ मिलकर संतुलन में चलोगे तो जीवन के हर लक्ष्य को साध पाओगे।

सुप्रभात कह अभिवादन करें हम, शुभ दिवस की कामना करें हम, आपका अभिनंदन स्वागत करें हम, आपके मंगलमय दिवस की कामना करें हम। कार्यक्रम का शुभारंभ शशि सोनी की आवाज के साथ।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार कोटा। मेक इन इंडिया भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसे 25 सितंबर 2014 को प्रधानमंत्री द्वारा देश को वैश्विक विनिर्माण

निर्माण केंद्र बनाने और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए शुरू किया गया था। इसका लक्ष्य विदेशी निवेश आकर्षित करना, नवाचार को बढ़ावा देना, कौशल विकास और 2025 तक विनिर्माण क्षेत्र की GDP का 25% तक बढ़ाना है। बात करें उद्देश्य की तो भारत में उत्पादों के विकास और संयोजन को प्रोत्साहित करना, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना और लाखों रोजगार पैदा करना है। इसमें रक्षा, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, रेलवे और चिकित्सा उपकरण जैसे 25 से अधिक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। 25 सितंबर 2024 को इस पहल ने 10 वर्ष पूरे कर लिए, जिसमें विनिर्माण निवेश और रोजगार सृजन में उल्लेखनीय प्रगति देखी गई। व्यापार करने में आसानी के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नियमों में ढील दी गई है। यह पहल मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के मंत्र के साथ देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही है।

0: 1927 से पहले भारत के पास ऐसा कोई सशक्त माध्यम नहीं था जो भारत को एक सूत्र में पिरो सके। 23 जुलाई 1927 को बॉम्बे से पहली बार रेडियो की आवाज गूंजी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के नाम से। 8 जून 1936 को इसे नया नाम मिला ऑल इंडिया रेडियो। एक ऐसी आवाज जो हर दिल तक पहुंची। धीरे धीरे ये सिर्फ एक आवाज नहीं रही, ये बनी भरोसे की अटूट पहचान, सूचना का सटीक स्रोत और भावनाओं की मजबूत डोर। यहीं से शुरू हुई आकाशवाणी की गौरवशाली यात्रा जो आज भी हर सुबह हर घर में गूंजती है।
1: गर्मियों का मौसम है तो आवश्यक है सतर्कता। गर्मियों में आहार विहार संतुलित होना बहुत ही आवश्यक है। स्वस्थ रहने के लिए हल्का, ताजा और आसानी से पचने वाला संतुलित आहार लें। शरीर को हाइड्रेटेड रखने के लिए पर्याप्त पानी, छाछ और नारियल पानी पीना चाहिए। मौसमी फल और सलाद उसमें शामिल किए जा सकते हैं, जैसे खीरा, तरबूज, जबकि भारी मसालेदार और तली भुनी चीजों से दूर रहना चाहिए। और जैसा कि हमारे राजस्थान में गर्मी तेज पड़ती है तो अपनी सेहत को दुरुस्त रखने के लिए आहार और विहार का संतुलन तो आवश्यक है ही। बात करें संतुलित आहार की तो दिन की शुरुआत नींबू पानी या ताजे नारियल पानी से कर सकते हैं। पाचन और ठंडक के लिए रोज छाछ, मट्ठा या बील का शरबत पी सकते हैं और कैफीन और पेक कोल्ड ड्रिंक्स से हमें बचना चाहिए। पानी से भरपूर तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा और आम का सेवन किया जाना आवश्यक है, लेकिन इन फलों को हमेशा ठंडा करके खाएं। हम खरीद कर लाए और गरम गरम इनका सेवन कभी भी ना करें, वरना ये नुकसान करते हैं। तो ये शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी नहीं होने देते। दोपहर के खाने में लौकी, तोरई और टिंडे जैसी हल्की हरी सब्जियां खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। इसके साथ गेहूं की रोटी के बजाय यदि आसानी से पचने वाली जौ या बाजरे की रोटी आप खाते हैं और साथ ही सलाद भी शामिल कर सकते हैं। एक कटोरी ताजा दही या रायता आंतों को स्वस्थ रखता है और पाचन में मदद करता है। और आहार के साथ साथ संतुलित विहार भी आवश्यक है। धूप से बचाव बहुत जरूरी है। दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक चिलचिलाती धूप में निकलने से बचें। यदि बाहर जाना हो तो सिर और चेहरे को ढक कर रखें। छाते का उपयोग भी कर सकते हैं। समय पर भोजन करना भी गर्मियों में बहुत ज्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि गर्मियों में दिन बड़े होते हैं। सुबह का नाश्ता पौष्टिक होना चाहिए। रात का खाना सोने से 2-3 घंटे पहले खा लेना अच्छा होता है और खाना हमेशा हल्का रखें। गर्मियों में भारी वर्कआउट के बजाय सुबह या शाम के ठंडे समय में योग, प्राणायाम और हल्की सैर कर सकते हैं। और राजस्थानी पारंपरिक तरीकों को अपनाना बहुत ही अच्छा है, जैसे मटके का पानी पीना। गर्मियों में पाचन धीमा हो जाता है, इसलिए एक बार में पेट भरकर खाने के बजाय थोड़े थोड़े अंतराल में छोटे भोजन को किया जाना चाहिए। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही

0: आवश्यक है। तो गर्मियों के मौसम में अपने स्वास्थ्य का रखें ख्याल।
1: अब दुनिया के किसी भी हिस्से में सुनिए आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल।
2: ओ पिव जी, ओ ढोला जी, ओ पिव जी, थोड़ी सी ना जा दे।
1: प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर गूंज रहा है आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल। अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन एआईआर। इस ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करने के बाद रेडियो आइकन का चुनाव करिए और अब आकाशवाणी कोटा को अपने मोबाइल पर सुनने का आनंद लीजिए।

0: अपनी बोली, अपना संगीत, कभी भी, कहीं भी, आकाशवाणी कोटा के चंबल चैनल पर।
1: रेडियो से प्यार सदी के द्वार, रेडियो 90 वर्षों का सफर तय कर चुका है। हम सदी के द्वार आ पहुंचे हैं। इन 90 वर्षों का सफर बहुत ही खूबसूरत, शानदार और यादगार रहा है। हमें प्रसन्नता है कि इस यादगार सफर में हम भी भागीदारी निभा रहे हैं। एक बहुत ही बड़ी संख्या में हमारे रेडियो श्रोता इस सफर को और भी खूबसूरत बना देते हैं। जब हम हमारे रेडियो श्रोताओं से बात करते हैं, उनके मन की बातें सुनते हैं, तो बहुत खुशी होती है कि श्रोता जो उनके मन में रेडियो के प्रति आज भी वही प्यार, विश्वास और सम्मान है। रेडियो का आविष्कार एक नई क्रांति थी जो संचार का एक बहुत बड़ा और सशक्त माध्यम बना। रेडियो के आविष्कार को एक सदी होने को है और इसके बाद अनेक संसाधनों के आविष्कार हुए, किंतु रेडियो के प्रति लोगों का जो दृष्टिकोण, विश्वास और प्यार है आज भी वही है। आकाशवाणी के प्रति वही प्रेम, सम्मान बना हुआ है। किसी भी घटना के बारे में यदि सटीक जानकारी चाहिए तो सब रेडियो की तरफ देखते हैं। ये विश्वास शुरू हुआ आज तक वैसा ही बना हुआ है। हमारे देश में रेडियो लाखों की संख्या में आज भी मौजूद हैं, जिनके दिल में आज भी रेडियो बसा हुआ है। तो आज हमारे साथ बात करने के लिए फोन लाइन पर हैं सवाई माधोपुर से रेडियो प्रेमी श्रोता चंदन सोनी। तो आइए करते हैं इनसे बातचीत। हेलो,
2: हेलो,
1: नमस्कार। कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है।
2: जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: और जैसा कि आपको विदित है, रेडियो 90 वर्षों का सफर तय कर रहा है। आज इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि आप कब से रेडियो से जुड़े हुए हैं।
2: शायद ये तो कहना मुमकिन ना होगा कि मैं कब से जुड़ा हुआ हूँ
1: जी,
2: लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि हमारे घर में जब से मैं समझने लगा था
1: जी,
2: तब से ही वो काफी पुराने टाइप के जो रेडियो होते थे वो सदैव या रोज यूं मानिए कि वो अपनी सेवाएं हमें देता था और हम उसी के साथ बड़े हुए
1: जी।
2: तो मैं इसको तो कहना अतिशयोक्ति होगी कि मैं कब से जुड़ा, पर ये है कि मैं इसी के साथ बड़ा हुआ।
1: वाह, क्या बात है
2: जी।
1: तो कौन कौन से कार्यक्रम आप सुनते हैं रेडियो पर?
2: कार्यक्रम का अगर मैं डेफिनेशन दूं तो ये शायद एक वर्गीकरण करना हो जाएगा जो कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा माध्यम है
1: जी
2: कि जो, चलिए मैं मेरी खुद की बात बताता हूँ कि मेरे जीवन को प्रभावित कैसे करता है। मैं क्योंकि संगीत मैं बता ही रहा हूँ कि मैं शुरू से सुनता हूँ तो मुझे अच्छा भी लगता है
1: जी।
2: तो ये सेवा तो इसकी मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इसके अलावा आपके माध्यम से जो मुझे साहित्य, क्यों समझिए कि मेरे पिताजी स्वर्गीय नरोत्तम जी सोनी जो थे
1: जी,
2: उन्होंने अपने जीवन में साहित्य से जुड़ा हुआ जैसा भी घर में माहौल रखा उसको पढ़ाया है, रेडियो के द्वारा प्रसारित हुए जितने भी कार्यक्रम रहे
1: जी,
2: उन सब ने
1: जी
2: ऐसा ही एक दृष्टिकोण पिताजी का रहा था स्वास्थ्य के प्रति
1: जी।
2: और उनमें भी आपका जो रेडियो इन प्रोग्राम कार्यक्रमों को प्रसारित करता है
1: जी।

0: वो विधा भी हमारे अंदर मौजूद रही। क्यों? क्योंकि उसको घर में भी जानते थे लेकिन आप उसे निखारते भी थे। तो मैं साहित्य संगीत अलावा स्वास्थ्य, अब आपके जो कार्यक्रम होते हैं उनमें जो डॉक्टर आते हैं वो छोटी छोटी बातें बताते हैं लेकिन जीवन में कितना मायने रखता है ये सुनने और गुनने वाला बहुत अच्छी तरह जानेगा।
1: जी बिल्कुल, आप बहुत ही ध्यान से हमारे कार्यक्रम सुनते हैं, आपकी बातों से पता चल रहा है।
0: जी,
1: तो रेडियो के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
0: अब जैसे आपने ये प्रश्न मुझसे पूछा है तो एक छोटी सी बात, शायद आप या सभी जानते होंगे कि रेडियो तरंगों की स्पीड 186,000 या 90,000 कुछ पर सेकेंड होती है।
1: जी,
0: आपने पूछा तब तक वो पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर आ चुका है ये प्रश्न, और फिर मैं दोबारा
1: दोबारा
0: इसका जवाब देना चाहूंगा कि ये एक ऐसा माध्यम है कि श्रव्य माध्यम इसको बोलेंगे, इसकी पहुंच इतनी व्यापक है कि ये बहुत तेजी से काम करता है। और पोर्टेबिलिटी आप ये देखिए कि कहीं आप किसी और माध्यम को अगर आप अपने जीवन में उतारना चाहें तो उसके लिए काफी पैसा भी खर्च करना पड़ सकता है
1: जी।
0: लेकिन ये चीज ऐसी है कि बिना किसी इंटरनेट लाइट ना हो तो भी बैटरी के द्वारा
1: जी।
0: ये अपनी प्रत्येक बात को श्रोताओं के मन तक उतारने में बिल्कुल सक्षम है।
1: वाह
0: जी,
1: आपके विचार जानकर, आपकी बात, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। और कुछ कहना चाहेंगे आप हमारे श्रोताओं को?
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं सबसे बड़ी इसकी जो विशेषता है कि रेडियो को सुनते हुए आप अन्य कार्य कर सकते हैं
1: जी।
0: टीवी या मोबाइल या XYZ आपकी नजर उस पर रहनी आवश्यक है। लेकिन इसमें यह खासियत है कि आप इसको कहीं भी रख सकते हैं, कहीं भी किसी भी कार्य में जुड़े हुए अपना काम कर सकते हैं
1: जी।
0: दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, मुख्य बात, कि मानव आवाज, संगीत, ध्वनि, प्रभाव, इन तत्वों का उपयोग करके जो रेडियो हमारे सामने परिदृश्य या छवियां बनाता है
1: जी,
0: तो इन सभी को सुनते हुए जो रेडियो श्रोता होते हैं वो बिना उन दृश्यों में जाए हुए उनका आनंद लेते हैं।
1: बिल्कुल
0: हाँ, और ये मैं एक बात कहूंगा कि जगदीश चंद्र जो पोस्ट जो 1895 में इसके काम पर लगे हुए थे
1: जी,
0: उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि ये जीवन को इतना महत्वपूर्ण अंग है
1: कि
0: हमें बहुत सुंदरता से ये संभाले हुए हैं।
1: बहुत ही खूबसूरत बातें आपने कही और बहुत अच्छी जानकारी आप रखते हैं रेडियो के प्रति। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने अपना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस मुकाम तक लाने के लिए कि मैं उस चीज के बारे में कह पाऊँ कि जो मेरे जीवन से जुड़ी हुई है।
1: जी बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो श्रोताओं, हमारे साथ सवाई माधोपुर से रेडियो प्रेमी श्रोता चंदन सोनी जुड़े हुए थे और हमने बातचीत की उनसे, और लीजिए कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हर वर्ष 11 मई को भारत में मनाया जाता है। यह दिन 11 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण में भारत द्वारा सफलतापूर्वक किए गए परमाणु परीक्षणों की याद में मनाया जाता है, जिसके कारण भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गया। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ ही उसी दिन स्वदेशी रूप से विकसित हंसा 3 विमान की पहली उड़ान भी हुई थी। इस दिन को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस घोषित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य देश के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और शोधकर्ताओं के योगदान को सम्मानित करना और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नवाचार और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना था। प्रत्येक वर्ष भारतीय प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उनके योगदान के लिए व्यक्तियों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करके इस दिन को मनाता है। इस वर्ष का फोकस सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण है। इस दिन भारत में 11 मई 1998 में पोखरण में परमाणु बमों का सफलतापूर्वक परीक्षण

किया गया था। परमाणु मिसाइल का राजस्थान में भारतीय सेना के पोखरण टेस्ट रेंज में परीक्षण किए गए। मई 1974 में पोखरण एक के ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के बाद आयोजित यह दूसरा परीक्षण था। भारत में पोखरण सेकेंड नामक एक ऑपरेशन में अपनी शक्ति एक परमाणु मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, जिसे ऑपरेशन शक्ति के रूप में जाना गया। उसी दिन भारत ने त्रिशूल मिसाइल की सफलता परीक्षण फायरिंग की और पहले स्वदेशी विमान हंसा 3 का परीक्षण किया।

और लीजिए कुछ सूचनाएं आप तक पहुंचा दें। जेईई एडवांस 2026 प्रवेश परीक्षा के एडमिट कार्ड सोमवार सुबह 10 बजे जारी किए जाएंगे। परीक्षा का आयोजन 17 मई को दो शिफ्टों में होगा। ज्वाइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी 2025 की सीट मैट्रिक्स के अनुसार देश में 23 आईआईटी संस्थानों में बीटेक, इंटीग्रेटेड, एमटेक और ड्यूल डिग्री पाठ्यक्रमों की कुल 18,160 सीटें उपलब्ध है। वहीं पिछले वर्षों के आंकड़ों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि औसतन 1,80,000 विद्यार्थी इन सीटों के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं। आरपीएससी के आरएएस मुख्य परीक्षा 2024 के तहत सफल और असफल अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों की पुनर्गणना के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। अभ्यर्थी सोमवार को आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसकी अंतिम तिथि 20 मई होगी। बात करें मौसम की तो राज्य के पश्चिमी विक्षोभ के साथ साथ लू का असर भी देखने को मिल रहा है। पश्चिमी राजस्थान में भीषण गर्मी और हीट वेव के साथ दक्षिण पूर्वी जिलों में आंधी बारिश का दौर जारी है। रविवार को राज्य के अनेक जिलों में हीट वेव का असर रहा तो वहीं पश्चिमी विक्षोभ का असर भी कुछ राज्यों में देखने को मिला। मौसम केंद्र के अनुसार सोमवार को कुछ जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। और साथ ही हम बता दें कोटा का तापमान 41.8 डिग्री सेल्सियस रहा और न्यूनतम 25.9 डिग्री सेल्सियस रहा। और लीजिए अब आपको सुनवा देते हैं ये गीत।

संवाद एक माध्यम है मन के बीच विचारों के आदान प्रदान का। इस संसार में हर जीव संवाद से अपनी भावनाएं व्यक्त करता है, कोई स्वर से तो कोई बिना कहे संकेतों से। यह संवाद ही तो है जो बड़ी से बड़ी समस्या का हल निकालता है, और यही संवाद नई समस्या को जन्म भी दे सकता है। बस शब्द ये निश्चित करते हैं कि शब्द ओजदी का कार्य कर रहे हैं या विष का। शब्द ब्रह्म भी है और ब्रह्मास्त्र भी। शब्दों को चुनने से पहले उनके पीछे के भाव को समझिए, क्योंकि यदि शब्द मुखर गए तो यही संवाद विवाद में बदल सकता है, और यदि विचारों को महत्व दिया गया तो यही संवाद संबंधों में बदला जा सकता है। तो चयन आपका है, संवाद विचारों का होगा तो हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा, और यदि केवल शब्दों का होगा तो नए प्रश्न खड़े कर देगा। और इसी के साथ कार्यक्रम का समय समाप्ति की ओर। हम आपको बता दें, कार्यक्रम का संयोजन था तेजराम मीणा, प्रस्तुति थी राजेश महावर की, और अब अनुमति दीजिए शशि सोनी को। नमस्कार कोटा।

एफ एम 102.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 KHz पर आपका और हमारा बना हुआ है साथ आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल पर। हम लेकर हाजिर हैं फिल्म संगीत। आज आप सुनेंगे एक ही फिल्म से, तो आज की फिल्म कौन सी होगी? जी हाँ, 1965 में बनी फिल्म आरजू के गीत आप सुनेंगे। आरजू 1965 में बनी हिंदी फिल्म जो कश्मीर में बनाई गई और उसमें राजेंद्र कुमार, साधना और फिरोज खान ने मुख्य भूमिका निभाई।

ये आवाज़ सुनकर आप समझ ही गए होंगे कि इस गीत को मोहम्मद रफ़ी ने गाया था।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: आरजू एक बॉलीवुड फिल्म है जिसका निर्देशन निर्माता और लेखक रामानंद सागर थे। यह फिल्म 1957 की हॉलीवुड फिल्म एन अफेयर टू रिमेम्बर पर आधारित थी, जो स्वयं 1939 की फिल्म लव अफेयर का रीमेक थी।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: फिल्म आरजू के सभी गीत हसरत जयपुरी द्वारा लिखे गए और संगीत शंकर जयकिशन द्वारा दिया गया। अभी आपने लता मंगेशकर के स्वर में ये गीत सुना था और अब आप सुनेंगे मोहम्मद रफी का गाया ये गीत।

ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत में एक ही फिल्म से। हमारी आज की फिल्म है आरजू, जो 1965 में बनी। इस फिल्म के गीत जो गाए, आवाजें जिन्होंने दी, मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर, आशा भोसले और मुबारक बेगम। और लीजिए अब मोहम्मद रफी का गाया ये गीत आपको सुनवाते हैं।

फिल्म आरजू में मुख्य भूमिका निभाने वाले कलाकार थे राजेंद्र कुमार, साधना और फिरोज खान। अन्य कलाकार थे महमूद अली, नाजिमा, नजीर हुसैन, अचला सचदेव, नाना पालसीकर, ब्रह्म भारद्वाज, धूमल, हरी शिवदासानी, मलिका, जानकीदास मेहरा और अन्य कलाकार।

फिल्म आरजू को जिन पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था वे थे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए राजेंद्र कुमार का पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए रामानंद सागर, सर्वश्रेष्ठ कहानी के लिए रामानंद सागर, अजी रूट कर अब कहां जाइएगा जो गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में, इसके लिए हसरत जयपुरी सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के लिए शंकर जयकिशन का पुरस्कार।

लीजिए सुनिए कार्यक्रम संबंधी सूचना। कार्यक्रम नमस्कार कोटा में मंगलवार दिनांक 12 मई को सुबह 7 बजे से 7:30 के मध्य आप सुनेंगे हमारी अतिथि विशेषज्ञ श्रीमती अभिलाषा जैनवियर से भेंटवार्ता। विषय रहेगा नर्सिंग एक सेवा कार्य। इस बातचीत में अतिथि विशेषज्ञ के साथ भेंट करेंगे राजेश महावर। तो इस कार्यक्रम को जरूर सुनिएगा। सुबह सवेरे का यह कार्यक्रम नमस्कार कोटा 7 बजे से। ६५ की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म थी आरजू, जिसके गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। यह एक ऐसे प्रेम की कहानी है जिसने जीवन और भाग्य पर विजय प्राप्त की। इस गीत को अब आप सुनिए आशा भोसले और मुबारक बेगम के स्वर में।

आप सुन रहे थे फिल्म संगीत में एक ही फिल्म से। आज की हमारी फिल्म थी आरजू, जो 1965 में बनी थी। फिल्म संगीत का संयोजन किया राजेश महावर ने। FM 102 व 103.6 MHz, मीडियम वेव 212.3 मीटर अर्थात 1413 किलो हर्ट्स पर यह आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। प्रातः के 8 बजने को हैं। कुछ ही क्षणों में आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच नागरिकों से एक वर्ष तक सोना नहीं खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा संरक्षित करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। वडोदरा में सरदार धाम हॉस्टल का शुभारंभ करेंगे। असम के राज्यपाल ने हिमंत बिस्व शर्मा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। उत्तराखंड सरकार ने प्रतिकूल मौसम के बीच चारधाम यात्रियों और पर्यटकों से सतर्क रहने और यात्रा के दौरान सुरक्षा बरतने का आग्रह किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया। और AFC अंडर 17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज भारत और मेजबान चीन सूजों में आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। श्री मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक जनसभा में नागरिकों से एक वर्ष के लिए पेट्रोल और डीजल के संयमित उपयोग, अनावश्यक विदेशी यात्रा से बचने, सोने की खरीदारी नहीं करने और स्थानीय वस्तुओं को प्राथमिकता देने जैसे उपाय अपनाने की अपील की।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर यह पर्व मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी उपस्थित रहेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवाई मार्ग से जामनगर से सोमनाथ पहुंचेंगे। हेलीपैड पर उतरने के बाद वे वीर

0: अमित जी गोहिल सर्कल तक रोड शो के दौरान जनता का अभिवादन स्वीकार करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, जिन्होंने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का सपना देखा था। श्री मोदी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करेंगे तथा मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक और ध्वजारोहण भी करेंगे। इस अवसर पर भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम सोमनाथ के आकाश में रोमांचक एयर शो प्रस्तुत करेंगी। पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वे एक विशेष स्मारक डाक टिकट और ₹75 का विशेष स्मारक सिक्का भी जारी करेंगे। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
1: बाद में प्रधानमंत्री वडोदरा जाएंगे। वे शाम लगभग 6 बजे सरदार धाम हॉस्टल परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इस परियोजना में 1000 लड़कों और 1000 लड़कियों के लिए हॉस्टल की सुविधाएं शामिल हैं। इसमें सेंट्रल डाइनिंग हॉल, पुस्तकालय और ऑडिटोरियम जैसी सुविधाएं भी हैं। श्री मोदी सरदार धाम परिसर में विभिन्न सुविधाओं का भी दौरा करेंगे, जिनमें रिसेप्शन एरिया, नागरिक सुविधाएं, डाइनिंग एरिया और ई लाइब्रेरी शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने श्री हिमंत बिस्वा सरमा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। इससे राज्य में एनडीए के लगातार तीसरे कार्यकाल का रास्ता साफ हो गया है।
2: सर्वसम्मति से भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद श्री शर्मा ने गठबंधन के नेताओं के साथ लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और औपचारिक रूप से सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री आचार्य कल श्री शर्मा और नई मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह खानपाड़ा के वेटरनरी कॉलेज मैदान में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई गणमान्य लोगों के समारोह में शामिल होने की संभावना है। एनडीए में भाजपा, असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट शामिल हैं। गठबंधन ने विधानसभा चुनावों में 126 में से 102 सीटें जीती। भाजपा ने 82 सीटें हासिल की। श्री शर्मा पहली बार 2021 में मुख्यमंत्री बने थे। वह असम में पहले ऐसे गैर कांग्रेसी नेता बनने जा रहे हैं जो लगातार 2 बार मुख्यमंत्री के पद पर रहेंगे। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज राज्य सचिवालय नवन्ना में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: पश्चिम बंगाल की नई सरकार अपनी प्रशासनिक यात्रा शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज नमन्न में पहले कैबिनेट बैठक करेंगे। उस बैठक में 5 नए शपथ ग्रहण किए गए मंत्रियों का विभागों का अन्य विभागों पर भी निर्णय लिए जाने की उम्मीद है। सूत्रों का कहना है कि भाजपा के चुनावी वादे एजेंडा में सबसे ऊपर रहेंगे, जिनमें आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का क्रियान्वयन, अन्नपूर्णा भंडार और राज्य कर्मचारियों के 7वें वेतन आयोग का लागू होना शामिल है। आज मुख्यमंत्री सचिवों, जिला स्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से भी मिलेंगे, ताकि प्रशासनिक कार्यों का गति और कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की जा सके। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और वामपंथी दलों ने भाजपा के खिलाफ संयुक्त विपक्षी मोर्चा बनाने के ममता बनर्जी का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। ममता बनर्जी ने कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और कट्टर वाम दलों सहित सभी विपक्षी दलों से भाजपा के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया था। कांग्रेस प्रवक्ता सौम्या एच रॉय ने ममता बनर्जी की अपील खारिज करते हुए पूछा कि वो कट्टर वामपंथी समूह की बात क्यों कर रही हैं। उन्होंने 2013 में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ माओवादी हिंसा का भी जिक्र किया। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर पिछले चुनावों में कांग्रेस को बदनाम करने और भाजपा के उदय को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और कहा कि ममता बनर्जी ने ही भाजपा को बंगाल में पैर जमाने का मौका दिया। माकपा के प्रदेश सचिव मोहम्मद सलीम ने भी इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज करते हुए ममता बनर्जी को भ्रष्ट और सांप्रदायिक बताया। सीपीआई के प्रदेश सचिव स्वप्न बंदोपाध्याय ने कहा कि ममता बनर्जी के साथ जुड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा के श्रद्धालुओं और पर्यटकों से राज्य में खराब मौसम की स्थिति के बीच सतर्क रहने तथा सुरक्षा मानकों का पालन करने की अपील की है।
6: मौसम विभाग ने उत्तराखंड के विभिन्न भागों विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में कल और बुधवार को खराब मौसम और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। गढ़वाल मंडल के आयुक्त

0: विनय शंकर पांडे ने श्रद्धालुओं और पर्यटकों से यात्रा के दौरान मौसम के बारे में ताजा जानकारी रखने और सावधानी के साथ यात्रा कार्यक्रम तैयार करने का आग्रह किया है। यात्रियों से राज्य में खराब मौसम को देखते हुए 12 और 13 मई को यात्रा कार्यक्रम तैयार करते समय अधिक सजग रहने की अपील की गई है। सभी संबंधित सरकारी विभागों को यात्रियों के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। समाचार कक्ष से मैं एस बी त्रिपाठी।
1: पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के प्रयासों के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार कर दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ईरान का प्रस्ताव खारिज कर दिया है।
2: इससे पहले कल ईरान ने कहा था कि उसने पश्चिम एशिया में संघर्ष समाप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका के प्रस्ताव पर जवाब भेजा है। यह जवाब पाकिस्तान के माध्यम से भेजा गया, जो ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने कहा कि पश्चिमी देशों के साथ बातचीत को आत्मसमर्पण या पीछे हटने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कल रात राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की। इसराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के उच्च संवर्धनित यूरेनियम भंडार को हटाने की आवश्यकता पर सहमत हुए, जो वार्ता का प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। ईरान ने चेतावनी दी है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य में अमेरिकी समुद्री अभियानों के साथ फ्रांसीसी या ब्रिटिश युद्धपोतों की किसी भी तैनाती का निर्णायक और तत्काल जवाब दिया जाएगा। फ्रांस के अधिकारियों ने कहा कि परमाणु ऊर्जा से चलने वाले विमान वाहक पोत चार्ल्स डी गॉल, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की स्टारमर के नेतृत्व में रणनीतिक जलमार्ग में नौवहन की स्वतंत्रता बहाल करने के प्रयासों के तहत इस क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
3: सुजो में AFC अंडर 17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज मेजबान चीन और भारत आमने सामने होंगे। ये मैच जीतते ही भारत फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप में जगह पक्की कर लेगा। भारत इससे पहले 2017 और 2022 में मेजबान के तौर पर इस विश्व कप में हिस्सा ले चुका है, लेकिन उसने प्रतियोगिता के जरिए क्वालिफाई नहीं किया था। भारत ने ग्रुप स्टेज में शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। इस बीच भारत के 6 खिलाड़ी ताशकंद में एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए, जबकि 7 को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। फाइनल में कल यश कुमार ने 33 किलो वर्ग में, 37 किलो वर्ग में वसंत कुमार ने, 43 किलो वर्ग में समीर बोहरा ने, सुदर्शन वासुदेव चांडक ने 52 किलो वर्ग में, 58 किलो वर्ग में मोहम्मद यासिर ने, जबकि 67 किलो वर्ग में रौनक पराग लोखंडे ने जीत दर्ज की। रोहित पोथीना, नितिन नोंग, पोकांगवा मेईतेई ओइना, प्रशांत हर्षवर्धन जीना देव और सुशांत जयानी को सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। इधर IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 166 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा।
1: पश्चिम बंगाल में विशेष जांच दल ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या के सिलसिले में 3 लोगों को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए 3 कुख्यात शूटर हैं। हत्या की साजिश में शामिल अन्य लोगों का पता लगाने के प्रयास जारी हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरों को कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 0112301-7171 और 0112371-7106। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद विशाल। पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न चुनौतियों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देशवासियों से आह्वान, दैनिक जागरण सहित सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। पेट्रोल डीजल और गैस का संयम से करें इस्तेमाल। राजस्थान पत्रिका ने पीएम के हवाले से लिखा है, 1 साल सोना नहीं खरीदें, वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन मीटिंग करें। हिन्दुस्तान ने आर्थिक विशेषज्ञों के हवाले से लिखा है, प्रधानमंत्री की अपील का सकारात्मक असर पड़ने की उम्मीद, आयात बिल घटने से अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती। तमिलनाडु में नई सरकार का गठन भी अखबारों की सुर्खी बनी है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, तमिलनाडु में विजय राज, 6 दशक बाद गैर द्रविड़ सरकार, TVK प्रमुख विजय ने ली CM की शपथ। वहीं देशबंधु की सुर्खी है, केरलम में नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर संशय बरकरार। बदलाव का चेहरा

0: शीर्षक से अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है, तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति का चक्र तोड़ते हुए थालापति विजय का मुख्यमंत्री बनना इस बात का प्रतीक है कि राज्य नई ऊर्जा, नई सोच और नए राजनीतिक प्रयोग की ओर बढ़ रहा है। ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि मुख्यमंत्री विजय केंद्र राज्य संबंधों में संतुलन बनाने में कैसी परिपक्वता दिखाते हैं और सुशासन की मिसाल कायम करते हैं। भारत की सभ्यता का प्रतिबिंब सोमनाथ शीर्षक से केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री का लेख नवभारत टाइम्स में है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने लिखा है, कोई सभ्यता तब तक मजबूत रहती है जब तक वो अपनी जड़ों से जुड़ी रहे। लोकतंत्र की ताकत संघर्ष में नहीं बल्कि संतुलन और सम्मान में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये बयान पंजाब केसरी में है। एक कार्यक्रम में गृह मंत्री ने कहा कि 1947 से संसद और विधानसभाओं द्वारा लाए गए बदलाव देश में लोकतंत्र की मजबूती को बताते हैं। झूठ को तोड़ता और सच को जोड़ता चीन सीमा पर सेना का रेडियो। दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार भारत चीन सीमा से लगे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सेना के ये रेडियो स्थानीय बोलियों में मौसम के अलर्ट के साथ साथ संवेदनशील सीमा पर गलत जानकारी से निपटने में मददगार साबित हो रहे हैं।
1: धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच नागरिकों से एक वर्ष तक सोना नहीं खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा संरक्षित करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। वडोदरा में सरदार धाम हॉस्टल का शुभारंभ करेंगे। असम के राज्यपाल ने हिमंत बिस्वा सरमा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। उत्तराखंड सरकार ने प्रतिकूल मौसम के बीच चार धाम यात्रियों और पर्यटकों से सतर्क रहने और यात्रा के दौरान सुरक्षा बरतने का आग्रह किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया। और AFC अंडर 17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज भारत और मेजबान चीन सूजो में आमने सामने होंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM 102.6 मेगाहर्ट्ज, मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलो हर्ट्ज पर आपका साथ बना हुआ है आकाशवाणी गोटा बूंदी के चंबल चैनल के साथ। प्रातः के 8:15 हो रहे हैं। लीजिए सुनिए काव्यांजलि के अंतर्गत कोमल नाजुक का काव्य पाठ।
3: मैं कोमल नाजुक आप सबके बीच कविताएं लेकर आई हूँ, सुनिएगा।

हो जाए। और हम लड़कियां क्या है सुनिएगा, आनी है बान है शान है लड़कियां, आनी है बान है शान है लड़कियां, घर की रौनक भी है मान है लड़कियां।

अगर जान हैं लड़कियां। जब कान्हा बांसुरी बजाते थे तो गोपियां किस तरह व्याकुल होती थी, छंद रखती हूँ सुनिएगा। कुंज गलियों में श्याम बांस

मटकी उतार दी है, घूंघट हटा दिया है, लोकलाज सब ही भुला गई हैं गोपियां। मटकी उतार दी है, घूंघट हटा दिया है, लोकलाज सब ही भुला गई हैं गोपियां। सांवरे की छवि देख

हैं गोपियां, और इतना ही नहीं और कैसे, मेरा कान्हा मेरा कान्हा मेरा कान्हा बोल बोल आपस में कर रही रार सारी गोपियां, मेरा कान्हा मेरा कान्हा मेरा कान्हा बोल बोल आपस

मन में ही पति मान बैठी है कन्हैया को वो और चुप कैसे करे प्यार सारी गोपियां। मन में ही पति मान बैठी है कन्हैया को वो और चुप कैसे करे प्यार सारी गोपियां। और राधिका के संग जब भी

सबके बीच एक गीत रखने का प्रयास करती हूँ, सुनिएगा। हम नारियां कैसी हैं, पहले भी कैसी थी और अब भी कैसी हैं, सुनिएगा।

हूँ मैं, शक्ति स्वरूपा नारी हूँ, शक्ति स्वरूपा नारी हूँ मैं, शक्ति स्वरूपा नारी हूँ। और आज भी हम लड़कियां क्या कर रही हैं सुनिएगा। ओलंपिक में अभिलाषा जब जन्मा।

लेकिन सरल सहज दिख जाऊं, लेकिन देती मात करारी हूँ। शक्ति स्वरूपा नारी हूँ मैं, शक्ति स्वरूपा नारी हूँ, शक्ति स्वरूपा नारी हूँ मैं, शक्ति स्वरूपा नारी हूँ। एक गजल आप सबके बीच रखती हूँ, सुनिएगा।

शेर देखना। चांद भी शर्म से छुप गया, चांद भी

और मक्के का शेर अंतिम शेर पढ़ते हो, सुनेगा। देख कर लोग कहे तो रहे,

अभी आप सुन रहे थे कोमल नाजुक का काव्य पाठ काव्यांजलि के अंतर्गत। संयोजन था राम नारायण मीणा का।

FM 102.103.6 MHz, मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलो हर्ट्स पर यह आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल का प्रसारण है। हम लेकर हाजिर हैं सुगम संगीत। सुगम संगीत में लीजिए सुनिए आवाज और मौसीकी जगजीत सिंह की, अल्फाज नाजीर बनारसी के।

सुगम संगीत में लीजिए सुनिए ये कलाम, आवाज और मौसिकी हरिहरण की, अल्फाज शायर इसरार अंसारी के।

लीजिए सुनिए कार्यक्रम संबंधी सूचना। नमस्कार, कोटा कार्यक्रम में मंगलवार दिनांक 12 मई को सुबह 7 बजे से 7:30 के मध्य आप सुनेंगे हमारी अतिथि विशेषज्ञ श्रीमती अभिलाषा जेनवियर के साथ भेंट वार्ता। विषय होगा नर्सिंग एक सेवा कार्य। इस बातचीत में अतिथि विशेषज्ञ के साथ भेंट करेंगे राजेश महावर।

कार्यक्रम को चंबल चैनल पर अवश्य सुनिएगा। ये सूचनाओं पर आधारित सुबह सवेरे का कार्यक्रम नमस्कार कोटा सुबह 7 बजे से होगा। आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल पर इस समय आप सुन रहे हैं सुगम संगीत। और लीजिए, अब हम आपको सुनवा रहे हैं ये कलाम, आवाज पंकज उधास की, मौसी की अली घनी की और अल्फाज नुसरत बदर की।

और लीजिए सुनिए सुगम संगीत की अगली पेशकश, आवाज जसवंत सिंह की, मौसिकी जगजीत सिंह की और अल्फाज शादाब लाहौरी के।

लीजिए सुनिए सुगम संगीत की आखिरी पेशकश, आवाज और मौसीकी अनूप जलोटा की, लफ्ज़ रानी मलिक के।

0: इस गजल के साथ ही सुगम संगीत अब समाप्त होता है। FM 102 103.6 MHz, मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। सुबह के 9 बजने को है, कुछ ही क्षणों में आप हमारे जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है, अब आप हमारे केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे। नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से पेट्रोल डीजल का किफायत से इस्तेमाल करने की अपील की। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का देशव्यापी आयोजन आज, प्रदेश के सभी जिलों के प्रमुख शिवालयों में भी विशेष धार्मिक कार्यक्रम होंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और पश्चिमी राजस्थान झुलसाने वाली गर्मी की चपेट में, बाड़मेर जैसलमेर और फलौदी में पारा 46 डिग्री के पार दर्ज। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से पेट्रोल डीजल का किफायत से इस्तेमाल करने की अपील की है। श्री मोदी कल हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों से भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी तरीके से प्रबंधन कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज के समय की जरूरत है।
2: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना। संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
1: प्रधानमंत्री ने हाल ही के सालों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की तरक्की का जिक्र करते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
2: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% LPG कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, CNG आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सोमनाथ अमृत पर्व 2026 में भाग लेंगे। इसका आयोजन पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर के पुनर्निर्माण के उपलक्ष्य में किया जा रहा है।

0: प्रधानमंत्री सोमनाथ महादेव की पूजा और अभिषेक करेंगे। इसके बाद वे जनसभा को भी संबोधित करेंगे। गुजरात के सोमनाथ में प्रधानमंत्री का रोड शो भी रखा गया है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर देशभर में आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है। इस अवसर पर प्रदेश के 41 जिलों के प्रमुख शिवालयों में विशेष धार्मिक आयोजन होंगे। देवस्थान विभाग के आयुक्त लक्ष्मी नारायण मंत्री ने बताया कि राज्य स्तरीय समारोह जयपुर के झारखंड महादेव मंदिर में रखा गया है। इस दौरान महाआरती होगी और कलश यात्रा निकाली जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। श्री शर्मा कल अजमेर जिले के पुष्कर के कडेल गांव में ग्राम विकास चौपाल को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश में राजीविका के माध्यम से 17.5 लाख महिलाएं लखपति दीदी बनी है। सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए कई काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने राजीविका से जुड़ी महिलाओं से संवाद करते हुए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि घर घर शौचालय निर्माण, हर घर नल से जल, जनधन खातों और उज्ज्वला योजना से करोड़ों महिलाओं का जीवन बदला है।
1: युवा, किसान, महिला, मजदूर, अगर हम इनका सहयोग करते हुए इनका जीवन अगर ऊपर उड़ता है, गांव, हमारी तहसील, हमारा जिला, हमारा प्रदेश आगे बढ़े। और इसीलिए हमारी योजनाएं हैं वो अधिकतर इन्हीं के इर्द गिर्द चलती हैं और इन्हीं को लेकर के हम चलते। पहले गांव में जाते थे तो पहले तो लकड़ी इकट्ठी करके लाते थे, कोई पेड़ों को छांट करके उसकी लकड़ी काटते थे, उससे खाना बनता था। खाना कई परिवारों में आज भी बनता है, वो दिक्कत नहीं है। लेकिन ये है कि बारिश के समय में उससे और परेशानी होती, ईंधन गीला हो जाता था, भूख देते देते आंखों में भी धुआं जाता था और फेफड़ों में भी धुआं जाता था। लेकिन इसका किसी ने ध्यान नहीं दिया। ध्यान दिया तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया और घर घर में उज्ज्वला का कनेक्शन देकर के, गैस की टंकी देकर के हमारी माता बहनों का सम्मान करने का काम किया तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने।
0: ग्राम विकास चौपाल में श्री शर्मा ने किसानों और युवाओं से भी बातचीत की। उन्होंने किसानों को परंपरागत खेती से आगे बढ़कर आधुनिक और जैविक खेती अपनाने के लिए प्रेरित किया। रात्रि विश्राम के बाद मुख्यमंत्री ने आज सुबह कडेल गांव में पैदल भ्रमण कर बुजुर्गों और महिलाओं से बातचीत की। ग्रामीणों की मांग पर उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को क्रमोन्नत करने की घोषणा की। इंदिरा गांधी नहर में कल से बंदी समाप्त हो गई। बीती रात 12 बजे के बाद से अधिकारियों ने हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी के पास पानी प्रवाहित करने का काम शुरू कर दिया है। राजस्थान फीडर की रीलाइनिंग के कारण पानी की मात्रा धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी। जल संसाधन विभाग के अधीक्षण अभियंता रामकिशन ने बताया कि फिलहाल 10 क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि बंदी खत्म होने से हजारों लोगों को राहत मिलेगी और पानी की समुचित आपूर्ति हो सकेगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। पश्चिमी राजस्थान में झुलसाने वाली गर्मी का असर है। बीते 24 घंटों में बाड़मेर, जैसलमेर और फलौदी में प्रचंड लू के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। बाड़मेर में पारा 46.8 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं जैसलमेर में भी अधिकतम तापमान 46.3 डिग्री रहा। हमारे संवाददाता ने बताया कि लू के थपेड़ों से लोग बेहाल नजर आ रहे हैं। प्रशासन द्वारा लोगों से एहतियात बरतने की अपील की जा रही है।
2: सवेरे से ही सूर्य देवता के तेवर तीखे हो जाते हैं। भीषण गर्मी के चलते स्वर्ण नगरी के पर्यटन स्थलों पर सन्नाटा पसरा नजर आ रहा है। अत्यधिक गर्मी के चलते चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने आम जन से विशेष एहतियात बरतने की अपील की है। गर्मी के मौसम में स्वास्थ्य केंद्र चलाया जा रहा द्वारा परिंदा अभियान चलाया जा रहा है। मनीष व्यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर।
0: जोधपुर और बीकानेर में भी अधिकतम तापमान 44 डिग्री के पार मापा गया। प्रदेश के 19 शहरों में दिन का पारा 40 डिग्री से अधिक रिकॉर्ड हुआ। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज भी हीट वेव की प्रबल संभावना है। वहीं रातें भी काफी गर्म रहेंगी। साथ ही नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ भागों और शेखावाटी क्षेत्र में कहीं कहीं आंधी और हल्की बरसात हो सकती है। उधर हनुमानगढ़ जिले में पिछले 3-4 दिनों से जारी भीषण गर्मी के दौर के बीच आज सुबह मौसम अचानक बदला और कई स्थानों पर झमाझम पानी बरसा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने में संविधान और न्यायपालिका ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

0: श्री शाह कल नई दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दो पुस्तकों के विमोचन के अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि आम आदमी का विश्वास, समाज का संचालन और राष्ट्र का चरित्र मजबूत न्याय व्यवस्था में झलकता है। भारत ने एक समाज के रूप में अपनी संस्थाओं में जनता का विश्वास सफलता से बनाए रखा है।
1: हमारी मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने निश्चित रूप से मजबूत किया है और 1947 से लेकर आज तक इस देश में पार्लियामेंट के माध्यम से और विधानसभाओं के माध्यम से जितने भी परिवर्तन हुए, खून का एक कतरा बहाए बगैर इसको स्वीकार कर लिया गया और बहुत अच्छे तरीके से हमने परिवर्तन किए हैं। यही बताता है कि हमारे लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी गई और इसमें हमारे संविधान और हमारी न्यायपालिका का बहुत बड़ा योगदान है।
0: पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा मंडल ने रेलगाड़ियों में मिडिल बर्थ के उपयोग को लेकर एडवाइजरी जारी की है। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि मिडिल बर्थ खोलने का समय रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक निर्धारित है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि रेलवे नियमों के तहत सुबह 6 बजे बाद बीच की बर्थ फोल्ड करना अनिवार्य है, जिससे निचली बर्थ पर यात्री आसानी से बैठ सके। उन्होंने बताया कि अपर बर्थ के यात्री पूरे दिन बर्थ का उपयोग कर सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से पेट्रोल डीजल का किफायत से इस्तेमाल करने की अपील की है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का देशव्यापी आयोजन आज, प्रदेश के सभी जिलों के प्रमुख शिवालयों में भी विशेष धार्मिक कार्यक्रम होंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और पश्चिमी राजस्थान झुलसाने वाली गर्मी की चपेट में बाड़मेर, जैसलमेर और फलौदी में पारा 46 डिग्री के पार दर्ज। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: FM 102.103.6 MHz, मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज़ पर आप और हम साथ बने हुए हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल पर। हम लेकर हाजिर हैं फिल्म संगीत और लीजिए फिल्म संगीत में सुनिए फिल्म बागी का ये गीत, जिसे गाया है अरमान मलिक, श्रद्धा कपूर और अमाल मल्लिक ने। इस गीत को लिखा है संजीव चतुर्वेदी ने और संगीत दिया अमाल मल्लिक ने।

फिल्म संगीत में अब आपको हम सुनवा रहे हैं फिल्म दिलवाले का ये गीत। आवाजें हैं अरिजीत सिंह और अंतरा मित्र की। शब्दों से गढ़ा है अमिताभ भट्टाचार्य ने और धुन बनाई प्रीतम चक्रवर्ती ने।

लीजिए कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। नमस्कार, कोटा कार्यक्रम में मंगलवार दिनांक 12 मई सुबह 7 बजे से 7:30 के मध्य आप सुनेंगे हमारी अतिथि विशेषज्ञ श्रीमती अभिलाषा जैनवीर के साथ भेंट वार्ता। विषय होगा नर्सिंग, एक सेवा कार्य। इस बातचीत में अतिथि विशेषज्ञ के साथ भेंट करेंगे राजेश महावर। तो इस कार्यक्रम को अवश्य सुनिएगा। चंबल चैनल का सूचनाओं पर आधारित सुबह सवेरे का यह कार्यक्रम नमस्कार कोटा प्रातः 7 बजे से होगा। फिल्म संगीत में अब आप सुनेंगे फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस का ये गीत। विशाल शेखर के संगीत निर्देशन में इस गीत को गाया है अमिताभ भट्टाचार्य और अनुषा मनी ने। शब्द कृति अमिताभ भट्टाचार्य की।

श्रोताओं, हम आपको बता दें, आज सुबह 11:10 पर हमारे दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा सोमनाथ अमृत पर्व के अवसर पर संबोधन का सीधा प्रसारण। और लीजिए, फिल्म संगीत की आखिरी पेशकश हम आपको सुनवा रहे हैं। फिल्म का नाम है हमारी अधूरी कहानी। इस गीत को गाया है पापोन ने। लीजिए सुनिए।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब समाप्त होता है। FM 102 103.6 MHz, मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल का प्रसारण। अब महिलाएं सुनेंगी अपना कार्यक्रम महिला जगत।

0: आकाशवाणी सुनने वाले सभी श्रोताओं को मीनाक्षी शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। आज मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो सखी मीनाक्षी शर्मा। आपका और हमारा साथ सखियों 90 वर्षों से यूं ही चल रहा है। 1923 में एक छोटे से ट्रांसमीटर से शुरू हुआ था ये सफर, आज तक बरकरार है और बरकरार है आपका और हमारा साथ। ये वो दौर था जब संचार के साधन सीमित थे, एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए भी साधन सीमित थे। ऐसे में बिना तार के जो पहुंचा वो था आकाशवाणी। सखियों, रेडियो ही एक मात्र सुलभ साधन था जो आपको देश विदेश की खबरों से अवगत करवाता था। सखियों, आप जानती हैं कि सन 1936 में 19 जनवरी के दिन सबसे पहले समाचार बुलेटिन प्रसारित हुए थे आकाशवाणी में। सखियों, जनहित की सूचनाएं हो, भेंटवार्ता या शैक्षणिक कार्यक्रमों से आपको अवगत कराना हो, ज्ञान की ज्योति जलाना हो, या फिर देश विदेश की खबरों से आपको रूबरू करवाना हो, या संगीत से आपका मनोरंजन करना हो, आकाशवाणी हमेशा से ये काम अव्वल तरीके से करती आ रही है। और सखियों, इसी क्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं भेंटवार्ता स्वाति गौतम के साथ। विषय है सकारात्मक पारिवारिक संस्कृति का निर्माण। तो पेश है ये वार्ता।
1: सखियों, सकारात्मक पारिवारिक संस्कृति का निर्माण एक सुखी और समृद्ध जीवन की नींव है, और भारतवर्ष जाना ही इसीलिए जाता है कि यहाँ हम परिवार के साथ रहते हैं। शायद विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ परिवार के साथ व्यक्ति रहता है। परिवार में सकारात्मकता कैसे बनी रहे, परिवार में खुशहाली कैसे बनी रहे, इसी के बारे में और जानने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है श्रीमती स्वाति गौतम जी को। आप मनोवैज्ञानिक हैं। स्वाति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: धन्यवाद।
1: स्वाति जी, हमारे लिए परिवार बहुत महत्वपूर्ण है।
2: बिल्कुल,
1: हमें लगता है कि हम परिवार के बिना अधूरे हैं।
2: बिल्कुल।
1: तो स्वाति जी, ये बताइए कि सकारात्मक पारिवारिक वातावरण कैसे बनाएं हम अपने घर में।
2: देखिए, परिवार का मतलब ही यही है कि जहां आपसी प्रेम, लगाव, सामंजस्य, एक दूसरे के प्रति

0: समझ हमारी जो है वो बनी रहे तो वहां वो परिवार हो जाता है। सिर्फ ये खून के रिश्ते ही नहीं है बल्कि जब सकारात्मक माहौल की जब बात कर रहे हैं तो शुरू से हमारे जो संस्कृति है जो संस्कार है वो यही सिखाते हैं कि जो आपके परिवार में जो सदस्य हैं वो एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की आवश्यकताओं को समझें और आपसी प्रेम और विश्वास के साथ रहें।
1: जी, मतभेद होता है परिवार में
0: बिल्कुल,
1: तब थोड़ी सी लगता है कि नकारात्मकता आ गई है,
0: बिल्कुल
1: मैं अपनी बात मनवाना चाहती हूँ, सामने वाला मेरी बात नहीं मानता, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए ताकि वातावरण सकारात्मक रहे और हमारी बात भी समझी जाए।
0: जी, मतभेद होना स्वाभाविक है क्योंकि हम अलग अलग विचारों के और अलग अलग बिलीफ सिस्टम के लोग हैं, तो मतभेद हो लेकिन मनभेद नहीं हो, उसके लिए जरूरी है कि बातचीत जो है वो की जाए। कहा भी गया है कि आप चाहे लड़ लीजिए झगड़ लीजिए लेकिन बातचीत का रास्ता बंद मत कीजिए वरना सुलह के रास्ते बंद हो जाते हैं।
1: जी,
0: तो कई बार मन में हमारे कुछ चीजें चल रही होती हैं जिसको जब तक हम बात करके सुलझा नहीं लेते तब तक वो शायद असमंजस बना है या कोई गलत धारणा हमने मन में बना ली है, तो ये तभी क्लियर होगी, तभी सुलझेगी बात जबकि हम बैठ के उस विषय पे विस्तृत चर्चा कर लेंगे और चीजों को सुधारने के डायरेक्शन में जो है वो हम अपना समझ जो है प्रयास करेंगे।
1: स्वाति जी, आज के जमाने में एकल परिवार का चलन अधिक हो गया है, चाहे वो आप मर्जी समझे चाहे मजबूरी, एकल परिवार बनते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, तो हम अपने परिवार के साथ जुड़े रहें, एकल परिवार को नकार देना भी एक तरह से मुश्किल ही है क्योंकि आजकल माता पिता जो हैं वो जहां रहते हैं जो उनका स्थायी निवास है वहीं रहना चाहते हैं और बच्चों को आगे बढ़ना है इसीलिए उन्हें अलग भी रहना पड़ता है, तो वो जुड़ाव कैसे बना रहे इसके लिए क्या नुस्खे अपनाएं कि वो एक दूसरे से मन से जुड़े रहें।
0: एकल परिवार कई स्थिति में जैसे आप बता रहे हैं कि नौकरी की वजह से या किसी और कारण की वजह से जो है वो बढ़ रहे हैं अभी, लेकिन परिवार चाहे दूरियां हो तो भी परिवार परिवार है, उसको आपको जब साथ में लेके चलना है रोजाना कोशिश कीजिए कि आप परिवार के लोगों के साथ बातचीत कर पाएं। अभी तो बहुत सारा सुविधाएं ऐसी हो गई हैं कि आप वीडियो कॉल के थ्रू फोन के थ्रू जो है उनसे संपर्क में रह सकते हैं। साथ में बच्चों को भी ये सिखाना जरूरी है कि घर में दादा दादी हैं या जो भी बुजुर्ग हैं घर में और परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ भी वो कुछ न कुछ समय जो है वो जरूर बिताए। एक सकारात्मक माहौल के लिए जरूरी है कि घर के सारे सदस्य जो हैं कम से कम शाम का जो खाना है वो साथ में बैठकर खाएं, उस समय टीवी मोबाइल फोन ऑन नहीं हो ताकि आपस में बातचीत हो पाए, जो बुजुर्ग हैं उनके अनुभव सुनिए, तो इस तरह से एक सकारात्मक माहौल हम परिवार में बना पाएंगे।
1: तो स्वाति जी, बच्चों के मानसिक और भावनात्मक विकास में परिवार का क्या योगदान?
0: बच्चों के भावनात्मक और मानसिक विकास में बहुत बड़ा योगदान परिवार का है। क्यों? क्योंकि जब भी हम किसी से बातचीत कर रहे हैं, हमारे परिवार के लोगों के साथ में जब हम रह रहे हैं, जाने अनजाने ही कई तरह के जो संस्कार हैं, जो पारिवारिक मूल्य हैं, या टेक्निकल लैंग्वेज में अगर लाइफ स्किल्स की हम बात करते हैं कि आप किस तरह से बात करेंगे, किस तरह से आपको सेल्फ कंट्रोल जो है उसको सीखना है, किस तरह से चीजों को अपनी मनवाना है, या किसी के लिए आप जब कुछ चीजों का त्याग कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, वो सारी चीजें जाने अनजाने बच्चों में स्वाभाविक रूप से आ ही जाती है। साथ में जो बुजुर्ग हैं वो अनुभव का भंडार हैं, अपने अनुभवों से, अपने लाड़ प्यार से, क्योंकि हमारे परिवारों में हम देखते ही हैं कि शायद अपने माता पिता से ज्यादा बच्चे दादा दादी नाना नानी से अटैच होते हैं, उनके साथ ज्यादा अच्छा उनको लग रहा होता है क्योंकि वो जो प्यार उन्हें दे रहे होते हैं वो बिना कोई कंडीशन के, उनको बच्चे के मार्क्स से कोई मतलब नहीं है, उनको उनके अचीवमेंट से मतलब नहीं है, उनको वो बच्चा ही प्यारा है और उनके अनुभव से जब वो चीजों बच्चों को बता रहे होते हैं तो बच्चा एक सकारात्मक माहौल में उस चीज को बहुत आसानी से सीख जाता है।
1: जी, और आजकल बच्चे जब 16 से 17 साल या 18 साल के होते हैं तो वो आय अर्जित करने लग जाते हैं पार्ट टाइम जॉब के रूप में, तो उन्हें लगता है कि मैं अब आत्मनिर्भर हो गया हूं, मुझे माता माता पिता की उतनी आवश्यकता नहीं है। ऐसे में माता पिता की क्या भूमिका होनी चाहिए?
0: देखिए, अगर पार्ट टाइम जॉब करके आय अर्जित कर रहे हैं तो ये एक तरह से इंडिपेंडेंट होने के लिए उनको जरूरी है, या कई जगह पर ये चीजें सही हो भी जाती हैं।

0: लेकिन ये सोचना कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है ये गलत है।
1: किशोर होते बच्चों के दिमाग में ये बात आ जाती है।
0: बिल्कुल, किशोर होते बच्चों के दिमाग में, और आजकल आप अगर देखेंगे तो बहुत सारे वयस्क जो हैं वो भी ऐसा सोचते हैं कि अगर मैं अर्न अच्छा कर रहा हूं तो मुझे किसी की जरूरत नहीं है, और माता पिता परिवार जो है उनसे वो कटना शुरू कर देते हैं। उनको ये लगता है कि हम सफलता की ऊंचाइयों पर हैं, हमारा स्टेटस अलग है, हमारा स्टैंडर्ड अलग है, तो परिवार से अपने जब वो दूरी बनाने लगते हैं तो जब तक चीजें ठीक चल रही हैं तब तक तो ये चल रहा है, लेकिन जहां चीजें गलत होने लगती हैं और उन्हें जरूरत होती है इमोशनल सपोर्ट की, तो वो सपोर्ट देने के लिए कोई है नहीं, तब आप अचानक से ये फील करने लगते हो कि आप अकेले हो गए हो। और इसीलिए आजकल हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा डिप्रेशन के जो केसेस हैं, एंग्जायटी के केसेस हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स के केसेस हैं, वो बहुत बढ़ गए हैं। इसलिए बढ़ गए हैं क्योंकि परिवार जो हमको जोड़ के रखता था, हमारे सुख दुख में एक साथ हमारे खड़ा होता था, हम जैसे हैं वैसे हमें एक्सेप्ट कर रहा होता था, उसको हम नजरअंदाज करके और किसी और जगह पर अपने आप को पा रहे हैं। अचानक से हमें लगने लगता है कि सब चीजें खत्म हो रही है, जबकि ऐसा नहीं हो रहा होता है। परिवार फिर भी परिवार है। यही सलाह देती हूँ जो डिप्रेशन के केसेस हो रहे होते हैं या जो बच्चे या बड़े लोग अकेलापन फील कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि हम अकेले हैं, आप जाइए परिवार के साथ बैठिए, बातचीत कीजिए। एक बार शायद आपको अटपटा लगेगा क्योंकि शायद आप सालों में बात कर रहे होंगे, लेकिन जैसे ही आप 5-10 मिनट वहां पर बिता देते हैं आपको लगने लगता है जैसे आप सालों से उसी जगह पर उसी माहौल में आप रह रहे हैं। तो ये हमारे परिवार की ताकत है जो हमें बनाए रखनी है, और इसका हमें अपने बच्चों को भी अनुभव करवाना है।
1: एक चीज और आती है, जब हम साथ में रहते हैं सबके साथ तो हम एक दूसरे की भावना को नहीं समझते। कई बार होता है कि एक तरह से कहिए कि स्वार्थी से हो जाते हैं हम एक दूसरे की भावना नहीं समझते, लेकिन हम चाहते हैं कि अगला हमारी भावना समझे। तो हम एक दूसरे की भावना को कैसे समझे और कैसे एक दूसरे को आदर दें, तो क्या चीजें हैं जिसे हमें नजरअंदाज करना है, क्या चीजें हैं जिन्हें हमें अपनाना चाहिए?
0: बहुत मुश्किल प्रश्न है क्योंकि ये जो हम कर रहे होते हैं ये जानबूझकर या कॉन्शियसली नहीं कर रहे हैं।
1: ये हो जाता है
0: और ये होता इसलिए है क्योंकि हमारी अपनी कुछ इनसिक्योरिटीज हैं, हमारा जो मन है वो कुछ न कुछ भय या कुछ धारणाएं, कुछ विश्वास लेकर आगे बढ़ रहा होता है। तो जब भी इस तरह की कोई भी सिचुएशन क्रिएट हो परिवार में, किसी भी रिश्ते में हो सकती है, थोड़ा सा समय लेके आत्मचिंतन की जरूरत है कि ये जो सिचुएशन है ये क्रिएट ही क्यों हुई है, और जब हुई है तो मेरे मन के भय क्या हैं और अगला क्या सोच के जो है चीजें कर रहा है। पुराने समय में सास बहुत सख्त हुआ करती थी और सारे लोग उनकी बात मानते थे। वो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में इसलिए पॉसिबल था और इसलिए वैलिड भी होता था क्योंकि घर में 4, 5, 6 लोग हैं। अब 6 लोग अगर अपनी अपनी मर्जी से जब काम करने लगेंगे तो परिवार का जो अनुशासन है, जो एकता है, वो कहीं ना कहीं बिखर जाएगी। तो एक लीडर है जो चार्ज ले रहा है और उसके साथ में चीजें जो है वो चल रही हैं।
1: तो परिवार के मूल्यों और परंपराओं को आज की पीढ़ी के साथ कैसे जोड़ के रखें?
0: परिवार के मूल्य और परंपराओं को नई पीढ़ी को सिखाना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जैसा आप कह रहे थे कि विश्व में केवल भारतीय परिवार ही ऐसे हैं जो सबसे मजबूत चीजों को लेकर खड़े हैं, और उस परिवार की मजबूती के कारण ही हम आज मजबूत हैं। पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के प्रभाव के कारण हमारे दिमाग में ऐसी जगह बना ली है जहां पर हम चीजों को एक नकारात्मक तरीके से देख रहे हैं। जो हमारा लाइफ सेटिस्फेक्शन है, जो जीवन की संतुष्टि है, वो उस परिवार से ही है। एक एग्जाम्पल दे रही होती हूँ मैं हमेशा, आपको कहीं का प्रेसिडेंट बना दिया जाए या किसी यू नो आइलैंड का आप किंग बन जाओ, लेकिन आपका परिवार या कोई पर्सन साथ में नहीं है खुश होने के लिए, तो क्या आप खुश होगे? वो खुशी आपकी अधूरी होती है। लेकिन आप क्लास में फर्स्ट आए हैं और उस क्लास में फर्स्ट आने में आपका परिवार बहुत खुश हो गया तो आपकी खुशी 4 गुना हो जाती है। तो ये हमारे परिवार का महत्व है, मानसिक संतुष्टि कि मेरा परिवार मेरे साथ है, ये बहुत बड़ी चीज है लाइफ में जिसको शायद हम ऐसे ही इग्नोर कर रहे हैं या उसको उतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं।
1: जी स्वाति जी, आज के युग में जब हम अपने त्योहार मनाते हैं या हर धर्म की या हर संप्रदाय की अपनी अपनी अलग अलग रिवाज होते हैं, बच्चे उस पे सवाल करते हैं कि ये ऐसा क्यों होता है, हम इसको ऐसे क्यों करें, वो हमारी परंपराओं को मानने से पहले उस पे सवाल उठाते हैं। तो हम महिलाओं का क्या दायित्व होता है, हम कैसे उन्हें समझाएं, कैसे अपनी संस्कृति के साथ अपनी परंपराओं

0: के साथ उन्हें जोड़े रखें।
1: संस्कृति और परंपराओं के साथ जो जुड़ाव है ये एक भावनात्मक पहलू है। हमेशा अगर आप अर्ली स्टेज में बच्चे के शुरू करेंगे इन चीजों को तो वो भावनात्मक रूप से जुड़ने में अपने जो अर्ली एजेस हैं उसमें इजीली वो जुड़ जाएगा। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसका लॉजिकल थिंकिंग जो है वो डेवलप होता है, तो जो भावनात्मक जुड़ाव है उसके लिए अगर वो प्रश्न कर रहा है तो वो बहुत सही है, कोई गलत नहीं है इसमें
0: जी।
1: तो हम उनको हर विधि विधान है, जो रिचुअल्स हैं, जो तरीके हैं हमारे, उसके लिए हम खुद ज्ञान अपना अर्जित करें और उनको उस चीज के बारे में बता के और फिर हम जोड़ें। क्योंकि कई बार हमें खुद को भी पता नहीं होता, हमने सिर्फ इसलिए कि हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखा दिया या हमने कहीं देखा, हमने सुना, हमने इस काम को कर रहे हैं
0: या हमारे पूर्वज करते आए हैं
1: या करते आए हैं इसलिए हम कर रहे हैं,
0: क्यों किस लिए नहीं पता होता।
1: तो ये क्यों और किस लिए बहुत जरूरी प्रश्न है जिसको उनको बताना जरूरी है। तो हम खुद पहले पढ़ें, समझें और फिर उनको उस बारे में बताएं कि वो चार चीजें जो हमने पढ़ी समझी उसमें ये चीज लिखी है और इसको लॉजिकली, साइकोलॉजिकली, इवन साइंटिफिकली जो है वो प्रूव हुई है बहुत सारी चीजें जो हमारी हैं
0: जी।
1: तो दोनों चीजों का सामंजस्य बना के चलना पड़ेगा। अगर आप अचानक से बच्चे को बोलोगे कि अच्छा बड़े हो गए हो अब आप पूजा कर लो, बड़े हो गए हो अब आप ये कर लो, तो वो आपके लिए मुश्किल होगा। आप शुरू से जब वो छोटा है उसको अपने साथ पूजा में रोज खड़ा कीजिए, उसको जो भी आप रीति रिवाज कर रहे हैं, रिचुअल्स कर रहे हैं, उसमें उसका इन्वॉल्वमेंट शुरू से रखिए, तो उसको मन में जो भाव है उस चीज के लिए वो भाव अर्ली एज में डेवलप होंगे। और जब उसका लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो रहा है तो बिल्कुल उसके प्रश्नों का जवाब जो है वो आप ढूंढिए, उसको बोलिए कि खुद अपना इन प्रश्नों के जवाब ढूंढे, तो वो अच्छी तरह से उन चीजों को आत्मसात कर पाएगा
0: जी। हमें समझना होगा ताकि हम उन्हें समझा सकें।
1: बिल्कुल।
0: परिवार में रहते हुए स्वाति जी लगता है कि कुछ बातों को नजरअंदाज करें, कुछ पर नजर रखें, तभी हम चल सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: क्षमा करना सीखना होगा।
1: क्षमा करना सीखना होगा
0: जी। तो श्रोताओं के लिए आप सकारात्मक पारिवारिक वातावरण बनाने के लिए अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: एक सकारात्मक पारिवारिक माहौल के लिए सबसे जो जरूरी चीज है वो ये है, एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करना। बैठिए, बातचीत कीजिए, जहां कहीं कुछ कंफ्यूजन है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो गलत वातावरण बना रही हैं, उस बारे में क्लियर बात कीजिए ताकि चीजें सामने हो, हम अपने आप को समझ पाएं, हम दूसरे को समझ पाएं। और जो आप बोल रहे हैं कि कुछ चीजों को नजरअंदाज करना, वो उस जगह पर भी जरूरी हो जाता है जब चीजें ना मेरे हाथ में है ना आपके हाथ में है
0: जी।
1: तो नजरअंदाज करके बढ़ पाए, क्योंकि परिवार में सकारात्मक माहौल होगा तो हम बहुत मजबूती के साथ उस परिवार के साथ खड़े रह पाएंगे, जुड़ पाएंगे, और वही मजबूती हर एक सदस्य को परिवार के विश्व में, दुनिया में अपनी पहचान बनाने में एक मजबूत सहारा देगी
0: जी। मत भेद भले ही हो, मन भेद ना हो।
1: मन भेद ना।
0: स्वाति जी, आपने इतने सुंदर विचार हमारे साथ साझा किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: सखियों, अभी आपने सुना श्रीमती स्वाति गौतम को। सखियों, परिवार है जो हमारे बच्चों में हमारे सांस्कृतिक मूल्यों का समावेश करता है, बच्चों में लाइफ स्किल सिखलाता है, उनका पूरी तरह से डेवलपमेंट करता है। सखियों, हम चाहे जिंदगी में कितने ही असफल क्यों ना हो जाएं, कितने ही डिप्रेस क्यों ना हो जाएं, अगर हमारा परिवार हमारे साथ होता है तो हम उस असफलता से जल्दी ही उबर जाते हैं। और जब सफल होते हैं तो सफलता का आनंद भी तभी होता है जब परिवार हमारे साथ होता है, क्योंकि अपने तो अपने होते हैं।

सखियों, कल था मदर्स डे, एक दिन माँ के नाम, उस माँ के नाम जो हर दिन हमारे नाम करती है, हर दिन परिवार के नाम करती है, उसके लिए सिर्फ एक दिन समर्पित किया हमने। सखियों, हमें सिर्फ एक दिन ही नहीं बल्कि हर दिन अपनी माँ के लिए समर्पित होना चाहिए। चाहे हम कितने ही बिजी क्यों ना हों, अपने माता पिता के लिए समय निकालें और उनके आदर्शों पर चलने का प्रयत्न करें, क्योंकि चकाचौंध से भरी इस दुनिया में सुकून कहाँ नसीब होता है। माँ के हाथ की रोटी का स्वाद सबसे अजीज होता है। सखियों, अगर इस दुनिया में कुछ सबसे अजीज है, सबसे लाजवाब है, तो वो है माँ के हाथ का खाना। बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ पर हॉस्टल्स में रहते हैं, हमारे बच्चे भी बाहर रहते हैं, हम भी कभी बाहर रहा करते थे और अपनी हॉस्टल लाइफ माँ के हाथ के अचार, मुरब्बों, पापड़, खींचे जैसी चीज़ों से और माँ के हाथ के बने हुए लड्डुओं से ही निकलती है। क्योंकि जब हम बोर हो जाते हैं हॉस्टल के खाने से, तो बस ये खाना ही हमें सुकून देता है, जिसमें माँ के हाथ का स्वाद और माँ का प्यार होता है। सखियों, आज बहुत हालात बदल रहे हैं। मैं तो देख रही हूँ विदेशों में, आजकल सोशल मीडिया पे आप देखिए, तब हमें पता चलता है कि विदेशों में तो लोगों को के पास खाना बनाने का समय ही नहीं है। वो पूरे पूरे सप्ताह का खाना एक साथ बनाते हैं वीकेंड पर, और पूरे 5 दिन 6 दिन वो अपना बना हुआ खाना ही गर्म करते हैं, खाते हैं, या फिर पैक्ड फूड बनाते हैं। और हमारे यहाँ पर हमारी मम्मियाँ हैं जो अपने बच्चों के लिए दोनों समय गर्मा गर्म भोजन बनाती हैं, और गर्म भोजन ही सेहत के लिए अच्छा भी रहता है। लेकिन कई बार होता है कि हमें जो है गर्म भोजन नहीं मिल पाता। सखियों, हमारे यहाँ पर तो देखिए, इंडिया में हम वर्किंग वूमन होती हैं, तो सुबह 8 से लेकर रात को 8 बजे तक भी बिजी हैं, तो बहुत सारी मम्मियाँ जो है घर आकर के खाना बनाती हैं अपने बच्चों के लिए, सुबह टिफ़िन पैक करके जाती हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जॉब बहुत टफ होता है, कि बिल्कुल पुरुषों के बराबर की सुबह 8 बजे जा रहे हैं और रात को 10 बजे आ रहे हैं, ऐसे में भी हम अपने परिवार के लिए भोजन के लिए, ऐसे नहीं कि हम एक साथ 5-6 दिन का खाना बना के रख देते हैं, हम लोग कुछ न कुछ हाउस हेल्प रखते हैं जो हमारे लिए गर्म भोजन बनाती है। लेकिन ये सुविधा विदेशों में उपलब्ध नहीं है, तो वो लोग जो है 5-6 दिन का खाना अपना इकट्ठा बनाते हैं, क्योंकि वहाँ पे हाउस हेल्प वगैरह बहुत मुश्किल से मिलती है। तो सखियों, हम भी कभी कभी ऐसा होता है कि सुबह का खाना शाम को खाते हैं, या शाम का खाना सुबह खा लेते हैं, तो 1-2 दिन तक हम जो पुराना खाना खाते हैं, तो हमारे यहाँ तो ये चीज़ तो चलती है, क्योंकि जो कई बार बचा हुआ जो खाना होता है वो भी बड़ा स्वादिष्ट होता है और हेल्दी होता है।

है, जैसे कि बची हुई रोटी हो या बचे हुए चावल हो, इनके अंदर जो फर्मेंटेशन की क्रिया होती है उससे इनके गुण और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इनमें B12 जो है ज़्यादा बढ़ जाता है। और इस तरह से हम बचे हुए खाने का इस्तेमाल जब करते हैं तो हमारी सेहत भी ठीक रहती है। लेकिन सखियों, फिर भी हमें पुराना खाना या बचा हुआ खाना इस्तेमाल करने से पहले कुछ सेफ्टी टिप्स का विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए कि हमें भोजन वही करना चाहिए जो बिल्कुल स्वस्थ हो। ऐसा नहीं है कि हम 5 दिन पुराना बासी खाना इस तरह से खा रहे हैं कि वो अनहेल्दी है, क्योंकि ये देखिए विदेशों में तो खा ही रहे हैं लोग और जिंदा भी हैं, लेकिन हम जब गर्म खाना बनाते ही हैं तो कोशिश करें कि हम उतना ही बनाएं कि वो हमारे एक दिन में पूरा पड़ जाए, यानी सुबह का खाना ज़्यादा से ज़्यादा शाम तक चल जाए। तो अगर हम थोड़े सेफ्टी टिप्स अपनाते हैं तो हमारी सेहत के लिए ही अच्छा रहता है। और सखियों, बहुत सारी चीज़ें हम हमारे घर में बनाते हैं जो बहुत पुराने समय से चली आ रही है, पापड़ है, खींचे हैं, अचार हैं, मुरब्बे हैं, ये चीज़ें तो हम हमेशा से ही बनाते आए हैं, जो हम साल भर बना करके इस्तेमाल भी करते हैं, क्योंकि इन चीज़ों के अंदर हम ऐसे घर के ही बने हुए चीज़ें डालते हैं, शक्कर या नमक, इससे ये जो चीज़ें हैं जल्दी ख़राब नहीं होती है और हमेशा सेफ बनी रहती हैं और हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छी रहती है। कई चीज़ें, कई सब्जियाँ हमें जो है कुछ सीज़न में मिलती है, जैसे सांगरी है, कैर है, कुमठे हैं, इस तरह की सब्जियाँ हैं, काचरी है, ये कुछ विशेष सीजन में आती है, तो हम इन चीज़ों को काट कर धोकर सुखा भी लेते हैं और पूरे वर्ष पर इनका इनको खाते हैं, क्योंकि इनको हम नियमित रूप से धूप दिखाते रहते हैं। तो ऐसे अगर छोटे छोटे टिप्स जैसे हम अपनाते रहते हैं तो हमारी सेहत भी बनी रहती है, स्वाद भी बना रहता है। सखियों, अगर हम कुछ विशेष रूप से सेफ्टी टिप्स अपनाने की बात करते हैं तो हमारे जो पूर्वजों को हम देखते हैं कि वो समय समय पर अपने घर में जितने भी गेहूं, बाजरा, मक्का इत्यादि रखते थे तो उनको समय समय पर धूप दिखाते थे। धूप दिखाने से जानवर उनमें नहीं पड़ते हैं और कीटनाशकों का इस्तेमाल भी नहीं करते थे, और हमें भी कीटनाशकों के इस्तेमाल से बचना चाहिए। तो हम अपने जो ये गेहूं, बाजरा वगैरह हैं या किसी भी तरह के चीज़ों को हम सेव करके रखना चाहते हैं तो इसके लिए हम सूखे नीम की पत्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, उनसे भी उनमें कीड़े नहीं पड़ते हैं। साथ ही हम उनमें माचिस की तीलियां जो जली हुई होती हैं वो भी रख सकते हैं, इनकी स्मेल से भी इल्लियां वगैरह नहीं पड़ती है। और अगर हमें मसालों को सुरक्षित रखना है वर्ष भर के लिए तो सबसे बेहतर उपाय है कि अपने मसालों के अंदर बीच बीच में आप लौंग डाल दें कि लौंग की खुशबू से भी जानवर नहीं पड़ते हैं। अगर हम छोटे छोटे टिप्स अपनाते हैं तो हमारी सेहत के लिए अच्छा रहता है, क्योंकि अगर इनमें हम कुछ ऐसी दवाइयां डालते हैं जो कीटनाशक डालते हैं तो, या उन चीज़ों को हम बांध करके भी डाल देते हैं तो कई हद तक जो है वो हमें नुकसान तो पहुंचाती है। तो कोशिश ये करें कि हम उनमें ऐसी चीज़ें डालें जो घर की हों और जिनसे कोई कीड़े वगैरह ना पड़े। जैसे हमको मिर्ची को सेव करके रखना है तो हम मिर्ची में अगर नमक डाल के रख देते हैं, थोड़ा नमक और तेल डालकर उसको मसल कर हम पीसी हुई मिर्ची को रख देते हैं तो उसमें भी कीड़े जो है नहीं पड़ते हैं। और अगर मूंगफलियां हैं, सूजी है या फिर तिल है, इनको हम 2-3 महीने के लिए सेव करके रखना चाहते हैं तो हम इनको हल्का सा भून के रख देंगे ना, तब भी ये खराब नहीं होते हैं। और बचे हुए भोजन को हम जब पकाते हैं तो पकाने के तुरंत बाद में उसको फ्रिज में ना रखें, जैसे कि आप 2-3 घंटे का वेट करें उसके बाद में उसको फ्रिज में रखें तो उसकी जो गुणवत्ता है वो बरकरार रहती है। और सखियों, फ्रिज के अंदर भी कई बार जो है बहुत सारी गंदगी जमा हो जाती है तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि फ्रिज को भी नियमित रूप से साफ करें। फ्रिज के जो दरवाजे होते हैं उनमें कई बार ब्लैक कलर की फंगस लग जाती है जो नुकसानदायक होती है। तो सखियों, इस तरह से छोटे छोटे टिप्स अपनाकर हम अपनी सेहत को बरकरार रख सकते हैं। बातें ही जारी है, फिलहाल सुनवाते हैं गीत।

जी हाँ सखियों, आपका और हमारा साथ बस यूं ही बरकरार रहे और इस वादे के साथ कि फिर से होगी मुलाकात, दीजिए अपनी सखी मीनाक्षी शर्मा को इजाजत। नमस्कार।

जी हाँ सखियों, आपका और हमारा साथ बस यूं ही बरकरार रहे और इस वादे के साथ कि फिर से होगी मुलाकात, दीजिए अपनी सखी मीनाक्षी शर्मा को इजाजत। नमस्कार।

0: अभी महिलाएं सुन रही थी अपना कार्यक्रम महिला जगत एफएम 102 व 103.6 मेगाहर्ट्ज़, मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। श्रोताओं, हम आपको बता दें, आज सुबह 11:10 पर हमारे दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा सोमनाथ अमृत पर्व के अवसर पर संबोधन का सीधा प्रसारण। और लीजिए अब सुनिए विविध भारती के कार्यक्रम।
1: विविध भारती पर बेचारा

0: उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं जाने माने फिल्म निर्देशक रमेश तलवार। एक लंबी यात्रा रही है रमेश तलवार की, एक फिल्म निर्देशक, रंगमंच की दुनिया के निर्देशक और साथ में प्रोड्यूसर भी। सन 1977, दूसरा आदमी।
1: अरे चल कहीं दूर निकल जाए।
0: 1981, बसेरा।

0: साहिबा।
1: बतौर प्रोड्यूसर उन्होंने बनाई फिल्म रंगमंच पर भी रमेश तलवार का लंबा काम रहा है। हम रमेश तलवार जी के घर गए और उनसे की लंबी बातचीत। रमेश तलवार से बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। आज सुनिए तीसरा भाग। पिछले एपिसोड में आपने सुना,
2: अब मुझे पूरा दिल लगा के पिक्चर बनानी है
3: जी।
2: ये पिक्चर अच्छी बने और वो हमने मेहनत करके पिक्चर अच्छी बनानी शुरू की। 12 रील में पिक्चर बंद हो गई।
3: अरे बाप रे।
2: क्योंकि वो जो फाइनेंसर था उसने कहा मैंने जयपुर में होटल खरीद लिया है और मेरे पास अभी पैसे नहीं है,
3: ये लो।
2: और मेरे पास राजेश खन्ना के भी डेटे है, ऋषि कपूर भी डेटे है,
3: हीरोइने भी
2: है, हीरोइनों के भी डेटे है और ठहर गया। अब साहब 2-3 साल और वेट करना पड़ा। अब अचानक 2-3 साल के बाद वो आए कि भाई मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ। अब लोगों के कपड़ों की स्टाइल बदली हो गई थी, बेल बॉटम नहीं रहा था, कपड़े और तरह के लोग पहनने लग गए थे, कार्टून पिक्चर में पहले जो बनी थी सब कुछ बदली हो गया था। मतलब 5

0: साल में फिल्म बनी, 5 ईयर लगे उस पिक्चर को। उसके बीच मेरी दूसरी पिक्चर मिल भी गई, वो भी करना शुरू कर दिया। और उस बीच मुझे जावेद साहब ने अलग अकेले होके मुझसे वो पिक्चर जो दुनिया, उसमें जावेद साहब अकेले हो गए थे, सलीम साहब से अलग हो गए थे।
1: और वो तो दिलीप कुमार साहब थे वहाँ,
0: दिलीप कुमार साहब के हीरो हैं। तो जावेद साहब ने कहा कि वो एक्चुअली उसमें भी एक ये पंगा था कि यश जोर साहब जो थे वो आते थे यश जी के पास डायरेक्ट करिए मेरी पिक्चर। यश जी कहते थे एक मैं गुलशन राय के लिए कर रहा हूँ, एक मैं खुद की करता हूँ, इससे ज्यादा पिक्चर में डायरेक्ट कर नहीं सकता। तो चलता रहा, यश जोर आते रहे। तो वो एक स्टेज पे ऐसा हुआ कि वहीदा रहमान जी से वो प्रोडक्शन भी बहुत करते रहे ना देवानंद की भी, तो इसलिए वहीदा जी को भी जानते सबको, तो उन्होंने रख रखाव बहुत अच्छी थी उनकी,
1: कनेक्शन
0: सबके। तो वहीदा जी से कहने लगे यार यश पिक्चर नहीं कर रहा, कब से पीछे लगा हूँ, 2-3 साल से रोज जा रहा हूँ, मेरे इधर कंपनी में कोई पिक्चर नहीं है। तो वहीदा जी ने कहा तो रमेश तलवार से करवा लो।
1: अरे गजब,
0: रमेश तलवार से, वो तो यश चोपड़ा का असिस्टेंट है, लेकिन उनका डायरेक्टर भी 2 पिक्चर डायरेक्ट कर चुके हैं। एक पिक्चर सवाल में मैंने भी काम किया है रमेश के साथ, संजीव कुमार, मैं, हम सब ने किया है, शशि कपूर है उस पिक्चर में।

வெரி குட் டைரக்டர் வாஸ்தவ டைரக்டர் டு इन्होंने मुझे यश जोर ने कहा कि भाई आप अब मैं 5 मिनट मिलने आना चाहता हूँ। मैं पाली हिल शिफ्ट हो चुका था तभी उसको ऑफिस बना लिया था मैंने। तो मैंने कहा मैं पाली हिल पे हूँ वहाँ पे आए वहाँ पे। तो कहने लगे कि भाई वो ऐसा है कि यश जी के

0: में जाता रहा, तो ऐसे अभी वैदा जी ने कहा है कि रमेश के साथ मैंने काम किया है तो आप मेरी पिक्चर कर लीजिए। मैंने कहा भाई मेजर जी की पिक्चर कैसे करूँ, मैं उनका चेला हूँ। तो मुझे टाइम दीजिए, मेजर जी से बात करता हूँ, एक दो दिन में उनसे बात कर लूंगा, फिर हम मिल लेते हैं, जो भी बात होगी मैं आपको कह दूंगा, आपके लिए आसान हो जाएगा। तो यह चीज से मैंने बात की, कैसा? उन्होंने कहा हाँ बेटा करो, क्यों नहीं करो। ओहो, मैंने कहा ये जी मैं आप कंपनी में भी कर रहा हूँ और ऐसे। नहीं नहीं नहीं, तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे बैक पे हूँ, फिक्र नहीं करो, अभी मेरी जरूरत हो जाओ। अब मैंने नेक्स्ट टाइम को कह दिया हाँ मैं करूँगा। तो हम लोग कहानी वानी सुनने इस तरह शुरू, क्या होगा अभी ड्रिप कर लिए नहीं थे अभी हमने,
1: अच्छा
0: कुछ नहीं था, खाली तभी यही है बिटुन
1: सागर साहब लिख रहे थे,
0: कोई नहीं कुछ किसी को लिया नहीं था हमने।
1: अच्छा
0: अभी बातचीत ही शुरू हुई
1: जी,
0: तो इतने में जावेद साहब ने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा रमेश जी एक रात की बात बताता हूँ, आप किसी से कहेंगे नहीं। उनको बताइए, मैं और सलीम साहब अलग हो रहे।
1: ओ
0: इस बीच में हुआ ये था कि जावेद साहब के घर पे मेरा आना जाना बहुत ज्यादा हो गया था। वो इस तरह कि यहाँ एक छोटी पिक्चर बन रही थी साथ साथ, रमन कुमार डायरेक्टर थे, रमन इफ्टा के मेरे असिस्टेंट भी रह चुके थे और कुलदीप सिंह म्यूजिक दे रहे थे उसमें,
1: और जावेद साहब,
0: जावेद साहब गाने लिख रहे थे। उससे पहले जावेद साहब ने गाने नहीं लिखे थे
1: जी,
0: यश चोपड़ा के लिए एक दो गाने लिखे, ये पूरी पिक्चर के गाने उन्होंने लिखे थे।

0: सेटिंग करते थे इनके घर पे गानों की भी, कुलदीप जी आ जाते बाजा लेके आते, और हनी मेरी असिस्टेंट भी थी इन फिल्मों में
1: जी,
0: बसेरा में असिस्टेंट थी।
1: अच्छा,
0: तो हमारे बाकी लोग भी, हमारा उस तरह को ठिकाना नहीं था कहाँ जाए, आज दोपहर कहाँ मिले, तो हम इफ्टा के लोग वहाँ पे बैठा करते थे, रमन, राकेश बेदी, अवतार गिल, भरत कपूर, हम सारे लोग वहाँ जाके इनके हॉल में बैठते थे, चाय वाय पीते थे, गपशप मारते थे, एक आध वीडियो पे पिक्चर देख लेते थे उस जमाने में जो VHS होता था, और चले जाते थे। तो जावेद साहब मुझे अंदर ले गए और उन्होंने कहा कि ये बात है, आप अब कौन सी पिक्चर कर रहे हैं? मैंने कहा जी ऐसा है कि एक पिक्चर ऑफर हुई है यश जोहर की तरफ से, और एक अपनी वो वाली कर रहा हूँ, और जो भी। तो बोले भाई देख लो, अगर तुमको मेरे संग फिल्म करनी है तो। मैंने यश जोहर से कहा, उन्होंने कहा भाई हमारी आपस में जमती नहीं है, कुछ गड़बड़ है, सलीम जावेद के साथ हमारी गड़बड़ हुई है।
1: जी जी।
0: तो मैंने कहा भाई देखो, राइटर तो बहुत अच्छे हैं, अलग हो गए हैं, डायलॉग के लिए लिखते हैं, तो बाकी देख लेंगे चीजें, अगर आप चाहें तो मैं एक मीटिंग आप कर लीजिए उनके साथ, आपस में जो कुछ जो झगड़े हैं वो सॉल्व कर लीजिए। उनकी पिछली पिक्चर जो लिखी थी सलीम जावेद ने, उसमें कुछ हुआ था, यह जोर की फिल्म दोस्ताना थी या कौन सी थी,
1: दोस्ताना,
0: उन लोगों ने अलग मीटिंग की जावेद साहब ने और जोहर साहब ने, और उनका आपस में सॉल्व हो गया मामला। जैसे इंडस्ट्री में होता है ना, परमानेंट दोस्ती ना परमानेंट
1: दुश्मनी,
0: थोड़ी देर में लोग आपस में मिल जाते हैं। हमारी इंडस्ट्री इस मामले में बहुत अच्छी है।
1: जी जी।
0: तो उन्होंने कहा भाई हमारा हो गया। मैंने इनको एक कहा, यश जोहर को एक पॉइंट बोला, जिसलिए उन्होंने बोले देखिए भाई आपने कितने पैसे दिए उनको पिछली पिक्चर में, तो बोले 10 लाख दिए, तो बोले 5 लाख में अगर ये आपकी फिल्म भी लिखे और गाने भी लिखे, बोले गाने तो मेरे आनंद बख्शी लिखते हैं। मैंने कहा सोच लीजिए, मेरे साथ साथ वाले गाने इन्होंने बड़े अच्छे बनाए।
1: जी जी जी।
0: देख लीजिए आप, आपको 5 लाख में सब चीजें मिल जाएंगी, जो बख्शीश आपको आप फीस देते नहीं, अगर आपको प्रूव करते हैं। तो उनको एज बिजनेस पॉइंट ये बात समझ आ गई कि आधे रेट में सलीम जावेद मिल रहे हैं, मेरे जावेद मिल रहे हैं, जिसमें गाने भी मिल रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो उन्होंने उनसे बात की कि भाई आप पैसे 5 लाख लेंगे?
1: हाँ हाँ।
0: हाँ लूंगा 5 लाख। मैंने रमेश से कह दिया था, रमेश जी से कहा था कि मैं उसमें पैसों में गाने भी फ्री लिखूंगा अगर चाहिए हो तो। मैंने कहा था बख्शी जी को मत लीजिए, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं लिख सकता हूँ। तो वो क्या हो गया जब गाने वाले अब सब, उन्होंने कहा मुहूर्त करनी है, बोले क्या कास्टिंग होनी चाहिए, दिलीप कुमार,
1: अरे बाप रे,
0: और ऋषि कपूर बोले थे, रमेश का दोस्त है ऋषि कपूर।
1: हाँ, इसलिए
0: दिलीप साहब काम भी नहीं करते किसी और के साथ, मतलब उतना ऋषि के साथ काम भी उनका हो जाएगा, कोई पिक्चर नहीं आ रही है उनकी, दिलीप साहब ऋषि कपूर की कॉम्बिनेशन वाइज कमर्शियली आप सोच लो एंगल्स।
1: हाँ हाँ।
0: तो हो गया, बोले अब अगला स्टेप सब्जेक्ट ढूंढने शुरू किए, सब्जेक्ट मिल लिया, टाइटल सोचने लग गए, ये टाइटल वो टाइटल, दुनिया पे आके रुके दुनिया टाइटल। बोले चलो मुहूर्त करते हैं, मुहूर्त कर डाला साहब,
1: कहानी नहीं है,
0: कहानी नहीं,
1: बाबा
0: मुहूर्त किया महबूब स्टूडियो में, दुनिया भर के लोग आए, सारे स्टार,
1: दिलीप
0: कुमार साहब, दिलीप साहब, यश चोपड़ा जी ने क्लैप दी मेरे को ब्लेसिंग करने के लिए, पहला शॉट डायरेक्ट किया उन्होंने, ऑल द बेस्ट बोलने के लिए, और भी जो हमारे

0: गिरफ्ती के दोस्त सारे जमा हुए थे। तो अब था वो जैसे मुहूर्त हो गया, अब हम लोग दिल्ली साहब से पहले कह लिया हम सब्जेक्ट देख रहे हैं, आपको सुनाएंगे, आपकी पसंद का ही सब्जेक्ट होगा तो ही करेंगे। वो मान गए, ये जो की भी इज्जत करते थे मान गए, पुराना आदमी है जो भला आदमी है। अब साहब हम लोग जाके जू बीच पे बैठे समंदर के किनारे
1: कहानी ढूंढ रहे
0: क्या बनाए। वो सब्जेक्ट तो बन चुकी है। वो तो ऐसे पुरानी फिल्मों को याद करके उनका पैरेलल ढूंढने लगे।
1: हाँ।
0: तो साहब ऐसे करते करते कोई एक सब्जेक्ट ओके किया।
1: हाँ।
0: उन दिनों मैं यश जी के साथ, यश चोपड़ा जी के साथ मिलता था, बताता था कि क्या क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं। तो उनसे भी कहा कि भाई मैं ऐसे जावेद साहब अलग हो रहे हैं, आप देख लीजिए, अगर आप चाहिए हो तो आप लिख सकते हैं उनको एज राइटर। उसने कहा अच्छा। मैंने कहा रेट भी आधा हो गया, वो भी सोच रहे थे पिक्चर लेने की। तो उन्होंने भी कहा ठीक है। उन्होंने भी जावेद साहब को बुला के
1: सिलसिला वाला काम शुरू कर दिया जी।
0: अब जो है इधर ये मेरे साथ जब बात नहीं तभी पिक्चर बना दे, वो दिलीप साहब की पिक्चर जो है वो वाली
1: शक्ति नहीं
0: इनकी पिक्चर का नाम कुछ और था,
1: मशाल का।
0: अब मशाल का सब्जेक्ट मैंने ओके किया हुआ था।
1: यश जी ने डायरेक्ट की वो,
0: और वो मैंने ओके किया। मैंने अच्छा सब्जेक्ट बहुत बढ़िया। जावेद साहब ने ऐसे ही मुझे कहा अगर आप कहें तो ये सब्जेक्ट मैं यश चोपड़ा को भी सुना दूं।
1: जी।
0: उन्हें यश जी को सुना दिया, यश जी को सब्जेक्ट पसंद आ गया। अब मैं कैसे बोलूं कि
1: तो मैंने ओके किया,
0: मैं नहीं बोल सकता था।
1: जी।
0: उनको भी नहीं बोल सकता, जावेद साहब को भी नहीं बोल सकता था, मेरी हिम्मत नहीं थी, आज तक नहीं बोल सकता हूँ जावेद साहब।
1: जी।
0: तो उन्होंने कहा मैं आपके लिए दूसरा सब्जेक्ट दे रहा हूँ, बहुत अच्छा।

0: उन्होंने मुझे इसका आइडिया सुनाया, यशो को भी सुनाया,
1: दुनिया का
0: आइडिया थोड़े दिनों के बाद, दो चार दिन। और फिर ये शबाना शूटिंग कर रही थी आउटडोर में, शायद कौन सी पंक अपने स्क्रीन कपूर क्या डायरेक्टर हमारा फॉरन में चला गया, जो देव साहब का भांजा, क्या नाम है,
1: शेखर कपूर
0: नामों में आजकल गड़बड़ होती है। शेखर कपूर की शूटिंग कर रही थी पहली फिल्म की, कहीं देहरादून या उस तरफ कहीं नॉर्थ, और जावेद साहब के साथ दोस्ती थी इनकी। फिर जावेद साहब लिखने वहां चले गए शबाना के यहाँ शूटिंग, और 34 सीन लिख के ले आए वहां से और आके हमको सुनाए, बहुत अच्छे सीन थे, बढ़िया। लेकिन वो कहते थे कि मैं स्क्रिप्ट कंप्लीट ही देता हूँ। तो मैंने कहा भाई अब मैं दो तीन प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, जब मैं कंप्लीट देता हूँ मैं एक ही पिक्चर लिख रहा होता हूँ, तो तुम यार अपने दोस्त हो, तुम समझ सकते हो ना, तुम एक शेड्यूल करो। मैंने कहा आप दिलीप साहब को कैसे कन्विंस करेंगे 34 सीन से शुरू करके पिक्चर, मतलब खाका मेरे दिमाग में तैयार है, स्क्रीन पे तैयार है, मुझे स्क्रीन पे सुना दिया उन्होंने। तो ये हम चलते दिलीप साहब से अपॉइंटमेंट लेते, सुनाते, तो सी रॉक बुक किया गया।
1: अच्छा,
0: वहाँ पे दिलीप साहब ने कहा मैं एक दिन में पूरी कहानी नहीं सुनूंगा।
1: अरे बापे,
0: उनका स्टाइल है, तो इतनी देर सुन सकता हूँ, जो भी उन्होंने सुना, इन्होंने पहले 34 सीन तो पूरे क्लियर थे, उस तरह सुना दिए, आगे के सीन सुनाए, उनके कुछ एक सजेशन जो आई, इन्होंने कुछ आर्गुमेंट दिया, कोई ली कोई नहीं ली, जो भी जावेद साहब को ठीक लगता था मुझे भी ठीक लगता था, वो सजेशन ले ली गई, वो फिल्म में रखी गई जो दिलीप साहब की, और बाकी जावेद साहब ने लिखा। अब वो क्या करते थे कि जब शूटिंग होती थी तो एक दिन पहले मुझे मेरे लिए सीन लिख देते थे, कई बार बोलते थे यार अच्छा नहीं बन रहा, मैं रात को लिखूंगा या सुबह 5 बजे उठ के लिखूंगा, तो मैं 10 बजे सेट पे ला करूंगा।
1: वाह वाह,
0: क्योंकि दिलीप साहब तो 12 बजे आएंगे
1: जी,
0: तो तेरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वो वाकई ऐसा होता रहा, वो देते रहे करते रहे, और ऐसे हमने वो फिल्म की
1: दुनिया

दुनिया।

0: दिलीप साहब को डायरेक्ट करने का अनुभव कैसा रहा आपके लिए?
1: दिलीप साहब के साथ मैंने पहली जो मीटिंग मेरी हुई ना, जब मैं साइन करने गया पहली बार
0: जी
1: कि ऐसे फिल्म करना है, तो मेरा क्या होता है कि जो दोस्त यार आपके होते हैं ना,
0: हाँ,
1: वो आपकी तारीफ करते हैं। पंडरी झुककर उनका मेकअप करता था
0: जी, बहुत बड़े मेकअप मैन,
1: बहुत बड़े मेकअप मैन, मेरी फिल्मों के मेकअप मैन भी होते। और जब मैंने नूरी के हम प्रोडक्शन की प्रोड्यूस की तो सबका शेयर रखा, उसमें पंडरी झुककर का भी शेयर था 5%।
0: वाह,
1: ऐसे हमारे 10 लोगों के हमने लोगों में बांटा था कि 20% यश चोपड़ा जी, 20% गुलशन राय जी, और जो बाकी 60% थे, 10% सागर सती राइटर, 10% खयाम साहब म्यूजिक डायरेक्टर, 10% मनमोहन कृष्ण डायरेक्टर, और मैंने अपने लिए 5% रखे थे जो जैसी ने 10% करवा दिए।

0: क्योंकि मेरे साथियों को मैं 5% दे नहीं अच्छा लगता। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं बेटा तू सब कर रहा है तो मैं गलत बात, तुम 10% लो। तो मेरा 10% हो गया, 5% रमेश वाला ऑपरेटिव कैमरा मैन जो था, 5% KG उनका सीनियर कैमरा मैन, 5% पंडरी जुकर और 5% उनका दोस्त जो प्रोडक्शन हैंडल करते थे वासुदेव धीरे साहब।
1: जी जी जी गजब।
0: और ये सब लोगों के साथ क्यों हमने ये पार्टनरशिप की कि मैंने कहा पंडरी जुकर की 3-4 बहनें उनकी शादी करवाता रहता है और पैसे सारे खर्च कर देता है। वासुदेव धीर की 2 बेटियां हैं, उसके पास पैसे नहीं है शादी करने के लिए।
1: ओहो।
0: मनमोहन किसका बेटा डॉक्टरी पढ़ रहा है, मनमोहन जी के पास पैसे नहीं है, इनको पार्टनर बनाएंगे। उनका बेटा जो है इस पिक्चर में हीरो होने वाला था खयाम साहब, ये पिक्चर पहले नूरी बनाने वाले थे जिसमें वहीदा रहमान हीरोइन होने वाली थी, सागर सरदी ने उनके लिए लिखी थी।
1: अच्छा,
0: सागर सरदी की 2 पेज की शॉर्ट स्टोरी के ऊपर ये स्क्रिप्ट सागर सरदी ने उनको फिल्म की लिख के दी। जब 2 पेज की स्टोरी सुनाई थी उनको बहुत अच्छी लगी क्योंकि कुत्ता हीरो है। तो वो उन्होंने तो शुरू में गाने वाले भी 2-3 रिकॉर्ड कर लिए थे खयाम साहब ने अपने बेटे को हीरो लेके। और फिर वो पहले तो वहीदा रहमान जी के लिए बनाई, वहीदा रहमान जी के साथ कोई डायरेक्टर और था, सीनियर डायरेक्टर थे कोई, फिर वो नहीं बना प्रोजेक्ट, बिका नहीं जा, नहीं बना जा, 2-4 नहीं हुए। उसके बाद वो चाहते थे कि बेटे को लेकर न्यू कमर के साथ पिक्चर बनाओ,
1: प्रदीप को लेके,
0: लेकिन वो नहीं बन पा रही। लेकिन गाने उन्होंने 2-3 रिकॉर्ड कर लिए थे और जावेद अख्तर साहब के फादर के ही गाने थे, जानेदार अख्तर साहब के गाने, वो रिकॉर्डिंग हो चुकी थी। तो उन्होंने मुझे वो गाने भी सुना दिए थे, यश जी को भी सुना दिए थे। तो भाई उनको वो तो रिजर्व करते हैं 10%, तो 10% उनको पार्टनर बना लिया। ये बात पंडित जुकर ने
1: दिलीप साहब को बता दी। ओहो, गजब।
0: कि बड़ा अच्छा लड़का है रमेश, यश जी का राइट हैंड मैन है और बहुत मेहनती है और थिएटर भी करता है।
1: हाँ।
0: और बहुत समझदार है और दोस्तों के साथ मिलजुल के चलता है।
1: हाँ हाँ हाँ।
0: तो दिलीप साहब ने मेरी मीटिंग रख ली, मतलब मैं चला गया मिलने मुझे, तो मेरे साथ पंजाबी में बात करने लगे।
1: ओह क्या बात है,
0: वही पंजाबी उनकी थी जो हम पंजाबी मेरे घर में बोलते हैं
1: जी,
0: वो पंजाबी वो वहाँ के थे पिशावर के
1: जी,
0: उस तरफ के, और मैं बफा एबटाबाद मानसेरा वाला, तो हमारे घर में जो पंजाबी बोली जाती थी जुल जा को जुल बोलते थे, जुलो जरा यार के बदले जरा।
1: अच्छा
0: यारा।
1: जी जी जी, इसीलिए वो सागर यारा,
0: सागर यारा
1: किताब में
0: आई। करेक्ट। तो उन्होंने उस तरह बात, मैंने कहा बातचीत जब हो गई, उन्होंने कहा बेटा मैं करूँगा, जरूर करूँगा, उस तरह प्रोड्यूसर भी अच्छा है, आदमी अच्छा है, यस यस करूँगा, सब्जेक्ट मैं पहले पूरा सुनूंगा, उसमें बैठूंगा पूरा, मुझे जो चीज़ पसंद नहीं आएगी वो कहूँगा। कहा जी वो ऐसे सलीम जावेद अलग हो गए, आपको बता रहा हूँ, किसी को बताइएगा मत। और इस तरह से बात शुरू की
1: और इस तरह फिल्म दुनिया बनी।
0: हाँ।

0: आपके मन की फिल्म बनी थी?
1: नहीं, दुनिया मैं क्या बताऊं आपको, सिवाय इस बात के कि मुझे जो सीन उसी दिन मिलता था, जिस तरह फिल्मों में उस जमाने में ऐसा ही होता था। एक शेड्यूल है, उस शेड्यूल के सीन मिलते हैं आपको, अगले सीन राइटर सब बिजी होते थे।
0: जी जी जी।
1: तो मुझे वो थोड़ा सा
0: अनकम्फर्ट था,
1: हल्का सा। क्या आप और उसी टाइम से सोच सकते हैं आप?
0: हाँ।
1: आप उसके साथ जी नहीं सकते उन सीनों के साथ। बाकी सब ठीक था, कोई ऐसी चीज नहीं थी। जावेद साहब बड़ी हेल्प करते थे, ऐसा अच्छा समझा के सीन बताते थे, उनकी जो खुद का विजन था वो भी बताते थे, ऐसा नहीं है। फिर भी होता है ना कि डायरेक्टर अपनी उठते बैठते सोते जागते नहीं वाला होता होता।
0: जी जी।
1: और इतनी बड़ी कास्ट हो गई थी, दुनिया का कौन आदमी है जो उस फिल्म में नहीं था? दुनिया की कास्ट सोचिए आप, अशोक कुमार,
0: दिलीप कुमार,
1: प्रदीप कुमार,
0: अरे बाप रे,
1: प्राण,
0: ऋषि कपूर,
1: अमरीश पुरी, प्रेम चोपड़ा, अरे भाई ये सीनियर, मैं सीनियर की बात कर रहा हूँ
0: जी,
1: है? फिर गेस्ट रोल में सारा जी। इमेजिन कर सकते हैं कि इतनी बड़ी फिल्म, आप किसी फिल्म की कास्ट में इतने आदमी एक पिक्चर में बता दी,
0: उसके पोस्टर भी भव्य थे एकदम।
1: हाँ, तो आप ये तो लोग समझते थे लॉटरी लगी है
0: जी।
1: जो इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली होते होते हुआ ना।
0: जी जी जी, बिल्कुल, बहुत बड़ी फिल्म हो गई,
1: बहुत बड़ी फिल्म। और इस दौरान जो है थोड़े से सलीम साहब मेरे से खफा भी थे,
0: क्योंकि आप जावेद साहब के साथ काम,
1: मैं अलग हो गया ना उनको, उनको लगता है कि मैंने तोड़ दी होगी, मैंने तोड़ी नहीं थी।
0: जी जी।
1: मुझे तो उन्होंने बताया, उन्होंने आपस में पहले फैसला कर लिया था
0: जी,
1: पहले मीटिंग हो चुकी थी
0: जी।
1: तो उनके पास मैं सलीम साहब के पास एक दो प्रोजेक्ट लेके गया, एक दो चीजें। एक पहले मैं लेके गया, एक कोई प्रोड्यूसर आया मेरे पास, जितेंद्र साहब प्रोड्यूसर थे, जितेंद्र एक्टर, उन्होंने कहा मेरे पास श्रीदेवी की डेट है,
0: ओ,
1: लेकिन मुझे जल्दी पिक्चर शुरू करनी है, ये देखो क्या करना है। तो मैंने जावेद साहब से पूछा कि ऐसा, बोला सलीम साहब के पास एक सब्जेक्ट है जो शुरू में हम दोनों ने साथ में काम भी किया था, उनके पास है सब्जेक्ट श्रीदेवी का। मैं सलीम साहब के पास चला गया कि भाई आपके पास ऐसा सब्जेक्ट है, और जितेंद्र प्रोड्यूसर है, उन्होंने कहा मैं चलता हूँ, फिर आ जाऊँ। उन्होंने जितेंद्र को सब्जेक्ट सुनाया, सब्जेक्ट उसी तरह कम्प्लीट नहीं था, लाइन
0: था,
1: आइडिया था, लाइन थी, लाइन सुनाई पूरी उन्होंने
0: जी,
1: ये नहीं कि कम सुनाया हो, लेकिन पूरा नहीं था, एक था ना पूरा फुल स्क्रीन पे फॉर्म नहीं, वन लाइन टाइप वाला आइडिया था। तो उन्होंने कहा अगले महीने की डेटे है, जितेंद्र ने कहा मैं ये नहीं हो सकती और डेटे पोस्टपोन करूँगा।

0: पर वो हो जाएगा। और अगर बच्चा वो पिक्चर ये टेंडर से मेरी भी छुपी पिक्चर मुझे भी नहीं मिली और सलीम साहब को भी नहीं मिली। उसके बाद मैं साहिबा पिक्चर जिनके लिए कर रहा था, साहिबा के बाद जब वो कंप्लीट हो गई तो उन्होंने कहा अगला प्रोजेक्ट हम करते हैं, इस बार ऋषि कपूर को समझा दो कि अलग पेयर लेते हैं अपन, मतलब ऋषि कपूर और संजय दत्त नहीं लेते, संजय दत्त और सलमान खान लेते, वो दोनों साथ में पढ़े हैं, दोस्त भी हैं। तो मैंने कहा सलीम साहब के पास चलते हैं, उनको बोलते हैं ये बात, वो सोचे। अभी हमारी पिक्चर रिलीज भी नहीं हुई है
1: जी,
0: कंप्लीट हो गई थी, अभी रिलीज हो गई थी, बाकी पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा था। तो मैं उन प्रोड्यूसर साहब को लेके, चावला साहब, डीके चावला नाम था उनका, उनको लेके गया इनके पास। इन्होंने कहा प्रोजेक्ट ऐसा ये है, ये हमारे सोचा है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। तो सलीम साहब ने मुझसे कहा, वो मुझे रमेश बोला थे, रमेश आप यहाँ बैठिए, हम दोनों जरा अलग बात करना चाहते हैं।
1: ओके।
0: मैं हॉल में बैठा रहा, ये अंदर बेडरूम वगैरह में गए, इन्होंने आपस में बात कर ली, दोनों वहाँ आए, बहुत खुश थे। तो
1: पैसों वगैरह की बात थी,
0: पैसों की बात थी ना, तो मेरे सामने नहीं करना चाहते होंगे, जो भी होगा सलमान खान का क्या रेट होगा और राइटर एज इनका क्या रेट होगा, वो बातचीत तय हो गई, दोनों खुश थे। और सलीम साहब ने मुझे कहा रमेश सब डिसाइड होगा भाई, सब ये सेटिस्फाइड है, पूछ लीजिए इनसे। मैंने कहा क्यों जाए, चावला साहब ओके, बोले 100% ओके।
1: वाह,
0: ओके हो गया सब, हम निकले। हमने जाना था नेगेटिव कटिंग का मुहूर्त होता है जब पिक्चर एंड में, उस जमाने में तो रेमनॉल्ड लैब में गए, नेगेटिव कटिंग का मुहूर्त किया, कैंची वो लगाई, नीचे लिफ्ट से नहीं आए, सीढ़ियों से नीचे उतरे, जैसे कंपाउंड में आए मेरे प्रोड्यूसर साहब गिर गए। वो उनके बहुत शरीर बहुत हैवी था उनका,
1: जी जी जी,
0: बहुत पेट बहुत निकला हुआ ये सब वगैरह थक करके, और वो सब वो मालिक वो आ गया, रेमनॉल्ड मालिक उनका वो आ गया, और लोग जमा हो गए, हाथ पाथ देखा उन्होंने गड़बड़ है, तो रेमनॉल्ड वाले ने बोला प्लीज यहाँ से लेके जाओ। तो बाहर गाड़ी में उनको डाला,
1: हॉस्पिटल ले गए,
0: हॉस्पिटल से पहले घर लेके आए, तो भी जा चुके थे, मतलब वो देखा किसी डॉक्टर ने जो वहाँ बुलाया गया लोकल, उसने कहा नहीं, उनको वहाँ पीछे सीट पर लेटाया हुआ था, मैं ड्राइवर के साथ आगे बैठा था, उनकी गाड़ी थी, तारापुर गार्डन यहाँ पे आए और वहाँ रहते थे और वो चले गए। और इस तरह ये सलीम साहब का सब्जेक्ट जो है
1: अटक गया,
0: फिर अटक गया।

0: कभी तो हंसाए।
1: वो प्रोजेक्ट मेरा फिर ड्रॉप हो गया, मेरा प्रोड्यूसर ही मेरा। अब मेरे लिए ये मुश्किल थी कि वो पिक्चर जो रह गई है मैं बना चुका हूँ,
2: हाँ,
1: वो रिलीज होनी चाहिए। अब था वो रिलीज के चक्कर में, बजट कितना, उन्होंने किससे क्या उधार लिया, वो करते करते जितने पैसे आ रहे थे उससे ज्यादा उन्होंने उधार लिया हुआ था।
2: जी जी जी।
1: उन्होंने पर्सनल एक्सपेंसेस के भी लिया हुआ था, फैमिली के लिए लिया हुआ था, शिमले के थे वो, तो जो पैसे आने हैं मुझे डिस्ट्रीब्यूटरों से उससे ज्यादा उधार है, तो सबसे मीटिंग करके मैं वो कम करवाता रहा कि पिक्चर रिलीज होगी तो आपके पैसे मिलेंगे। तो इतने पे मान जाइए, चल गई तो आप उसमें शेयर रख लीजिए अभी से।
2: जी जी।
1: ना चली तो आप सबके लक है। करते करते एक साल लगा वो पिक्चर रिलीज करवाने में। वो पिक्चर जिस दिन रिलीज हुई उस दिन संजय दत्त अरेस्ट हो गया।
2: बाप रे।
1: उनके पोस्टर फाड़ दिए गए लालबाग में, और उनका बहुत जबरदस्त रोल था मेरी पिक्चर में, और ऋषि कपूर ने संजय दत्त को ये कहा था साले इसमें तेरे को अवार्ड मिलेगा तू ये रोल कर। और मैं जब संजय दत्त से मेरी कोई दोस्ती नहीं थी तो थ्रू ऋषि कपूर में गया था साइन करने।
2: हाँ हाँ।
1: तो उसके बाद संजय दत्त के साथ मेरी बहुत दोस्ती होगी, मतलब फिर अगली पिक्चर में देखिए आप संजय दत्त और सलमान खान हम ले रहे थे और मैंने ऋषि कपूर के कान में बात डाल दी थी।
2: जी जी जी।
1: इस तरह साहब हमारी फिल्म में भाग्य सर्कमस्टांसेस एक्टर्स का वो, अब ये सोचो कब सोचा था कि साहिबा जैसी फिल्म एक डेढ़ साल लेट भी हो गई
2: और सलमान खान ड्रॉप हो गए,
1: जो वो ड्रॉप हो गए और वो पिक्चर जो है चली नहीं, लगाई मतलब लोगों ने पोस्टर फाड़ दिए ना।
2: लेकिन आज उस फिल्म को लोग बहुत
1: लोग देखते हैं, नहीं करते भी हैं, देखते भी हैं, याद भी करते हैं, सब है, गाने भी इतना है, सब कुछ है। लेकिन देखिए जब हमने बनाई थी ये सोच के बनाई थी कि ये फिल्म अभी जो फिल्में इस वक्त आ रही हैं ये सबसे हटके होगी।
2: बिल्कुल। और थी भी वो
1: उस तरह की है। तो एनीवे माधुरी दीक्षित संजय दत्त ऋषि कपूर के साथ
2: बड़ी स्टार कास्ट,
1: बड़ी स्टार कास्ट, अच्छा मुहूर्त हुआ, अच्छी तरह से बनाई, बड़े प्यार से बनाई। मेरे प्रोड्यूसर ने कहीं कुछ ये नहीं कहा ये नहीं करूँगा, मैंने कहा मैसूर जाना है मुझे, मैसूर पहले तो शूटिंग चलो जाओ आते हैं चलते शिमला शूटिंग हो, वहाँ नॉर्थ में शूटिंग ओके, जहाँ पे बोला जो जिस तरह तो लेने के लिए कि ये विजुअल आएगा तो ये पिक्चर अलग लगेगी सबसे, ऐसी फिल्म थी। आप उसका विजुअल देखिए, आप बड़ा कैमरामैन लिया महाजन साहब कैमरामैन,
2: ओहो
1: के महाजन, तो सब चीज़ें उन्होंने किसी चीज़ में कमी नहीं की। क्या हुआ सब डेथ होनी थी और हार्ट अटैक, सीढ़ी उतरने का हार्ट अटैक तो पहली बार, तो फिर बाद में पता चला कि उनकी वाइफ ने मुझे बताया था कि उनका उनका कमजोर था हार्ट, पहले तो प्रॉब्लम थी उनकी।
2: जी जी जी।
1: ये अचानक अभी सब कुछ नहीं हुआ है।

0: फिल्मों और रंगमंच के जाने माने निर्देशक रमेश तलवार से अपने इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत आज इस लंबी बातचीत का तीसरा भाग था। संपादन यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
1: उजाले उनकी यादों की।

FM 102 व 103.6 MHz, मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं।

0: अब दुनिया के किसी भी हिस्से में सुनिए आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल।
1: ओ पिव जी, ओ ढोला जी, ओ पिव जी थोड़ी सी ना जाने।
0: प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर गूंज रहा है आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल। अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन एआईआर। इस ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करने के बाद रेडियो आइकन का चुनाव करिए और अब आकाशवाणी कोटा को अपने मोबाइल पर सुनने का आनंद लीजिए।

0: अपनी बोली, अपना संगीत, कभी भी, कहीं भी, आकाशवाणी कोटा के चंबल चैनल पर।
1: श्रोताओ, हम आपको बता दें, आज सुबह 11:10 पर हमारे दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा सोमनाथ अमृत पर्व के अवसर पर संबोधन का सीधा प्रसारण।
2: '27 से पहले भारत के पास ऐसा कोई सशक्त माध्यम नहीं था जो भारत को एक सूत्र में पिरो सके। 23 जुलाई 1927 को बॉम्बे से पहली बार रेडियो की आवाज गूंजी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के नाम से। 8 जून 1936 को इसे नया नाम मिला ऑल इंडिया रेडियो। एक ऐसी आवाज जो हर दिल तक पहुंची। धीरे धीरे ये सिर्फ एक आवाज नहीं रही, ये बनी भरोसे की अटूट पहचान, सूचना का सटीक स्रोत और भावनाओं की मजबूत डोर। यहीं से शुरू हुई आकाशवाणी की गौरवशाली यात्रा जो आज भी हर सुबह हर घर में गूंजती है।

लीजिए सुनिए कार्यक्रम संबंधी सूचना। नमस्कार, कोटा कार्यक्रम में मंगलवार दिनांक 12 मई को सुबह 7 बजे से 7:30 के मध्य आप सुनेंगे हमारी अतिथि विशेषज्ञ श्रीमती अभिलाषा जेनवियर्स के साथ भेंट वार्ता। विषय होगा नर्सिंग, एक सेवा कार्य। इस बातचीत में अतिथि विशेषज्ञ के साथ भेंट करेंगे राजेश महावर। तो अवश्य सुनेगा चंबल चैनल का सूचनाओं पर आधारित सुबह सवेरे का यह कार्यक्रम नमस्कार कोटा प्रातः 7 बजे से। और हम आपको एक बार फिर से बता दें, आज सुबह 11:10 पर हमारे दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा सोमनाथ अमृत पर्व के अवसर पर संबोधन का सीधा प्रसारण। लीजिए सुनिए देशगान

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: हमने अमृत को कभी चखा तो नहीं, उसकी अमर मिठास शायद ऐसी ही

जब भी सुनिए कुछ अच्छा सा सुनिए। ये है आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल।

अभी आप समूह स्वर में देशगान सुन रहे थे। एफएम 102.103.6 मेगाहर्ट्ज, मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है।

सुबह के 11:10 होने को हैं। कुछ ही क्षणों में आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा सोमनाथ अमृत पर्व के अवसर पर संबोधन का सीधा प्रसारण।

0: ये आकाशवाणी है। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ अमृत महोत्सव में सम्मिलित हो रहे हैं। इस समारोह का सजीव विवरण आपको सुनवा रहे हैं, विवरण दे रहे हैं नीलम मलकानिया और कौशिक राय। विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ हैं श्री आशुतोष शर्मा।
1: नमस्कार। आज गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में प्रभास पाटन में सोमनाथ अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की इस महोत्सव में गरिमामय उपस्थिति रहेगी। पुनर्निर्मित मंदिर के उद्घाटन की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ये महोत्सव मनाया जा रहा है। इस दौरान बहुत सी गतिविधियां होंगी। आयोजन का विवरण आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। मैं नीलम मलकानिया अपने साथी कॉमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ इस विशेष प्रसारण में आपका स्वागत करती हूं और साथ ही स्वागत कर रही हूं हमारे आज के विशेषज्ञ सनातन संस्कृति मर्मज्ञ और वेद विशेषज्ञ डॉक्टर आशुतोष शर्मा का भी। हम आपको बताएं कि आज के इस आयोजन के हिस्से के तौर पर एक विशेष रोड शो का आयोजन हो रहा है, विभिन्न सांस्कृतिक झांकियों का प्रदर्शन हो रहा है, पारंपरिक प्रस्तुतियों के माध्यम से प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है, स्थानीय कलाकार और सामाजिक संगठन भी इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, साथ ही संत समाज के लोग हैं, आध्यात्मिक जगत की जो हस्तियां हैं उनकी उपस्थिति इस विशेष आयोजन में बनी हुई है। मंदिर की भव्यता और दिव्यता आज कुछ अधिक ही है। ये सोमनाथ विरासत के 75 वर्षों का उत्सव है। प्रथम ज्योतिर्लिंग माना जाता है सोमनाथ को, द्वादश ज्योतिर्लिंग जो हैं उनमें, और कहा जाता है प्रभासम च परिक्रम में पृथ्वी क्रम संभवम, यानी दिव्य प्रभास की परिक्रमा पूरी पृथ्वी की परिक्रमा के समान होती है। हम आपको बताएं कि माननीय प्रधानमंत्री जी श्री सोमनाथ न्यास के अध्यक्ष भी हैं और उनके अपने उद्गार हैं कि सोमनाथ आशा का वो गीत है जो हमें सिखाता है कि सृजन की शक्ति विनाश से कहीं अधिक प्रबल होती है।
2: सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकारं ममलेश्वरम् परलयं वैद्यनाथं च दाक्षिण्यं भीमशंकरं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावले वाराणस्य तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घृष्मेशं च शिवाले एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायप्रातः पठेन्नरः सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणं विनश्यति। Namaskar and welcome to this very special broadcast to commemorate the 75th anniversary of the restoration of the most important Jyotirling temple at Somnath. The Honorable Prime Minister will be participating at the Somnath Amrit Mahotsav 2026, and Somnath is the amalgam of our ancient heritage, our culture, and our deep faith. As we mentioned, that Somnath is among the most important, the first of the 12 Jyotirlings. It is nestled next to the sea, and the main shikhar of the temple is 155 feet high. The temple is a seven-storied structure built in the Chalukya style, featuring a 10-ton kalash at its peak and a 37-foot flagpole. And today we shall also see the Kumbh Abhishek and the Dwajarohan by the Honorable Prime Minister, and the flypast by the Indian Air Force Surya Kiran aerobatic team. And this will be a sight to see. And we have with us Dr. Ashutosh Sharma. First of all, Dr. Sharma, can you explain to our listeners the importance of

0: of the Kumbha Abhishek.
1: नमस्कार, आप सभी को आज के इस विशेष महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं. जो अभिषेक आज हो रहा है इसका विशेष नाम कुंभाभिषेक है. वास्तविकता में वैसे तो हम भगवान शिव के अभिषेक को रुद्राभिषेक के नाम से जानते हैं, परंतु इस कुंभाभिषेक का महत्व इसलिए भी है क्योंकि जब विशेष पूजा की जाती है, विशेष अर्चना की जाती है, तो उसका एक विशेष नाम होता है, वह है कुंभ. कुंभ कहते हैं घड़े को. इसीलिए जहाँ विशेष तीर्थ होते हैं वहाँ पे सहस्रघट यानी कि हजार मटकों से, हजार घड़ों से जल को लाकर के, गंगा जल आदि, नर्मदा का जल आदि लाकर के जो पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है, स्नान कराया जाता है, उसे अभिषेक की संज्ञा दी गई है. वैसे तो स्नान आदि की प्रक्रिया सभी के लिए सामान्य रूप से होती है, चाहे किसी भी पिंड रूप में हो, और उसी पिंड के रूप में मनुष्य भी है एवं जितने भी चराचर जगत में प्राणी हैं सभी वो पिंड रूप हैं. लेकिन उस पिंड के अंदर जो बैठने वाला सूक्ष्म जगत शरीर है वह स्वयं शिव है. जो इस स्थूल से निकलने के बाद भी सूक्ष्म जो जाता है उसको हम पिंड रूप में ही मानते हैं, सूक्ष्म रूप से, और उसको मन के साथ संयोग किया गया है क्योंकि मननात रायते, जो मंत्र को लिया गया वो मन से है. इसीलिए आप देखेंगे सोमनाथ में सोम का अर्थ भी चंद्रमा है, और चंद्रमा को जब हम मानते हैं तो चंद्रमा मन का कारक है. इसलिए मन की प्राप्ति के लिए चंद्रमा जल का भी है, मन का भी है. और इसीलिए हम कहते हैं कि जल के द्वारा अपने मन को शुद्ध करो, अपनी वाणी को शुद्ध करो, और अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए अर्चना की जानी चाहिए.
2: जी आशुतोष जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जैसा कि हम बता रहे हैं और सुनते आए हैं कि जो सोमनाथ मंदिर है, ये जो ज्योतिर्लिंग है, इन्हें द्वादश ज्योतिर्लिंग में प्रथम स्थान प्राप्त है, तो हम इसका महत्व भी आज आपसे जानना चाहेंगे.
1: जो हमारे द्वादश ज्योतिर्लिंग है, लिंगों की जब हम बात करते हैं तो लिंग किसे कहते हैं, तो लिंग जो शब्द है संस्कृत धातु में लिगी गतो में अच प्रत्यय लग के बना है. इसका अर्थ होता है आकृति, चिन्ह, प्रतीक या लक्षण, अर्थात एक विशेष प्रभाव को बताने वाला जो लक्षण है उसे लिंग कहा गया. यदि हम देखें तो एक स्तुति मिलती है जिसमें कहा गया निराकार ओंकार मूलम तुरीयम. तो निराकार का अर्थ क्या है, दुनिया में जितनी भी आकृतियां निकली हैं, जितने भी चिन्ह उत्पन्न हुए हैं या जो भी हम दृश्यमान देखते हैं, वो चराचर जगत में प्रस्तुतिकरण उस लिंग के माध्यम से ही होता है. अब वो लिंग कई प्रकार के हैं, स्थूल लिंग हो सकता है, आत्मलिंग है, ज्योतिर्लिंग है. ज्योतिर्लिंग उसे कहते हैं जो स्वयंभू है, जो भगवान शिव की विशेष प्रभाव शक्ति के द्वारा उत्पन्न हुआ, चाहे वो जमीन से हुआ, चाहे वो अलग अलग प्रकार से हुआ. जैसे अगर हम साउथ इंडिया में देखें तो पंचभूतात्मक लिंगों का भी वर्णन मिलता है. तो ये प्रथम क्यों है, क्योंकि इसका विवरण शिव पुराण में कोटि रुद्र संहिता के अध्याय 13 और 14 में भी इसका वर्णन है, और स्कंद पुराण में प्रभास खंड में भी. यदि आप आज का नाम देखें तो आज का नाम तो यह नहीं है, यह जूनागढ़ रियासत का पहले था स्थान, बाद में वेरावल में विलय हो गया, लेकिन इसको जो आरंभिक नाम है प्राचीन काल से उसका नाम है प्रभास तीर्थ. यदि आप देखें तो भगवान कृष्ण ने भी अपना जो शरीर का त्याग किया है इसी क्षेत्र में किया है. अर्थात कि जब भगवान भी आते हैं तो अपने पंचभूतात्मक शरीर को छोड़ने के लिए, मुक्ति के रूप में अपने सूक्ष्म शरीर को ऊपर बढ़ाने के लिए शिव की कृपा चाहिए. इसीलिए यहाँ पे प्रथम रूप जो है, हमारा जन्म क्यों हुआ, ये पुनर्जन्म के चक्र में क्यों फंसे, क्योंकि हमारे मन के अंदर जो अलग अलग विकार हैं वो आ जाते हैं. और इसी की एक कथा हमें पुराणों में मिलती है चंद्रमा के रूप में, कि जब चंद्रमा अर्थात हमारा मन, जब 27 नक्षत्र अर्थात उसकी पत्नियां उसमें किसी जगह पर स्थिर हो गया, यानी कि हमारे जो चलायमान मन को सही रूप ना लग के एक जगह अटकाव में आ गया, तो उसमें कमी आ गई, हम समत्व भाव को प्राप्त नहीं कर पाए. इसीलिए शिव ने उसके दो भाग करे, पाप भाग को नीचे किया कि आप शुद्धिकरण करो. इसीलिए आप देखेंगे यहाँ पे सोमनाथ क्यों, क्योंकि चंद्रमा ने यहाँ पे अभिषेक किया है. चंद्रमा ने महामृत्युंजय आदि के द्वारा अपने पाप का विमोचन किया है, पाप को नष्ट किया है, अर्थात अपने मन को शुद्ध किया. तो ये चंद्रमा कौन है, चंद्रमा कोई व्यक्ति हो या ना हो, लेकिन हमारे अंतःकरण में बैठा हमारा मन जो चलायमान है, जो सत्व रूप है, जो हमें आगे बढ़ा सकता है, उसकी पूजा और उसको सही दृष्टिकोण से आगे बढ़ाना, ये चंद्रमा का उद्देश्य है. इसलिए सोमनाथ मंदिर का उद्देश्य है.
2: जी.
3: And
0: The Honorable Prime Minister offering prayers at the historic Somnath Tirth, which is the first of the Jyotirlings. And today, the 11th of May, marks the 75th year since the inauguration of the restored temple by the first President of India, Dr. Rajendra Prasad. The Honorable Prime Minister had at the beginning of this year had

0: gone to Somnath Temple for the Somnath Swabhiman Parv, and today we are marking the Somnath Amrit Mahotsav 2026. As the Prime Minister said recently in a newspaper article, the Honorable Prime Minister said that Somnath gives us a civilizational message. The vast sea before it evokes timelessness. The waves tell us that no matter how fierce the storms are or how turbulent the tides are, one can always rise again with dignity and strength. The waves return to the shore as though reminding every generation that the spirit of the people can never be subdued for long. And the Honorable Prime Minister is offering prayers at the सोमनाथ मंदिर.
1: मंदिर में विशेष पूजन अर्चन चल रहा है. मंगल ध्वनियां आप तक पहुंच रही हैं आकाशवाणी के माध्यम से. और हम आपको बताएं कि सोमनाथ मंदिर जो है वो अदम्य साहस और जिजीविषा का प्रतीक भी है, जैसा कि हम अक्सर सुनते आए हैं. कई बार विदेशी आक्रांताओं ने इसे लूटा तोड़ा, लेकिन हर बार जीर्णोद्धार हुआ, पुनरुद्धार किया गया इस मंदिर का, क्योंकि आस्था का प्रतीक है. चालुक्य या मारू गुर्ज स्थापत्य शैली में निर्मित लगभग 150 फीट ऊंचे शिखर वाला एक भव्य मंदिर है ये, जो एकता का प्रतीक भी है. अरब सागर के तट पर कपिला हिरण और सरस्वती के पावन त्रिवेणी संगम पर स्थित है. और ये एक ऐसा मंदिर है जिसमें सिर्फ भारतीय नागरिक नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु लगातार आते रहे हैं. और अंतरराष्ट्रीय महत्व इस मंदिर का है, हमारे इतिहास का हिस्सा है. हम कह सकते हैं कि ये हमारे इतिहास और भविष्य के बीच का एक ऐसा सूत्र है जो आध्यात्मिकता का लगातार संचार करता रहा है. राष्ट्रीय पुनर्जागरण का सबसे दृढ़ स्तंभ सोमनाथ को माना जाता है. सोमनाथ स्वाभिमान का प्रतीक है और इसीलिए सोमनाथ स्वाभिमान पर्व जो है वो भी बहुत चर्चा में रहा. उसने भी बहुत प्रेरित किया सभी को. और यहाँ पर आज मंदिर की जो सज्जा है वो विशेष है. पुष्प सज्जा की गई है. शिव भगवान से जुड़े हुए प्रतीक चिन्ह जो है वो स्थान स्थान पर दिखाई दे रहे हैं. डमरू की आकृति, नंदी जी की आकृति, त्रिशूल यहाँ पर पुष्पों से बनाए गए हैं. और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो विशेष पूजन अर्चन किया है जिसका वो हिस्सा बने हैं, ऐसा माना जाता है कि ये भी भगवान शिव से आशीर्वाद लेकर आध्यात्मिकता का संचार करके और राष्ट्र कल्याण की भावना के साथ किया गया है. हम आपको बताएं कि इस समय सोमनाथ मंदिर में अमृत महोत्सव चल रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी की इसमें गरिमामय उपस्थिति है. साथ ही जो अन्य कार्यक्रम होंगे उनमें एक विशेष आकर्षण रहेगा सूर्य किरण फॉर्मेशन जो अलग अलग ये बनाएंगे. वायुसेना की सूर्य किरण टुकड़ी है जो कई तरह के फॉर्मेशन बनाएगी और हवाई करतब दिखाते हुए यहाँ पर मंदिर में नमन करते हुए पुष्प वर्षा भी की जाएगी. 1951 में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ था, भव्य आयोजन था. उस समय 101 तोपों की सलामी दी गई थी मंदिर के प्रांगण में. और आज माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति पूरे आयोजन को और अधिक गरिमामय बना रही है.
0: Yes, you are absolutely right, Neelam. And as you mentioned, that our ancient scriptures say that a pradakshina of the divine Prabhasa, that is the Somnath, is equal to the pradakshina of the whole earth itself. While people come to Somnath to pray, they also experience the remarkable continuity of a civilization whose flame could never be extinguished. Empires rose and fell, tides changed, history moved through the conquests and upheavals, yet Somnath continues to endure in our consciousness. Today is also a time to remember the countless greats who stood firm in the face of tyranny.

0: విష్ణురా విష్ణు శ్రీమద భగవతో మహాపురుషస్య విష్ణు రాజ్ఞయా ప్రవర్త మానస్య అద్య బ్రహ్మణో.
1: डॉक्टर आशुतोष, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि कुछ समय बाद यहाँ पे ध्वजारोहण भी होगा, और जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि सोमनाथ मंदिर के ध्वज पे नंदी जी और त्रिशूल है, तो इसके बारे में हमारे श्रोताओं को थोड़ा बता दें.
2: इसके लिए हमें समझना होगा कि जो वास्तु शास्त्र के मूल ग्रंथ हैं, जैसे रूप मंडनम, प्रसाद मंडनम, तो प्रसाद का अर्थ ही महल या मंदिर है. उसमें ऐसा विवरण मिलता है कि जो पूरा मंदिर है, जहाँ से हम आरंभ मंदिर में एंट्री लेते हैं, वहाँ से और शिखर तक एक मनुष्य रूप आकृति की कल्पना की गई है, जिसमें आप देखेंगे मंडपम या अर्ध मंडपम या महामंडपम आदि जो क्षेत्र हैं, ये पेट और वक्षस्थल के आदि भाग हो जाते हैं. अब क्योंकि हमारा पूरा शरीर का जो मूल ब्रह्म रूप है, ये गर्दन से ऊपर मस्तक भाग होता है, इसीलिए यहाँ पर जो व्यवस्था है, ये किसी भी पिंड को रखने की या भगवान को रखने की कल्पना है, क्योंकि हमारे मस्तक पे जो तृतीय नेत्र हम मान के चलते हैं या दृष्टि रूप जो मान के चलते हैं, दृष्टि से भगवान का दर्शन होता है रूप क्षेत्र में, तो इसीलिए हमारा मस्तक जो है वो शिखर के रूप में है, और उसके अंदर जो उठने वाली दृष्टि रूप है, जिसे हम तीसरा नेत्र भी कह सकते हैं या मन की आंख भी कह सकते हैं, उसका दर्शन हम कैसे करें कि भगवान हमारे पास है, उसके लिए जैसे हम मन के अंदर आंखें बंद करके विचार करते हैं, इसी प्रकार से दृष्टि रूप से हम बाह्य रूप में शिखर और उसके ऊपर बैठा हुआ जो कलश स्थापना होती है और उसके साथ जो ध्वजारोहण होता है, ये बताता है कि यहाँ पर भगवान का जागृत वास है, ये उसका प्रमाण हो जाता है. और आप देखेंगे भगवान शिव के जो मंदिर है, उसमें विशेष रूप से जहां भी कोई मंदिर होगा वहां त्रिशूल विशेष होगा. त्रिशूल की आवश्यकता क्यों है? त्रिशूल कोई हथियार नहीं है जो हम कई बार सामान्य रूप से देखते हैं, ये बताता है समाधि रूप में जब हम चलते हैं तो हमारे तीन प्रकार से विचार चलेंगे, शरीर चलेगा, मन चलेगा, चित्त चलेगा, आत्मा का संयोग उसमें बनेगा. वो तीन रूप क्या है? सत्व, रज और तम. इसे अहंकार की संज्ञा दी गई है. ये तीन प्रकार के अहंकार हैं, इसी में तमोगुण प्रधान तत्व से हमारे शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, और उसी से उत्पन्न आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी उत्पन्न हुए, और उसी के जो रजोगुण और जो सतोगुण रूप से हमारे जो ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया और मन की उत्पत्ति हुई है. अतः हम ये देख सकते हैं कि यदि हमारे शरीर में पंचभूतात्मक जो हमने पिंड लिया, और इस पिंड के हटने के बाद भी जो सूक्ष्म जगत में शरीर में जाएगा, जो पुनर्जन्म का कारण बनेगा, उसका मूल प्रभाव का जो हम ये कारण यदि समझ सकें, तो हम समझेंगे कि यह सत्व, रज और तम ही है. इनका तीनों का आपसी संयोग और व्यवस्थितीकरण ये त्रिशूल बताता है. इसीलिए इसमें जो मध्य क्षेत्र आप देखोगे उठा हुआ है, उसे रजोगुण की संज्ञा दी गई है. रज वो जो गति दे, आगे बढ़ाए, मूवमेंट दे.

0: लिए उसके संयोग से दोनों गुणों का जब साम्यावस्था हो जाती है तो व्यक्ति मुक्त हो जाता है, इसलिए मुक्तिनाथ क्षेत्रों में हमेशा शिवार्चन होता है।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। हम अपने श्रोताओं को बताएं कि इस समय वैदिक मंत्रोच्चार और पूरे विधि विधान के साथ मंदिर में पूजन अर्चन जो है वो चल रहा है, मंगल ध्वनिया है चारों ओर, सोमनाथ अमृत महोत्सव ये है और इस पावन पर्व की याद में समृद्ध विरासत और आध्यात्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए प्रतीक के रूप में कार्यक्रम में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया जाएगा और एक सिक्का भी जारी किया जाएगा। अलग अलग क्षेत्र की विशिष्ट हस्तियों की कार्यक्रम में उपस्थिति है, अनेक माध्यमों से वो इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं और ये भी संयोग ही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि जनवरी माह में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के बाद ये दूसरा अवसर है जब प्रधानमंत्री जी सोमनाथ जी के दरबार में राष्ट्र निर्माण की प्रतिबद्धता के साथ पहुंचे हैं, उपस्थित हैं और यहाँ सोमनाथ अमृत महोत्सव का हिस्सा बन रहे हैं। पूजन अर्चन के बाद आम श्रद्धालु भी दर्शन कर पा रहे हैं मंदिर में और वायु सेना के जो यान है वो सूर्य किरण टुकड़ी जो है जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत सारे देशों के विभिन्न कार्यक्रम जो होते हैं उसमें भाग लेती रही है, वो अलग अलग फॉर्मेशन बनाते हुए कार्यक्रम में और अपनी ओर से भाग लेगी और इसकी रोचकता को और बढ़ाएगी। जो एक्रोबेटिक यान होते हैं इन्हें देखना भी बहुत आकर्षण का एक हिस्सा रहता है और उत्सुकता इनकी लगातार बनी रहती है माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति सोमनाथ अमृत महोत्सव में।
2: यस एंड एज वी मार्क द 75 इयर्स ऑफ द कंसेक्रेशन ऑफ द रीबिल्ट सोमनाथ टेंपल बाय द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर टुडे एज माय कॉलीग नीलम मेंशन विल रिलीज अ स्पेशल कमेमोरेटिव पोस्टल स्टैंप एंड अ कॉइन ऑफ रुपीज 75 डिनोमिनेशन। As we were speaking earlier, today is also a time to remember the countless greats who stood firm in the face of tyranny. They were Lakulisha and Soma Sarman, who transformed Prabhasa into a great center of philosophy, Chakravarti Maharaj Dharmasena IV of the Vallabha built the second temple 3 centuries ago. Bhima Deva, Jayapal and Anandapal will always be remembered for defending civilizational honor against invasions. It is said that Raja Bhoj too helped with the construction. Karna Dev and Siddharaja Jayasimha played a pivotal role in restoring Gujarat's political and cultural strength. Bhava, Brihaspati, Kumarapal, Solanki and Pashupal Acharyas rebuilt and sustained the shrine as a great center of worship and learning. Vishaladev Vaghela and Tripurankara protected its intellectual and spiritual traditions. In the 1940s, when the spirit of freedom swept across India and the foundations of a new republic were being laid under the leadership of towering figures like Sardar Patel, one thing continued to trouble Sardar Patel deeply: the condition of the Somnath temple. On the 13th of November 1947, during Diwali, he stood next to the dilapidated ruins of the temple with seawater in his hands and said, "On this auspicious day of the Gujarati New Year, we have decided that Somnath should be reconstructed." He asked the people of Saurashtra to do their best. This was a holy task in which all should participate. And on his clarion call, it was not only the people of Gujarat, but also the people of entire India that responded enthusiastically.
1: और इसीलिए हम कहते हैं कि इतिहास का एक सूत्र थामे है, सोमनाथ मंदिर हमारे समृद्ध विरासत का प्रतीक है। आयोजन का विवरण हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, आइए आपको सुनवा रहे हैं एक भजन।

0: महोत्सव में सोमनाथ अमृत महोत्सव।
1: सोमनाथ अमृत महोत्सव आयोजन किया जा रहा है। सोमनाथ मंदिर में माननीय प्रधानमंत्री जी की विशेष उपस्थिति। इस कार्यक्रम में संत समाज के लोग हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूजन अर्चन किया विधि विधान के साथ, और साथ ही आज के आयोजन में विभिन्न कार्यक्रम होंगे। अभी आप शिव स्तुति सुन रहे थे, आइए आपको सुनवाते हैं एक और भजन।

चलम प्रवाह भावितस्कले कले पलम बलम विताम्बुजम गतुंग मालिका डमक डमक डमक बिना डमर वय चकार चंड

ಮಾಲಿಕಾ ಟಮಕ್ ಟಮಕ್ ಟಮಕ್ ಬಿನಾ ಟಮರ್ವಯ ಚಕಾರ.

0: सोमनाथ अमृत महोत्सव चल रहा है इस समय, सोमनाथ मंदिर में इसका आयोजन किया जा रहा है। और आशुतोष जी, इस दौरान हम देख रहे हैं कि मंदिर में जो विशेष पुष्प सज्जा की गई है, इसमें स्थान स्थान पर हम ओम की आकृति देख रहे हैं, तो इसका महत्व हम आपसे पूछेंगे, लेकिन हम आपको ये भी
1: एंड यस नीलम द टाइम फॉर द सूर्य किरण्स द एरोबैटिक टीम द सूर्य किरण एरोबैटिक टीम SKAT the red and white Hawk MK-32 aircraft of the Indian Air Force led by Group Captain Ajay Dasharathi performing this wonderful aviation adventure atop the skies of the Somnath Temple, adding glitter and color. What a sight indeed, and a wonderful performance by the Indian Air Force's Surya Kiran aerobatic team. And we also saw the petals being dropped from the helicopters of the Indian Air Force, and now we can listen to the chants of Har Har Mahadev as the dwajarohan is going on.
0: जी बिल्कुल, और हम जैसा कि कह रहे थे कि स्थान स्थान पर ओम की आकृति देख रहे हैं, भगवान शिव से जोड़ा जाता है, तो हम ओम उच्चारण के विषय में आपसे जानना चाहेंगे।
2: जब हम भगवान शिव की आरती करते हैं तो दो विशेष शब्द आते हैं, इसमें बोला एकानंद चतुरानंद पंचानन राजे, तो एकानंद भगवान विष्णु, चतुरानंद भगवान ब्रह्मा और पंचानंद भगवान शिव, अर्थात पंच महाभूतों के जो स्वामी हैं वो भगवान शिव हैं। और उसी में फिर दूसरा अक्षर आता है प्रणव अक्षर के मध्य, ये तीनों एका, अर्थात इन तीनों का जो मूल स्वरूप है ब्रह्मा विष्णु और महेश, उस प्रणव में आ जाता है। उस प्रणव के तीन अक्षर क्या है, अ उ और म। तो अगर हम देखेंगे तो अ की जब हम ध्वनि करते हैं तो नाद ब्रह्म से आता है, पेट के पास से आता है, वहीं ऊ की अगर हम एक वाइब्रेशन देखें तो हमें वक्षस्थल से, छाती के पास से, सीने के पास से ये आती है। और यदि हम म अक्षर को देखें तो मुख में गले के कंठ से जब हम अवरोध करते हैं व्यंजन रूप में, तो अल्व उसमें होकर के पूर्ण शब्द ना होकर हलंत लग के वो म बंद हो जाता है। तो आप देखिए कि ऊर्ध्व गति, हमारे प्राण जो ऊपर की ओर उठने वाले हैं, उन प्राण शक्ति का जो द्योतक है वो भगवान शिव हैं। और
1: ध्वजारोहण,
2: अब ध्वजारोहण भी आप देखेंगे हमेशा नीचे से ऊपर की ओर उठती हुई मानी गई है
0: जी।
2: अर्थात कि ये एक प्रकार से प्रकृति के तत्व को बताती है। इसलिए यदि हम देखें भगवान शिव की जो अर्चना कहते हैं तो इसमें वेदों में वर्णन मिलता है सवन, ये एक प्रात सवन, मध्य सवन और सायं सवन, तीन सवन के रूप में बताया गया कि प्रातकालीन जब समय होता है सूर्योदय का, उस समय भगवान शिव का पूजन किया जाना चाहिए। मध्य दिवस जब सर के ऊपर सूर्य हो तब किया जाना चाहिए, और सायंकाल जब सूर्यास्त का समय हो तब शिव का पूजन किया जाना चाहिए। लेकिन यदि हम सभी समय पर ना भी कर पाए तो विशेष समय जो भगवान शिव के पूजन का है उसे कहते हैं प्रदोष काल। प्रदोष काल अर्थात संध्या का समय जो सूर्यास्त का होता है, उस समय हम पूजन करें भगवान शिव का तो बहुत उत्तम है, क्योंकि वह तमोगुणी प्रधान तत्व है। तमोगुण अर्थात हम शाम को देखेंगे तो हम थक जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, एक गहन डूब जाते हैं, हमें निद्रा के बाद नहीं पता हम किस लोक में रहते हैं, किस अवस्था में रहते हैं, तो वहां हमारी सुरक्षा कौन कर रहा है उस अंधकार में। हम किस प्रकार से अपने प्राणों को भूल कर भी जिस पे आश्रित हो सके पंचभूतात्मक रूप से, वो भगवान शिव हैं। इसीलिए शाम को जब सोते समय सदैव ओम नमः शिवाय का जाप वेदों में बोला गया, पुराणों में बोला गया, और जब उठते हैं तो ओम नमो नारायणाय का जाप हमें बोला गया है
0: जी। तो यानी हम अपने दिन की शुरुआत भी प्रभु का नाम स्मरण करके कर सकते हैं, और संध्या काल में भी जब सही समय है उस वक्त हम भगवान शिव का पूजन अर्चन कर सकते हैं। और हम आपको बताएं श्रोताओं कि सोमनाथ अमृत महोत्सव के इस अवसर पर भारतीय वायु सेना के जो यान है, विशेष सूर्य किरण एक्रोबेटिक टीम है, उसने अद्भुत प्रदर्शन किया है, और विभिन्न आकृतियां जो हैं वो इन यानों ने अद्भुत संयोजन दिखाते हुए बनाई है। स्क्वाड्रन लीडर अमन गोयल ने नेतृत्व करते हुए यहाँ पर इन यानों ने जो मंदिर है, हम कहते हैं कि ऐतिहासिक महत्व वाला ये मंदिर है और साथ ही आध्यात्मिक

0: चेतना का प्रतीक है, हमारी समृद्ध विरासत का प्रतीक है सोमनाथ मंदिर। उस पर जो सोमनाथ अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, इस अवसर को विशेष बना दिया है। पुष्प वर्षा मंदिर पर की गई, साथ ही विभिन्न आकृतियां बनाई गई और जो हवाई करतब दिखाए गए उसे देखकर यहां उपस्थित जन जो है वो पूरी तरह से उत्सुक रहे और साथ ही जोश भी भर दिया है। और यही आज का भारत है जिसका बार बार उल्लेख किया जाता है कि हम तकनीकी रूप से भी समृद्ध हैं, लेकिन साथ ही जो आध्यात्मिक चेतना है हमारी, जो विरासत है, उसे लेकर भी हम आगे बढ़ेंगे। और इसीलिए जो लक्ष्य है हमारा 2047 में, वो लक्ष्य जो है उसके लिए बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी हमें प्रेरित करते हैं और हर भारतीय अपनी ओर से पूरे सजग रूप से उस ओर बढ़ना चाहता है, विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अपनी विरासत को संजोए रखते हुए। माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति सोमनाथ अमृत महोत्सव में।
1: यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। एंड इंसिडेंटली नीलम, टुडे इज

0: पूरे सजग रूप से उस ओर बढ़ना चाहता है, विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अपनी विरासत को संजोए रखते हुए। माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति सोमनाथ अमृत महोत्सव में।
1: Yes, you are absolutely right. And incidentally, Neelam, today is the very day that the first president of India, Dr. Rajendra Prasad, had inaugurated the reconstructed Somnath Temple on the 11th of May 1951. And Dr. Rajendra Prasad had on that occasion said that the Somnath Temple proclaims to the world that anything with unparalleled faith and love can not be destroyed. He expressed the hope that the temple will live in the hearts of the people. He also said that the restoration of the temple was a fulfillment of Sardar Patel's dream. But taking that spirit forward, it is important that we restore prosperity to the lives of the people. These are important and inspiring messages that the first president of India gave. This is the path that the government of India has been following for over a decade. And as you mentioned, that the resolve of Viksit Bharat by 2047 is indeed something that which every Indian is working towards under the guidance of the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. And he has many times proclaimed the principle Vikas Bhi Virasat Bhi, from Somnath to Kashi, from Kamakhya to Kedarnath, from Ayodhya to Ujjain, from Trimbakeshwar to Sri Sailam. The government of India's team has had the opportunity to equip our spiritual centers with the latest facilities while at the same time preserving their traditional character. And this is very important, and this has boosted the local economy, it has secured livelihoods and deepened the spirit of Ek Bharat Shreshth Bharat.
0: जी, और आध्यात्मिक चेतना के प्रतीक जो हमारे धार्मिक स्थल हैं, अगर हम देखें तो इनका पर्यटन में भी बहुत बड़ा योगदान होता है, और पर्यटन जो है वो देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण एक भूमिका निभाता है। जो धार्मिक स्थल हैं, इनका माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारे विशेष धार्मिक स्थल हैं, उनके आसपास का जो क्षेत्र है उसको भी विशेष रूप से विकसित किया गया है, ताकि जितने भी धार्मिक जो पर्यटक आते हैं, और अगर वो विदेशी हैं तो उन्हें भी विश्व स्तरीय सुविधाएं मिल सके, उन्हें तकनीक मिल सके। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व से विभिन्न गलियारे जो हैं इस तरह से विकसित किए गए हैं कि पार्किंग की सुविधाएं वहां रहे, पेयजल की सुविधा रहें, और हमारे जो मंदिर हैं उनके नियमों का पालन होते हुए भी जो पर्यटक हैं, जो दर्शक हैं, जो श्रद्धालु गण हैं, वो अपने समय को यादगार बनाते हुए उस समय को एंजॉय कर पाएं, वो तस्वीरें ले सकें। अलग अलग जगह पर अब सेल्फी पॉइंट्स भी बनाए जाते हैं, ताकि घर पर मधुर स्मृतियां ये दिखाई जा सकें। जब दर्शन करने आते हैं श्रद्धालु जन अपने पूरे परिवार को लेकर, तो ऐसे में अगर दिव्यांग जन हैं उस परिवार में, या फिर छोटे बच्चे हैं, तो उनके लिए भी विशेष रूप की सुविधाएं अब हमारे बड़े मंदिरों के आसपास मिलती हैं। ठहरने की जो व्यवस्था है वो पहले से ज्यादा अच्छी की गई है, बेहतर की गई है, और ये भी ध्यान रखा गया है कि जो हमारे विशेष ज्योतिर्लिंग है उनकी जो मान्यता है, उन मान्यताओं से जुड़े जो प्रतीक चिन्ह है, अब वो भी सोवनियर के रूप में मिल सकें। और साथ ही इस तरह की वेबसाइट भी अब राज्य सरकार जो है वो संचालित करती है, और इंटरनेट के माध्यम से भी हमें विशेष रूप से ये जानकारी मिल सकती है कि हम जो हमारे धार्मिक स्थल हैं उन तक कैसे पहुंचेंगे, कहां से हम बुकिंग करवा सकते हैं, और जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने वाले जो पर्यटक होते हैं उनके लिए अलग अलग भाषाओं में भी ये सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। यानी आध्यात्मिक चेतना का जो प्रसार करने का एक संकल्प है, उसके साथ साथ तकनीक को शामिल किया गया है, और डिजिटल भारत जो है, डिजिटल होती दुनिया ये हमारी है, उसमें भारत विशेष रूप से एक भूमिका निभाता है। और सूर्य किरण टुकड़ी ने बहुत अच्छे प्रतीक चिन्ह बनाए मंदिर में। इस अमृत महोत्सव का विवरण हम जारी रखेंगे, लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि हमारे आसपास दुनिया में क्या हो रहा है। तो आपको सुनवा रहे हैं अभी समाचार।
2: जीत लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: समाचारों के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है इस विशेष प्रसारण में। सोमनाथ अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। सोमनाथ मंदिर प्रांगण में इस समय भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमा में उपस्थिति इस कार्यक्रम में है और इस पूरे आयोजन के हिस्से के तौर पर अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिनमें कलश यात्रा शामिल है, भजन संध्या है, ओमकार मंत्र का जाप है, सोमनाथ पुस्तिका में मंत्र लेखन से लेकर सोमनाथ से जुड़ी कथाओं का वाचन तक है। और ये 8 तारीख से शुरू हुआ कार्यक्रम आज 11 मई अब ये कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं उपस्थित हैं। प्रधानमंत्री जी ने विधि विधान के साथ मंदिर में पूजन अर्चन किया है, साथ ही जो कलश है उसके माध्यम से जलाभिषेक किया गया है, कुंभाभिषेक उसे नाम दिया गया। जो पताका है वो मंदिर को अर्पित की गई है, ध्वजारोहण कहा गया है और वायुसेना की जो सूर्य किरण टुकड़ी है उसने एक्रोबेटिक करते हुए उसके जो यान है अलग अलग आकृतियां बनाई हैं, पुष्प वर्षा मंदिर पर की है। माननीय प्रधानमंत्री जी विशेष प्रतीक चिन्ह जो हैं उनको देखते हुए एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जो सोमनाथ से जुड़े हुए विभिन्न प्रसंग हैं उनको दर्शाया जा रहा है। और एक बात हमारे श्रोताओं के मन में आ रही होगी, अक्सर जब हम भगवान शिव का ध्यान करते हैं तो उपवास को उनके साथ जोड़ा जाता है विभिन्न अवसरों पर। हमारे साथ डॉक्टर आशुतोष हैं, हमारे विशेषज्ञ। आइए डॉक्टर आशुतोष से हम जानते हैं कि उपवास का महत्व क्या होता है, कैसे करना चाहिए।
1: वैसे तो केवल शिव जी की जो हम पूजा करते हैं उसी में किसी भी प्रकार की पूजा में, चाहे वैष्णव रीति हो, शैव रीति हो या शाक्त रीति हो, उपवास का महत्व होता ही है। लेकिन अब हम उपवास को लेते हैं तो उपवास का एक विशेष महत्व है। क्या है कि उप यानी समीप और वास यानी रहना, अर्थात हम ईश्वर के समीप रहें। ईश्वर के समीप रहने का अर्थ क्या है कि बाह्य दुनिया को छोड़ के आंतरिक दुनिया में खो जाएं, अर्थात आध्यात्मिक चक्र में खो जाएं। तो जब हम ज्ञान ध्यान की मुद्रा में रहते हैं तो ना हमें भूख प्यास का महत्व होता है, ना शरीर की गतिविधियों का विशेष महत्व होता है। तो स्वतः ना उस समय भूख लगती है ना प्यास लगती है, हम भगवान में खो चुके होते हैं, लिंक हो जाते हैं। तो हम उस प्रक्रिया को लेके चल रहे हैं उपवास। एक दूसरा तत्व आता है व्रत। व्रत का अर्थ क्या है कि हमें कार्य को करते रहना है लेकिन भगवान के निमित्त हमें अपने आप को साधना है। वो शरीर को साधने के चक्र की बात है। उसमें क्या है कि वेदों में वर्णन है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि यदि व्रत करते हैं और भूख लग जाए तो, क्योंकि हम पूजा कर रहे हैं, घंटों घंटों बैठे हैं पूजा में, 5 घंटे 4 घंटे, तो क्या होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि शरीर के चक्र की एक्टिविटी ना चले, जठरग्नि प्रबल ना हो। तो उसमें क्या बोला कि ब्राह्मण आदि जैसे हैं तो कोई दूध पी ले, क्षत्रिय है तो जरा सा जौ का दलिया खा ले, या वैश्य है तो आमिक्स या पनीर या श्रीखंड खा ले। अर्थात कहने का तत्व है कि हमें भोजन पे प्रयोग नहीं करना है और ना ही शरीर के ऊपर इतना आदि हो जाना कि हमें पूजा में मन ना लगे। तो ये व्रत की प्रक्रिया है, एक उपवास की प्रक्रिया है। अब उपवास की प्रक्रिया का मतलब आध्यात्मिक प्रक्रिया है साक्षात, ये हम लेके चले
0: जी। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि हम द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन को बहुत ही पुण्यकारी मानते हैं, तो जब कभी हम किसी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके घर वापस आते हैं तब आचार व्यवहार कैसा होना चाहिए हमारा?
1: सबसे पहले तो आप एक शब्द सुनेंगे कि ज्योतिर्लिंग
0: जी,
1: तो लिंग का हम यदि समझें तो आप एक बात ऐसे समझ सकते हैं सामान्य क्रम से कि यदि मैंने बोला मेरे शरीर का हाथ मेरा अंग है, तो ये हाथ किसका अंग है, जिसका वो अंगी होगा, यानी कि एक मूल एक आकृति होगी जिसका एक भाग उसका अंग कहलाएगा। तो यदि मैं शिवलिंग को लिंग बोल रहा हूं तो प्रमुख रूप से है कि शिवलिंग है
0: जी।
1: तो यदि मैं आप देखूं कि यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो वो कहते हैं शिव से वो शव हो गया, तो निकला कौन, वो लिंग के रूप में जो स्थापना में जाना एक सूक्ष्म शरीर जिसे हम कहते हैं आत्मा, वो निकला। और इसीलिए हम शरीर में देखेंगे 11 प्रकार की वायु है जिसको रुद्र बोला गया, जैसे प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, नाग, कूर्म, क्रक्कल, देवदत्त, धनंजय, और 11वीं वायु है जीवात्मा। जब ये एक साथ निकलते हैं तो सगे संबंधी रुदन करते हैं, उसी को बोला गया रुद्र। ये रुद्र है, ये 11 वायु हैं। इसी प्रकार से जब हम किसी भगवान को भोग लगाते हैं तो हम मंत्र बोलते हैं ओम नाभ्या आसीद अंतरिक्ष नाभि, अर्थात हमारे शरीर का नाभि क्षेत्र, और उसी में अंतरिक्ष बोला, यानी कि उसी को अंतरिक्ष की संज्ञा दी गई, और उसके अंदर उस नाभि से अंतरिक्ष में हम 3 लोकों की कल्पना करते हैं, पृथ्वी लोक जिसे भूलोक कहा, अंतरिक्ष लोक जिसे भुवा लोक कहा, और सूर्य लोक जिसे स्वलोक कहा। तो इन 3 चक्रों में जब हम बात करते हैं पंच प्राणों के बारे में, प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान, ये 3 प्रकार, जैसे एक व्यक्ति मनुष्य भोजन मुख से करता है, दृष्टि रूप से भगवान

0: किस रूप से लेते हैं? दृष्टि रूप से और वायु मार्ग से ग्रहण करते हैं। इसीलिए जब भगवान को भोग लगा दिया जाता है तो फिर बाद में वो भोजन नहीं रह के प्रसाद बन जाता है। तो प्रसाद की संज्ञा क्यों? क्योंकि भगवान ने उसका आंखों से, नेत्रों से, अपनी दृष्टि से और अपने वायु मार्ग से ग्रहण करके उसका स्पर्श कर लिया है, उस तेजोमय रूप को उसको आकार दे दिया। तो लिंग का अभिप्राय क्या है? उस शिव यानी वो आत्म रूप में जो लिंग रूप है, जो हमें अपने मूल व्यवस्था को बताता है। हम यदि अपनी एक चक्र की व्यवस्था समझे तो हम देखेंगे चार प्रकार के जीव उत्पन्न होते हैं। जरायुज जो गर्भ से पैदा होते हैं, अंडज जो अंडे से पैदा होते हैं, सुइदज जो दुर्गंध पसीना आदि से पैदा होते हैं, और चौथा उद्भिज जो पेड़ पौधे जो जड़ों से पैदा होते हैं। इन चार प्रकार की सृष्टि हम देखेंगे किसी भी ब्रह्मांडीय प्रकृति में पैदा हो सकते हैं।
1: जी, तो आपने प्रसाद का जिक्र किया बीच में, यानी जब भी हम किसी पावन भूमि का दर्शन करके आते हैं घर पर तो प्रसाद जरूर साथ लेकर आए और वो घर परिवार में वितरित किया जाए।
0: बिल्कुल। अब यहाँ पर क्योंकि शिवजी को जब पूजन किया जाता है तो एक विशेष प्रावधान है कि प्रसाद लाएं या ना लाएं, क्योंकि ये भी बोला कि शिव पे चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण कर लिया तो कुत्ते की योनि मिलती है, ऐसा वर्णन भी मिल गया शास्त्रों में। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि उसको प्रत्यक्ष नहीं लेना है। लोग कहते हैं जो शिव पर जल चढ़ा उसको ग्रहण करना चाहिए, तो बोला कि क्योंकि भगवान शिव ने चंडमुंड आदि को अधिकार दिया कि मेरा सर्वप्रथम जो भी मुझे ग्राह्य होगा वो सबसे पहले तुम्हें मिलेगा, जो तुम छोड़ दोगे वन्य को मिलेगा। तो क्या बोला, इसीलिए क्या होता है कि जो आप देखो नालिका जहां से भी सामग्री वहां से निकलती है भगवान शिव की, उसको लांगना नहीं चाहिए, नहीं तो सारा पुण्य नष्ट हो जाता है। तो क्या बोला कि वो गर्भगृह में होती है, चंडमुंड का स्थान बना दिया जाता है किसी भी गर्भगृह में जहां पर भी शिवालय हो। तो जब उसके बाह्य रूप से आते हैं तो हम परिक्रमा कर सकते हैं लेकिन उसको उल्लंघना नहीं है। इसीलिए भगवान शिव की अर्ध परिक्रमा करने का विधान है, पूर्ण परिक्रमा करने का विधान ही नहीं है।
1: जी,
0: और वहां पर उसके बाद जो बाहर सामग्री निकल गई उसको आप भोज्य रूप में, प्रसाद रूप में बिल्कुल ग्रहण कर सकते हैं।
1: जी, एक और प्रश्न है, अक्सर ये कहा जाता है कि घर का जो मंदिर होता है भले ही वो छोटा मंदिर हो लेकिन शिवलिंग वहां नहीं रखना चाहिए, लेकिन कई लोग होते हैं वो घर में शिवलिंग की स्थापना करते हैं।
0: तो बिल्कुल, ये बहुत ही मत मतांतर वाला विषय है, लेकिन वास्तविकता ये तब आती है जब हम ग्रहण को ना ले उस अर्थ को जो कि वेदों में या शास्त्रों में लिखा है। शास्त्र में बिल्कुल शिवलिंग रखने का महत्व बताया है, लेकिन किस प्रकार का शिवलिंग? यदि आप शिवलिंग की आकृति हमारा जो अंगूठा है उससे बड़ा रखते हो तब दोष लगता है।
1: जी,
0: स्फटिक का शिवलिंग रख सकते हैं, मिट्टी के शिवलिंग की पूजा करके उसका विसर्जन कर सकते हैं, या जो नर्मदा में जो भी हमें शिवलिंग मिले जिसे हम नर्मदेश्वर कहते हैं उसको यदि हम छोटी मुद्रा में लेके आए उसका अर्चन करें तो हो सकता है, लेकिन स्वयंभू शिवलिंग, जागृत शिवलिंग या प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग को घर में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि पंच भौतिक तत्व में उसकी ऊर्जा आपको वहां पे क्षेत्रीय रूप से आवरण करेगी। ऐसे में आपकी सामान्य ऊर्जा, क्योंकि दैनिक ऊर्जा हमारे जीवन की अलग होती है और विशेष ऊर्जा अलग होती है, ऐसे में दो ऊर्जाओं का यदि सामान्य सकारात्मक प्रयोग हो जाए तो बहुत उत्तम हो जाता है, लेकिन यदि वो दोनों आपस में विक्षेप कर दें तो कई बार अर्थ के अनर्थ भी हो जाते हैं।
1: जी, यहाँ मैं ये भी जानना चाहूंगी, कई बार अलग अलग क्षेत्रों में ऐसे मंदिर होते हैं जिनकी बहुत मान्यता होती है, शिव जी के मंदिर है, लेकिन ऐसे में ज्योतिर्लिंग दर्शन का विशेष महत्व है, तो अगर बहुत बड़ा कोई मंदिर है और ज्योतिर्लिंग मंदिर है दोनों में अंतर क्या है?
0: मंदिर क्या है कि एक तंत्रोक्त भाग से इस स्थापना तत्व को लेकर चलता है जिसमें हम कहेंगे कि प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है।
1: जी,
0: आप देखेंगे जब भी किसी मंदिर में स्थापना होती है तो कई दिन का प्रोसीजर चलता है, कहीं 5 दिन, कहीं 11 दिन, कहीं 10 दिन, कहीं 15 दिन, कहीं 1 महीना, वो जलाधिशयन, अन्नाधिशयन आदि की प्रक्रियाएं होती है। जैसा हमने जब राम जी की मंदिर की प्रतिष्ठा हुई तो उसमें भी बहुत सारे विधान हमने देखने को मिले।
1: जी,
0: अब जब शिवलिंग की स्थापना होती है तो उसके लिए जो स्थापना करने वाला उसका विचार आवरण भी शिव जैसा होना चाहिए, पहले तो ये प्रधानता आ जाती है। आज के समय में उस प्रकार के शुद्धि और क्रियाएं सबकी नहीं रही, इसलिए अघोर रूप में अघोरी आदि शिवलिंग की स्थापना करते हैं। प्राचीन समय में आप देखोगे मार्कंडेय ऋषि आदि ने हजारों लाखों शिवलिंग की स्थापना की, तो स्थापना करने का अपना एक महत्व है। बोला जाता है कि जो शिव की स्थापना करता है वो स्वयं शिव के समान हो जाता है, ये बोला। फिर यदि हम ज्योतिर्लिंग की बात करें तो यहाँ एक शब्द आता है कि ये किसी ने स्थापना नहीं की गई, ये स्वयंभू है, यानी कि प्रकृति में विशेष ऊर्जा को लेकर के प्रकृति ने स्वयं उसको उत्पन्न किया, या भगवान की विशेष शक्ति के द्वारा वो उत्पन्न हुए। यदि इस तत्व को देखें तो ये प्राण प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयंभू ऑटोमेटिकली प्राण प्रतिष्ठित उत्पन्न ही हुए हैं। ये विशेष महत्व हो जाता है कि एक मैन मेड है। हम जब कोई कार्य करते हैं तो हम अल्प रूप से करते हैं, और जब भगवान कोई कार्य करते हैं तो पूर्ण रूप से करते हैं। इसीलिए भगवान को पूर्ण मधा पूर्ण मदम पूर्णात पूर्ण मदचते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ये तत्व

0: की संज्ञा दी गई है। और ये किस प्रकार से है, जैसे समुद्र में से एक लोटा जल निकालो तो वो अपूर्ण नहीं माना जाएगा, है वो उसी का अंग, लेकिन समुद्र भी अपने आप में पूर्ण है और वो लोटे में भरा हुआ जल भी अपने आप में पूर्ण है। इस प्रकार से पूर्ण को निकालो तो पूर्ण ही बचेगा, इस प्रकार के विधान से भगवान शिव को ज्योतिर्मय रूप से यहाँ पे अभिषेक किया जाता है और दर्शन किया जाता है।
1: जी, कई बार हमने ये भी देखा है जब ज्योतिर्लिंग पर या फिर शिव मंदिर में अलग अलग उपादानों पर जलाभिषेक किया जाता है तो उसमें कुछ सामग्री डाली जाती है, थोड़े अक्षत होते हैं, पुष्प होते हैं और दुग्धाभिषेक भी करते हैं कई लोग, तो मैं इनका महत्व आपसे जानना चाहूंगी।
0: देखिए, लोग कहते हैं कि भगवान शिव को जल चढ़ाना चाहिए।
1: जी,
0: जिनके मस्तक पर ही जल हो उसको जल की क्या आवश्यकता। आप ये भी तो देखें, तो यहाँ जल चढ़ाने का मूल महत्व नहीं है, यहाँ अर्घ देने का मूल महत्व है और इसीलिए अर्घ रूप में औषधियां मिलाई जाती है, कहीं पंच औषधि कहीं सर्व औषधि आदि का मिलाने का महत्व है। ऐसे ही आप देखेंगे भगवान सूर्य, सूर्य भी स्वयं नारायण रूप भी कहे गए, शिव रूप भी कहे गए, तो लोग कहते हैं सूर्य को जल चढ़ाओ, जल नहीं चढ़ाना होता, सूर्य को अर्घ देना होता है। अगर आप देखेंगे इस महत्व को तो जो अभी हमारे बड़े बूढ़े वो जानते हैं कि अर्घ दिया जाता था ऊपर से दिया जाता, जल के अंदर चावल या फूल आदि डाल करके उसको अर्घ रूप में बना के भगवान को अर्पण किया जाता था, एक सेवा के रूप में, एक सत्कार के रूप में, एक आदर के रूप में, तो यह आदर रूप है। दूसरी बात, जब हम प्रकृति में तत्व में देखें तो यहाँ पे शिव रूप क्या है जो पंच रूप से आया, और उसका जब हम सोमीयकरण देखेंगे, सोम तत्व क्या है, लताओं का रस, सोम एक प्रकार की अमृत रूप लता थी जिसे बोला कि वेदों में बोला इंद्र ने सोम रस का पान किया, तो ये सोम रस कोई वैसी चीज नहीं है जो आजकल में निषेध मानी गई, ये सोम रस का मतलब है औषधियों का अर्क, जिसे हम आयुर्वेद में भी प्रयोग करते हैं अर्क के रूप में, लेकिन लोगों ने मत मतांतर में इसके अलग अलग प्राचीन से नवीनीकरण कर दिया और अर्थ का अनर्थ कर दिया। तो यहाँ पर क्या, जो भी रस के रूप में आए किसी भी तत्व के उसको अर्पण किया जाना चाहिए। जैसे गाय है तो एक अंग है, भगवान का एक रूप है, तो उसके द्वारा जो प्राप्त हुआ दूध वो किया, दूध क्या है, सबसे सूक्ष्म रूप है। अगर हम अपने स्किन में भी देखें तो सबसे बारीक रूप से महीन रूप से दूध जा सकता है, सबसे शुद्धता का प्रतीक होता है, इसीलिए पय बोला गया, आपके रूप में बोला गया, आप व्यवस्था, इस प्रकार के मंत्र मिलते हैं। तो जल और दूध को मिला के करना चाहिए प्रयोग, या जैसे गन्ना है तो गन्ने के रस को प्रयोग करो या गन्ने के रस से बनने वाले गुड़ को प्रयोग करो, वो एक विधान है। तिल आदि को अर्पण करने का प्रयोग है, अर्थात हम कह सकते हैं या पेड़ है तो पेड़ के द्वारा उत्पन्न होने वाली पत्ती या उसका फल अर्थात बिल्व या बिल्व पत्र दोनों हम उसको अर्पण कर सकते हैं भगवान को। तो अलग अलग रूप से जिसकी जैसी भावना, जिसकी जैसी आवश्यकता, उसके अनुरूप भगवान को जो अर्पण करें, भगवान तो सर्वसाध्य है, जो दे दो सब सर्व सुलभ हो जाता है, इसलिए अर्पण कर देना चाहिए।
2: यस, एंड वी आर bringing to you the Somnath Amrit Mahotsav 2026 that has been held at the Somnath Temple at Prabhaspatan in Gujarat, and the Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi, has offered prayers at the Sri Somnath Temple, and he has also watched the special air show. The Surya Kiran aerobatic team of the Indian Air Force performed this spectacular air show atop the Somnath Temple, and the Honorable Prime Minister will be addressing a gathering at Somnath in just a short while from now, and meanwhile we bring you some devotional bhajan.

0: Minister of Gujarat, Shri Bhupendra Bhai Patel, and the Honorable Deputy Chief Minister of Gujarat, Shri Harsha Sanghvi, are also present. And the Honorable Prime Minister has performed a puja at the Shri Somnath Temple and is participating in the Somnath Amrit Mahotsav 2026 at Prabhas Patan in Somnath, Gujarat.
1: माननीय प्रधानमंत्री जी इस समय मंच पर उपस्थित हैं, साथ ही गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष सांघवी उनके साथ उपस्थित एक विशाल जनसमूह जो है वो इस समय हम देख पा रहे हैं और पारंपरिक परिधान कुछ ने धारण किए हैं, सर पर जो है वो पगड़ी पहनी हुई है, हाथों में पताकाएं हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी पूजन अर्चन करके यहाँ पर आए हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने मस्तक पर जो है वो भी तिलक धारण किया है और यहाँ पर विशाल जनसमूह जो है बेहद उत्सुक और उत्साहित है, गमछे धारण किए हुए हैं, अंगवस्त्र पहने हैं, हाथों में पताकाएं हैं लगातार लहराते हुए और एक विशाल स्क्रीन जो है वो दिखाई दे रही है जिस पर की मंदिर की प्रतिकृति बनी है। माननीय प्रधानमंत्री जी का अब अभिनंदन किया जा रहा है, पगड़ी उन्हें पहना कर अभिनंदन किया गया और साथ ही अंगवस्त्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभिवादन स्वीकार किया, हाथ जोड़कर सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए और इस वक्त मंचासीन जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनकी उपस्थिति भी इस कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी को अब एक स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है। सोमनाथ मंदिर की प्रतिकृति है, एक बेहद सुंदर तस्वीर माननीय
0: प्रधानमंत्री government, Shri Arjun Modwadia, and a huge sea of people here at Prabhas Patan, and another memento being presented to the Honorable Prime Minister of India that features the lion of Gir, and this is quite close to the Gir sanctuary, and as we can see that there's a huge public who are present here and have come to listen to the Honorable Prime Minister, and yet another memento, a kalash being presented to the Honorable Prime Minister by the Sri Somnath Trust, and the Honorable Prime Minister himself is the president of the Sri Somnath Trust, and we have now seen a garland being presented to the Honorable Prime Minister by the organizers, and people have been waiting since a long time to hear the Prime Minister, and the Honorable Prime Minister will be addressing the gathering very soon.
1: और कौशिक जी, मैं यहाँ ये भी बोलना चाहूंगी कि जब हम बहुत दूर से यात्रा करके जाते हैं द्वादश ज्योतिर्लिंग जो है उनमें से किसी भी मंदिर के दर्शन करने के लिए, तो बहुत अधिक भक्तिभाव से भरे होते हैं, तो जो लोग उसी स्थान पर रहते हैं वो अपने आप को बेहद भाग्यशाली मानते होंगे और इस समय जो ये विशाल जनसमूह हम देख रहे हैं इसमें ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो मंदिर की सेवा में भी लगे होते हैं, वो कार्यकर्ता होते हैं और इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो स्वेच्छा से मंदिर के विशेष कार्य जो हैं वो करते हैं और यहाँ पर हम इस समय देख पा रहे हैं उत्साहित जनसमूह है। माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति से आयोजन और भी भव्य और अब स्वागत उद्बोधन यहाँ पर
2: विश्वना सौथी वधु लोकप्रिय नेता अने यशस्वी वडाप्रधान आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी साहेब, मारा साथी नायब मुख्यमंत्री श्री हर्ष भाई संघवी, मारा साथी सौ मंत्रीश्रीओ, सांसद श्री सोमनाथ ट्रस्टना ट्रस्टीश्रीओ श्री जेडी परमार, श्री पीके लहरी, श्री हर्षवर्धन नोटिया, श्री विशद भाई मफतलाल, आमंत्रित सर्वे महानुभाव, प्रेस मीडिया ना मित्रों, सौ ने मारा नमस्कार। વિશ્વના સૌથી અધિક લોકપ્રિય નેતા અને આપણા લોકલાડીલા વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીનું હું હૃદયથી ખૂબ ખૂબ સ્વાગત કરું છું। સમગ્ર દેશ અને દુનિયાની નજર જે રાજ્યની ચૂંટણી પર હતી તે પશ્ચિમ બંગાળ સહિત આસામ અને પોન્ડિચેરીમાં પણ વિકાસની રાજનીતિને મળેલા પ્રચંડ જન સમર્થનના શિલ્પી યશસ્વી વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબને સમગ્ર ગુજરાતની જનતા જનાર્દન

0: प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए उत्सुक। प्रधानमंत्री जी ने स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया है और सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण पुनरुत्थान जो किया गया है और जो ऐतिहासिक इसका महत्व है उसके उससे जुड़ी प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन अब इस कार्यक्रम में।
1: The Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, will now address the gathering.

गुजरात के मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल, उप मुख्यमंत्री भाई हर्ष संघवी जी, गुजरात सरकार के मंत्रीगण, सांसद एवं विधायकगण, अन्य सभी महानुभाव देवी और सज्जनों, आज प्रभास पाटन का पवित्र क्षेत्र एक अद्भुत प्रभा से भरा हुआ है। महादेव का ये साक्षात्कार, ये सौंदर्य धरती और आसमान से हुई पुष्प वर्षा, भगवा ध्वजों की ये आभा, कला संगीत और नृत्य की अद्भुत प्रस्तुतियां, वेद मंत्रों का उच्चार, गर्भगृह में हो रहा शिव पंचाक्षरी का अखंड पाठ, और इस सब के साथ साथ सागर की लहरों का जयघोष, ऐसा लग रहा है जैसे ये सृष्टि एक साथ बोल रही है जय सोमनाथ, जय जय सोमनाथ। साथियों, समय खुद जिनकी इच्छा से प्रकट होता है, जो स्वयं कालातीत है, जो स्वयं काल स्वरूप है, आज उन देवादिदेव महादेव की विग्रह प्रतिष्ठा के हम 75 वर्ष मना रहे हैं। ये सृष्टि जिनसे सृजित होती है, जिनमें लय हो जाती है, यतो जायते पाल्यते येन विश्वम तमीशम भजे लीयते यत्र विश्वम, आज हम उनके धाम के पुनर्निर्माण का उत्सव मना रहे हैं। जो हलाहल को पीकर नीलकंठ हो गए, आज उन्हीं की शरण में यहां सोमनाथ अमृत महोत्सव हो रहा है। ये सब भगवान सदाशिव की ही लीला है। साथियों, दादा सोमनाथ के अनन्य भक्त के रूप में मैं कितनी बार यहां आया हूं, कितनी ही बार उनके सामने नतमस्तक हुआ हूं, लेकिन आज जब मैं यहां आ रहा था तो समय की ये यात्रा एक सुखद अनुभूति दे रही थी। अभी कुछ ही महीने पहले मैं यहां आया था, तब हम सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मना रहे थे। प्रथम विध्वंस के 1000 वर्ष बाद भी

उमनाथ के अविनाशी होने का गर्व, और आज इस आधुनिक स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा के 75 वर्ष हम केवल दो आयोजनों का हिस्सा भर नहीं, सिर्फ हिस्सा भर नहीं बने हैं, हमें हजार वर्षों की अमृत यात्रा को अनुभव करने का शिवजी ने मौका दिया है। साथियों, 75 साल पहले आज के ही दिन सोमनाथ मंदिर की पुनर्स्थापना, ये कोई साधारण अवसर नहीं था। अगर 1947 में भारत आजाद हुआ था तो 1951 में सोमनाथ की प्राण प्रतिष्ठा ने भारत की स्वतंत्र चेतना का उद्घोष किया था। आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है। साथियों, इसलिए आज इस अवसर पर मैं केवल 75 वर्षों की झांकी नहीं देख रहा हूं, मैं यहां देख रहा हूं विनाश में सृजन के संकल्प को, जिसे सोमनाथ ने चरितार्थ किया है। मैं यहां देख रहा हूं असत्य पर सत्य की विजय को, जिसे प्रभाष पाटन ने बार बार जिया है। मैं यहां देख रहा हूं हजारों वर्षों की आध्यात्मिक चेतना को, जिसने मानव मात्र के कल्याण की सीख समूचे विश्व को दी है। मैं यहां देख रहा हूं भारत के उस अविनाशी स्वरूप को, जिसे सदियों के कुत्सित प्रयास भी न मिटा सके न हरा सके, और मैं यहां देख रहा हूं सोमनाथ का अमृत महोत्सव, ये केवल अतीत का उत्सव नहीं है, ये अगले 1000 वर्षों के लिए भारत की प्रेरणा का महोत्सव भी है। मैं सभी देशवासियों को दादा सोमनाथ के कोटि कोटि भक्तों को इस महोत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज का दिन एक और वजह से भी विशेष है। 11 मई 1998 यानी आज के ही दिन देश ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था।

देश ने 11 मई को पहले 3 परमाणु परीक्षण किए। हमारे वैज्ञानिकों ने भारत के सामर्थ्य को, भारत की क्षमता को वैज्ञानिकों ने दुनिया के सामने रखा। दुनिया में तूफान आ गया, भारत उसकी ये हैसियत कि कौन होता है भारत जो परमाणु परीक्षण करें, और दुनिया की आंखें लाल हो गई। दुनिया भर की शक्तियां भारत को दबोचने के लिए मैदान में उतरी। अनेक प्रकार के बंधन लग गए, आर्थिक संकट की संभावनाओं के रास्ते सारे के सारे बंद कर दिए गए। कोई भी हिल जाता जब दुनिया भर की बड़ी बड़ी शक्तियां इतना बड़ा आक्रमण कर दें, तो आगे के रास्ते दिखते नहीं हैं। लेकिन हम कोई और मिट्टी के बने हुए हैं। 11 मई के बाद दुनिया हम पर टूट पड़ी थी। 11 मई को वैज्ञानिकों ने अपना काम कर लिया था, लेकिन 13 मई को फिर 2 और परमाणु परीक्षण हुए। उससे दुनिया को पता चला था कि भारत की राजनीति की इच्छा शक्ति कितनी अटल है। उस समय पूरी दुनिया का दबाव भारत पर था, लेकिन अटल जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने दिखाया था कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। दुनिया की कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती, दबाव में नहीं ला सकती। साथियों, देश ने पोखरण परमाणु परीक्षण को ऑपरेशन शक्ति नाम दिया था, क्योंकि शिव के साथ शक्ति की ये आराधना, ये हमारी परंपरा रही है। अर्धनारीश्वर शिव स्वयं भी शक्ति के साथ ही पूर्ण होते हैं। आपको याद होगा, जब देश का मिशन चंद्रयान सफल हुआ था, तब चंद्रमा पर जहां भारत का रोवर लैंड हुआ, उस जगह का नाम भी हमने शिव शक्ति पॉइंट रखा है, क्योंकि हमारी आस्था में चंद्रमा शिव से जुड़ा है और शिव शक्ति से जुड़े हैं। और ये कितना सुखद है कि चंद्रमा के नाम से ही इस ज्योतिर्लिंग को हम सोमनाथ कहते हैं। साथियों, शिव और शक्ति की हमारी आराधना का जो विचार है, वो देश की वैज्ञानिक प्रगति के लिए भी प्रेरणा बने। आज हम ये संकल्प साकार होते देख रहे हैं। मैं इस अवसर पर भगवान सोमनाथ के चरणों से सभी देशवासियों को ऑपरेशन शक्ति की वर्षगांठ की भी बधाई देता हूं। साथ

साथियों, जब मैं पिछली बार यहां आया था तब मैंने कहा था जिसके नाम में ही सोम अर्थात अमृत जुड़ा हो उसे नष्ट कौन कर सकता है। इतिहास के लंबे कालखंड में इस मंदिर ने कितने ही आक्रमण झेले। महमूद गजनवी, अलाउद्दीन खिलजी जैसे अनेक आक्रांत आए, लुटेरों ने सोमनाथ मंदिर का वैभव मिटाने का प्रयास किया। वो सोमनाथ को एक भौतिक ढांचा मानकर उससे टकराते रहे, बार बार इस मंदिर को, इस ढांचे को तोड़ा गया और ये बार बार बनता रहा, हर बार उठ खड़ा होता रहा, क्योंकि तोड़ने वालों को मालूम नहीं था हमारे राष्ट्र का वैचारिक सामर्थ्य क्या है। हम भौतिक शरीर को नश्वर मानने वाले लोग हैं, लेकिन हम जानते हैं उसके भीतर बैठी आत्मा अविनाशी है। और फिर तो शिव तो सर्वात्मा है, इसलिए अलग अलग काल में अलग अलग जीवों की संकल्प शक्ति में शिव प्रकट होते रहे। राजा भोज, कभी राजा भीमदेव प्रथम, कभी राजा कुमारपाल, कभी राजा महिपाल प्रथम, तो कभी राव खंगार, ऐसे अनेक शिव भक्त समय समय पर सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाते रहे। लकुलीश और सोम शर्मा जैसे कितने मनीषी, उन्होंने प्रभास पाटन क्षेत्र की विरासत को संरक्षित किया, इसे शैव साधना और दर्शन का महान केंद्र बनाया। भाव बृहस्पति, पाशुपताचार्यों और अनेक विद्वानों ने इस तीर्थ की आध्यात्मिक परंपराओं को जीवित रखा। विशाल देव और त्रिपुरांतक जैसे व्यक्तित्वों ने यहां की बौद्धिक चेतना को सुरक्षित रखने का पुनित कार्य किया। साथियों, वीर हमीर जी गोहिल, वीर भेगड़ा जी भील, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर जी, बड़ोदरा के गायकवाड़ जामसा महाराजा दिग्विजय सिंह जी, ऐसी कितनी ही महान विभूतियां हैं जो सोमनाथ की सेवा में अपना सर्वस्व अर्पित करती थी। मैं आज इस अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्रीमान के एम मुंशी जी, ऐसी सभी ज्ञात अज्ञात दिव्यात्माओं को भी श्रद्धापूर्वक आदरपूर्वक नमन करता हूं। उनका स्मरण हमें ये प्रेरणा देता है कि हमें न केवल अपनी सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाना है, बल्कि इस जिम्मेदारी को आने वाली पीढ़ियों के हाथों में सौंप कर भी जाना है। साथियों, हमारे सांस्कृतिक स्थल,
हजारों वर्षों से भारत की

पहचान रहे हैं। इतनी समृद्ध विरासत हमें मिली है, लेकिन आप विडंबना देखिए, हमने दशकों तक उसके महत्व को नहीं समझा। दुनिया में से कितने ही उदाहरण हैं जहां विदेशी हमलावरों ने राष्ट्रीय पहचान से जुड़े स्थलों को नष्ट किया, लेकिन जब उस देश के लोगों को मौका मिला

राष्ट्रीय पहचान से जुड़े स्थलों को नष्ट किया, लेकिन जब उस देश के लोगों को मौका मिला, सबने साथ आकर अपनी पहचान को फिर से सहजा, फिर से संवारा, पुनः प्रतिष्ठा की। लेकिन हमारे यहां राष्ट्रीय स्वाभिमान से जुड़े विषयों पर भी राजनीति होती रही। सोमनाथ खुद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आजादी के बाद पहले दायित्वों में से एक था कि सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार करते, इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने इसके लिए इतने प्रयास किए। लेकिन हम सब जानते हैं उन्हें इसके लिए नेहरू जी द्वारा कितना विरोध झेलना पड़ा था। मैं आज इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये सरदार साहब की इच्छा शक्ति थी कि इतने विरोध के बावजूद सरदार साहब डिगे नहीं, सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण भी हुआ और देश ने सदियों के कलंक को भी धो दिया। साथियों, दुर्भाग्य से देश में ऐसी शक्तियां आज भी प्रभावी हैं जिन्हें राष्ट्रीय स्वाभिमान से ज्यादा तुष्टीकरण जरूरी लगता है। राम मंदिर निर्माण जैसे अवसरों पर भी हमने देखा किस तरह राम मंदिर निर्माण का भी विरोध किया गया। हमें ऐसी मानसिकता से सावधान रहना है। इस तरह की संकुचित राजनीति को हमें पीछे छोड़ना होगा। हमें विकास और विरासत को साथ लेकर के आगे बढ़ना होगा। साथियों, बीते वर्षों में मुझे सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में सोमनाथ दादा की सेवा का जो अवसर मिला, इस मंदिर और क्षेत्र के विकास के लिए जो ऐतिहासिक काम हुए, उस परिवर्तन को आज हम सब प्रत्यक्ष देख रहे हैं। लेकिन साथ ही इस सेवा का मुझे व्यक्तिगत लाभ भी हुआ है। आज मुझे देश के सभी पवित्र तीर्थों के विकास का जो मौका मिल रहा है, ये भगवान सोमनाथ का ही कृपा प्रसाद है। साथियों, आज काशी में सदियों बाद बाबा विश्वनाथ धाम का इतना भव्य विस्तार हुआ है। आज उज्जैन में महाकाल महालोक के विशाल दर्शन भी हो रहे हैं। केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण भी हुआ है। जैसा मैंने पहले कहा, अयोध्या में 500 साल की प्रतीक्षा भी पूरी हुई है। आज वहां भव्य मंदिर में रामलला विराजमान है। साथियों, ऐसे कितने ही पवित्र तीर्थ, पवित्र मठ, मंदिर और क्षेत्र, उनकी जो महिमा हमने पुराणों में सुनी है, आज वहां हमें उस समृद्ध परंपरा के दर्शन होने लगे हैं। और ये इतना कुछ 10-12 साल के भीतर भीतर हुआ है। साथियों, हमारे सांस्कृतिक केंद्रों की उपेक्षा देश के विकास में बड़ी बाधा रही है, क्योंकि हमारे तीर्थ भारत की आध्यात्मिक सामाजिक व्यवस्था के केंद्र तो है ही, वो देश की आर्थिक प्रगति के भी स्रोत रहे हैं। आज आप देखिए, चार धाम महामार्ग परियोजना गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक

रोपवे परियोजना, करतारपुर कॉरिडोर, बौद्ध सर्किट का विकास, इनके जरिए देश में तीर्थ क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ी हैं। सोमनाथ परिसर भी इसका एक सशक्त उदाहरण है। आज सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट से सैकड़ों परिवार जुड़े हैं, हजारों लोगों का जीवन इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। देश दुनिया के कोने कोने से जो लोग यहां आते हैं, वो गुजरात के बाकी हिस्सों में भी जाते हैं। इससे प्रदेश और देश में प्रगति के नए द्वार खुलते हैं। साथियों, हमारी आस्था हमें जीवन जीने का तरीका भी सिखाती है, क्योंकि हम मानते हैं सर्वम खलित्वम ब्रह्मा, अर्थात सृष्टि का हरेक घटक, इस संपूर्ण प्रकृति भी ईश्वर का ही स्वरूप है। इसलिए हमारी आस्था नदियों में भी है, वृक्षों में भी है, हम जंगलों को भी श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं, हम पर्वतों में भी पवित्रता का भाव रखते हैं। और आज जब दुनिया प्राकृतिक जीवन शैली की ओर लौट रही है, हमें हमारी शक्ति को भी पहचानना होगा। हम हमारे तीर्थों और मंदिरों के विकास के साथ साथ उनकी गरिमा के लिए जागरूक होना होगा। हमें ऐसा जीवन अपनाएं जिससे प्राकृतिक और पर्यावरण की रक्षा हो। साथ ही हम हमारे पुण्य स्थलों को पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण के रूप में विकसित करें। हमें इन संकल्पों को अपनी आस्था से जोड़कर जीना होगा। साथियों, जब नई पीढ़ियां अपने इतिहास, अपनी आस्था और अपने सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़ती है, तब राष्ट्र का आत्मबल और मजबूत होता है। आज भारत जिस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है, उसमें हमारी सांस्कृतिक निरंतरता की भी बहुत बड़ी भूमिका है। आधुनिक और विरासत, आधुनिकता हो या विरासत हो, भारत में इसे कोई अलग नहीं कर सकता। भारत में एक दूसरे के विरोधी नहीं है, ये साथ साथ आगे बढ़ने वाली शक्तियां हैं, एक दूसरे में प्राण पूरने वाली शक्तियां हैं। सोमनाथ हमें याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र तभी लंबे समय तक मजबूत रह सकता है जब वो अपनी जड़ों से जुड़ा रहे, जब वो अपनी विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक उसी श्रद्धा और विश्वास के साथ उनके हाथों में सुपुर्द करे। 75 वर्ष पहले जब पुनर्निर्मित ये पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर में 75 वर्ष पहले प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तब भारत ने एक नई चेतना यात्रा शुरू की थी। आज 75 वर्ष बाद वही यात्रा और अधिक व्यापक रूप में हमारे सामने है। हमें इसे नई ऊंचाई पर लेकर जाना है। हमारे संकल्पों को पूरा करने में दादा सोमनाथ का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहे, यही प्रार्थना है। एक बार फिर सभी देशवासियों को विरासत में विश्वास करने वाले हर नागरिक को, आप सभी को इस अवसर की बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ बोलिए, जय सोमनाथ।

0: जय सोमनाथ। हर हर महादेव।
1: The Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, was addressing the gathering at the Somnath Amrit Mahotsav 2026 at the Somnath Temple at Prabhas Patan in Gujarat. The Prime Minister said that the Somnath Temple is the symbol of India's national respect and it has withstood the travails of time. It has withstood the tyranny of Mahmud of Ghaznavi and Alauddin Khilji and many other tyrants. The Prime Minister paid tributes to Lakulisha and Soma Sarma and others, kings and commoners who defended the Somnath Temple and also rebuilt them over 1,000 years. He paid special tributes to Sardar Vallabhbhai Patel and to Dr. Rajendra Prasad. The Prime Minister said that the government is committed towards keeping up our heritage and our culture, and he also said that the government is committed towards Vikas Bhi and Virasat Bhi. The Prime Minister also mentioned that today is the anniversary of Operation Shakti, that is on the 11th of May in 1998, India tested nuclear weapons for the second time under the leadership of Atal Bihari Vajpayee. And as we come to the end of this special broadcast, we conclude with this mantra: Om Namah Shambhavaya Cha Mano Bhavaya Cha Namah Shankaraya Cha Mayaskaraya Cha Namah Shivaya Cha Shivtaraya Cha Har Har Mahadev.
2: आज सोमनाथ मंदिर प्रांगण में सोमनाथ अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया। माननीय प्रधानमंत्री इस आयोजन में शामिल हुए। सोमनाथ भारत की अजय सभ्यता का प्रतीक है, ये कहा गया। सोमनाथ भारत की शाश्वत ज्योति है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनसमूह को संबोधित किया और कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को झुका नहीं सकती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिव शक्ति पॉइंट का उल्लेख किया, ऑपरेशन शक्ति का लेख किया, महान विभूतियों का स्मरण करते हुए उन्हें नमन किया और साथ ही प्रकृति पूजन परंपरा का भी उल्लेख करते हुए हर भारतीय को प्रेरित किया कि अपनी आध्यात्मिक चेतना को हमेशा ऊर्ध्वगामी रखें और जो हमारे आस्था के स्थल हैं उनके प्रति समर्पण बनाए रखें और इस तरह से राष्ट्र सेवा में लीन रहें। ये विशेष प्रसारण आप आकाशवाणी के माध्यम से सुन रहे थे। विशेष प्रसारण प्रस्तुतकर्ता प्रमोद कुमार वत्स के साथ, स्टूडियो में हमारे साथी हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर आशुतोष शर्मा के साथ और एस वाई खान के साथ, अपने को कमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ, मैं नीलम मलकानिया इस विशेष आयोजन की आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अब आप सभी से अनुमति लेती हूं। नमस्कार।
3: अभी आप सोमनाथ अमृत महोत्सव का सजीव विवरण सुन रहे थे। विवरण दे रहे थे नीलम मलकानिया और कौशिक राय। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
4: हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। आइए श्रोताओं, जयपुर केंद्र से आपको हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनवाएं।

0: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। दिन के 1:15 होने वाले हैं। ठीक 1:15 से आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं

0: रितिका गुप्ता। गुजरात के सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर देशभर में आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने मंदिर के शिखर का जलाभिषेक किया। इससे पहले उन्होंने रोड शो किया। इस दौरान हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ अमृत पर्व के तहत विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लिया। इसके बाद श्री मोदी ने सोमनाथ पर डाक टिकट जारी कर जनसभा को संबोधित किया। इधर प्रदेश में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का राज्य स्तरीय समारोह जयपुर के झारखंड महादेव मंदिर में आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी कार्यक्रम में मौजूद है। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री शर्मा ने कहा कि पूरे देश में धार्मिक स्थलों का संरक्षण किया जा रहा है। देशवासी एकजुट होकर संस्कृति और विरासत को सहेजने का काम कर रहे हैं।
1: हमारी विरासत के लिए, हमारी संस्कृति के लिए हमारी सरकार भी लगातार काम कर रही है। 2026-27 में हमने प्रदेश के आध्यात्मिक उत्थान से जुड़े अनेक कार्य किए हैं। पर्यटन आस्था की दृष्टिकोण से प्रसिद्ध तनोट माता के समग्र विकास के लिए विस्तृत योजना बनाई है। पुष्कर खाटू श्याम जी नाथद्वारा केशोराय पाटन गिरिराज जी चित्तौड़गढ़ जैसे धार्मिक और हेरिटेज शहरों में हेरिटेज वॉकवे का निर्माण करवाएंगे। किराड़ू के मंदिर समूह के संरक्षण और जीवद्वार के लिए कार्य कराए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पुष्कर खाटू श्याम जी देशनोक डिग्गी में मुख्य प्रवेश मार्ग मॉडल रूप से बनाया जा रहा है। अब तक हमने 91,000 से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा कराई है। हर साल हम 50,000 हमारे उन बुजुर्गों को यात्रा कराने का काम हम करते हैं।
0: प्रदेश के सभी जिलों के प्रमुख शिवालयों में भी विशेष धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं।

0: पश्चिम एशिया संकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से राष्ट्र को मजबूत करने के लिए एकजुटता से काम करने का आह्वान किया है। हैदराबाद में कल एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने राष्ट्र से सात अपील की। उन्होंने नागरिकों से सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कार पूलिंग के जरिए आयातित ईंधन के इस्तेमाल को कम करके विदेशी मुद्रा भंडार को संरक्षित करने में मदद करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से एक साल के लिए विदेश भ्रमण टालने का भी आग्रह किया है। उन्होंने एक वर्ष के लिए विदेशों में शादी कार्यक्रम आयोजित करने और अत्यधिक सोने की खरीदारी से बचने की भी अपील की। उन्होंने वर्क फ्रॉम होम अभ्यास को फिर से लागू करने की बात कही। साथ ही लोगों से खाने के तेल के उपभोग में कमी लाने का आग्रह किया। उन्होंने किसानों से विदेश से आयातित रासायनिक उर्वरकों के विवेकपूर्ण प्रयोग की बात कही। प्रधानमंत्री ने वोकल फॉर लोकल आंदोलन का नारा बुलंद करते हुए स्थानीय वस्तुओं की खरीददारी पर जोर दिया। डीग जिले के जटेरी से अब आदि बद्री, खो, बरसाना और मथुरा को जोड़कर धार्मिक पर्यटन सर्किट के रूप में विकसित किया जा रहा है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कल डीग के जटेरी गांव में आयोजित संध्या चौपाल में शिरकत की। उन्होंने ग्राम रथ अभियान के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में कहा कि जटेरी को मॉडल ग्राम पंचायत के रूप में विकसित किया जा रहा है। श्री बेढम ने कहा कि गांव से जुड़ा नया धार्मिक पर्यटन सर्किट विकसित होने से आर्थिक गतिविधियां मजबूत होंगी और लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। उन्होंने बताया कि जटेरी और पुंछरी में कुंडों के विकास के लिए 8.5 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। कोटा के मेडिकल कॉलेज और जेके लोन अस्पताल में प्रसूताओं की स्थिति पर दोनों अस्पतालों में गंभीर संक्रमण और स्वास्थ्य जटिलताओं के 12 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। डॉक्टर नीलेश जैन की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय कमेटी इन मामलों को हाई रिस्क वाला बता रही है। अब तक दोनों अस्पतालों में 4 प्रसूताओं की मृत्यु हो चुकी है, वहीं 4 अन्य प्रसूताएं किडनी खराब होने की समस्या से जूझ रही हैं। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने सरिस्का में वन्य जीव अस्पताल और जांच केंद्र को मंजूरी दे दी है। इससे सरिस्का टाइगर रिजर्व के वन्य जीवों का उपचार अब सरिस्का में ही हो सकेगा। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि जल्दी ही अस्पताल का काम शुरू किया जाएगा। अभयारण्य में बाघ, बघेरों के अलावा सांभर और चीतल सहित करीब 20,000 वन्य जीव हैं। इनके बीमार और जख्मी होने की स्थिति में इन्हें स्थानीय स्तर पर भी इलाज की सुविधा मिल सकेगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से हम बोल रहे हैं। श्रोताओ, ट्यून किया आपने FM 102, FM 103.6 MHz, मीडियम वेव 212

1.3 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज पर। आइए अब आपको सुनवाएं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। उमंग कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है
1: और अजीत का भी नमस्कार और जोहार। अब प्रस्तुत है हमेशा की तरह एक सुंदर विचार जो हमें भेजा है कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, नूर, नमन, सिमरत, गुरकिरत राहुल और गुरशब्द सिंह जी ने। लिखते हैं,
2: जिंदगी जीने के लिए अनेक तरीके हो सकते हैं मगर सर्वश्रेष्ठ तरीका वही है जिससे स्वयं को सकारात्मक और रचनात्मक संतुष्टि मिले और दूसरे को उससे कोई नई दिशा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इतने सुंदर विचार के लिए। जी हाँ श्रोताओ, जो काम करना हमें अच्छा लगे वो हमें जरूर करना चाहिए। तो श्रोताओ आइए अब सुनते हैं उमंग कार्यक्रम में संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: ग्राम टेका बजरंग चौक वार्ड नंबर 2 छत्तीसगढ़ से लकी ऋषि नवरंग
1: और खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी ने लिखा है। सर अजीत जी और मैडम विमलेश जी सप्रेम नमस्ते जी।
2: नमस्ते जी।
1: अगला संदेश हमें मिला है स्वार रोड मुरसेना से गुलफशाह इदरीसी, जीनत अमान इदरीसी, नाजिया शाजिया, भाई मोहम्मद नादिर, मोहम्मद साजिद, छोटू नाहिद और पापा हबीब अहमद इदरीसी जी।
2: प्रोग्राम पेश करने वालों को हमारी ओर से आदर और सम्मान। सर और मैम, हमें उमंग प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगता है। इस प्रोग्राम से हमें बहुत सारी नई नई जानकारियाँ मिलती हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी श्रोताओं का संदेश भेजने के लिए। आपसे निवेदन है इसी तरह से संपर्क बनाए रखिए, संदेश भेजते रहिए और हाँ, मात्र सुविचार भेजकर और प्रश्नों के उत्तर भेजकर ही संतुष्ट न हो जाइए। हमारे कार्यक्रमों पर प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। तो अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों की। हमारा पहला प्रश्न था, दक्षिण भारत में भी बहुत से प्राचीन गुरुकुल हैं, उनमें से कुछ प्रसिद्ध गुरुकुलों के नाम बताइए।
2: इसका उत्तर है साथियों, श्रृंगेरी शारदा पीठम और कांची कामाकोटी पीठम मुख्य रूप से दक्षिण भारत के प्रसिद्ध गुरुकुल हैं।
1: और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, पृथ्वी के सबसे छोटे महासागर का नाम बताइए।
2: श्रोताओं, इसका सही उत्तर है, पृथ्वी के सबसे छोटे महासागर का नाम है आर्कटिक महासागर। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सबसे छोटा महासागर है।
1: हमारा तीसरा प्रश्न था, समुद्र के पानी में नमक किन किन स्रोतों से आता है।
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, समुद्र के पानी में नमक लाने का सबसे बड़ा स्रोत है नदियाँ, जो चट्टानों, मिट्टियों, पर्वतों से खनिज के घोल के साथ साथ नमक को भी ले आती हैं, जो खनिजों के साथ ही मिला होता है।
1: और अब हमारा अगला प्रश्न सुनिए, जो हमने पूछा था, समुद्रों को प्रदूषित होने से बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं।
2: इसका उत्तर है श्रोताओं, समुद्रों को प्रदूषित होने से बचाने का सबसे पहला उपाय है नदियों को प्रदूषित होने से बचाना, क्योंकि अधिकांश नदियां समुद्रों में ही गिरती हैं और अपने साथ प्रदूषित कूड़ा कचरा ले आती हैं। दूसरा उपाय है, हम समुद्रों में कचरा खासकर प्लास्टिक न फेंकें, इससे भी समुद्र प्रदूषित होता है।
1: और हमारा अंतिम प्रश्न था, समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम बताइए और ये भी बताइए कि ये कहाँ पर है।
2: जी हाँ, इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम है चैलेंजर डीप, जो प्रशांत महासागर के मारियाना ट्रेंच में फिलीपींस के पास स्थित है।
1: तो श्रोता मित्रों, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। यदि आपने हमारी प्रश्नोत्तरी में भाग लिया तो आपका आभार,
2: और यदि नहीं लिया तो हम आपको प्रोत्साहित करेंगे कि आप न सिर्फ भाग लें लेकिन दूसरों को भी, विशेषकर विद्यार्थियों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें।
1: तो आइए अब सुनते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, आकार में समुद्र के सबसे बड़े जीव का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: आकार में समुद्र के सबसे बड़े जीव का नाम बताइए।
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम जिसका शीर्षक है
2: माई बाईसाइकिल। ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की कविता का संगीत रूपांतर है। कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को सड़क पर सावधानी से चलने की सलाह दी गई है और जब वे सड़क पार करें तो पहले ध्यान से आसपास

0: children, you have listened to the song just now. Did you like it?
1: Yes, sir. We like it.
0: Very good. So remember, always, whenever we ride a bicycle, we have to be careful about our safety and also the safety of others.
2: अभी आपने सुना ये खूबसूरत कार्यक्रम माई बाइसिकल। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम
3: सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल।
4: साथियों, भारत भूमि ने एक से बढ़कर एक वीरों को जन्म दिया है जिन पर देश को नाज है। आइए आज याद करते हैं भारतीय सेना के एक ऐसे शहीद जांबाज की कुर्बानी जिसको अपनी अद्वितीय बहादुरी के कारण भारत का सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र मिला। भारत मां का ये सपूत था सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, जो जिया तो सिर्फ 20 साल पर भारत की जनता के दिलों में उसकी यादों का दिया जलता रहेगा सालों साल। अरुण का जन्म 14 अक्टूबर 1950 को पूना में हुआ था। वे एक ऐसे परिवार से थे जिसका एक लंबा सैन्य इतिहास रहा है। अरुण का बाल्यकाल फौजी माहौल में बीता। अरुण जब 8 साल के थे तो वो सैनिकों के साथ खेलते, उनसे युद्ध की कहानियां सुनते और उन्हीं के साथ लंगर में जाकर खाना खाते। उनका जवानों के प्रति प्यार और फौज के प्रति रुझान देखकर साफ साफ पता चलता था कि अरुण ने भी फौज में भर्ती होने का मन बना लिया है। अरुण की प्रारंभिक शिक्षा उन विभिन्न स्थानों पर हुई जहां उनके पिता तैनात थे, पर अरुण के जीवन में एक निर्णायक अवसर वो भी था जब उसने सन 1962 में प्रसिद्ध सेंट लॉरेंस स्कूल सनावर में दाखिला लिया। अरुण की शिक्षा के अंतिम 5 वर्ष वहीं बीते। सनावर में बिताए उन 5 सालों में जैसे अरुण का व्यक्तित्व निखर सा गया। अपने स्कूल के बैंड में वे क्लैरिनेट बजाया करते थे। अरुण ने इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में दाखिला लिया जहां से उन्होंने 23 जून 1971 को अपना पाठ्यक्रम पूरा किया। जून 1971 में उन्हें पूना हॉर्स रेजिमेंट में नियुक्ति मिली। रेजिमेंट की परंपरा के अनुसार किसी भी युवा अधिकारी को सारे काम करने पड़ते थे, जैसे ड्राइवर, गनर, रेडियो ऑपरेटर से लेकर टुकड़ी तक का नेतृत्व। अरुण को जो भी काम मिलता वो उसे पूरी लगन के साथ करते। जब उन्हें टैंक चलाने का काम मिला

0: तो उन्होंने उसकी देखरेख, सफाई करने, मरम्मत करने जैसे सारे काम सीखे और किए।
1: मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा।
2: साहब आप क्यों परेशान होते हो, हम कर लेंगे सफाई टैंक की।
1: अरे नहीं नहीं नाथू सिंह, अगर मैं टैंक चलाता हूँ तो उसकी देखरेख की जिम्मेदारी भी मेरी ही है।
2: वो तो ठीक है साहब,
1: पर अगर मैं इसकी देखरेख नहीं कर सकता तो इस पर बैठने का भी कोई हक मुझे नहीं है।
2: वो तो ठीक है साहब, लेकिन
1: देखो नाथू सिंह, हम सब सैनिक हैं और हमारी पूना हॉर्स रेजिमेंट की परंपरा के अनुसार एक सच्चा सैनिक वही है जो किसी भी काम को छोटा ना समझता और हर काम को पूरी निष्ठा, ईमानदारी और लगन से करता हो।
2: बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है साहब, लेकिन
1: अरे लेकिन लेकिन कुछ नहीं, मुझे टैंक साफ करने दो।
0: अरुण सबके साथ बड़ी आसानी से घुल मिल जाते, चाहे वो अफसर हो या जवान। देर देर तक बैठकर दोस्तों के साथ गपशप करना उन्हें बेहद पसंद था, पर इसके साथ साथ वो कठिन से कठिन परिस्थितियों से जूझने को भी तैयार रहते। हारना और डर कर पीछे मुड़ना उन्होंने कभी नहीं सीखा, और इसी का परिचय दिया उन्होंने 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के समय।
3: माँ।
4: अरुण बेटा, तुम पहली बार युद्ध में जा रहे हो, कैसा लग रहा है?
3: मुझे काफी गर्व महसूस हो रहा है माँ। फौज में भर्ती होने के 6 महीने के अंदर ही मुझे अपने देश की सेवा का मौका मिल गया।
4: हाँ।
3: अब मौका मिलेगा मुझे कुछ कर दिखाने का।
4: बेटा एक बात याद रखना, तुम्हारे पूरे परिवार का एक शानदार सैन्य इतिहास रहा है।
3: जी।
4: ये चमचमाते हुए मेडल ये बताते हैं कि भारतीय सेना में तुम्हारे परिवार का कितना योगदान रहा है।
3: जानता हूं मां।
4: जाओ बेटा, इस मर्यादा को बनाए रखना और ऐसे लड़ना कि दुश्मन के गलियारों में भी तुम्हारी बहादुरी की चर्चा हो।
3: जी मां, आशीर्वाद दीजिए।
4: जाओ बेटा।
0: और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। दिन 16 दिसंबर 1971, स्थान बसंतर नदी का किनारा। दोनों सेनाओं में जम्मू कश्मीर के सामने वाले मैदानी इलाके शकरगढ़ में घमासान युद्ध चल रहा था।

जब सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल और उनके साथियों ने सुना कि हमारी फौज पर दुश्मन के टैंकों ने जवाबी हमला कर दिया है, तो वो अपने टैंक के साथ पूरे जोश के साथ सैनिकों की मदद के लिए आगे बढ़े। अभी वो आगे बढ़ ही रहे थे कि उनके टैंकों पर भी दुश्मन ने गोले बरसाने शुरू कर दिए। टैंकों का आक्रमण होते ही अरुण ने बड़ी फुर्ती से अपने टैंक का मुंह दुश्मन की ओर मोड़कर उन पर जबरदस्त हमला कर दिया। दुश्मन अरुण के इस घातक हमले को झेल नहीं पाया और पीछे हटने लगा। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण ने अपने टैंक की रफ्तार तेज कर उनका पीछा करना शुरू किया और दुश्मन के एक टैंक को नष्ट कर दिया।

0: तभी पीछे से कमांडर का रेडियो पर आदेश आया,
1: सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण पीछे लौटो और स्क्वाड्रन की पोजीशन से आ मिलो, अब हम एकजुट होकर फिर से हमला करेंगे।
2: यस सर।
0: आदेश सुनकर अभी वे लौट ही रहे थे कि तभी दुश्मन के टैंकों की पूरी स्क्वाड्रन ने उन पर धावा बोल दिया। सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल ने उनका सामना पूरी बहादुरी से किया। अभी सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल दुश्मनों से जूझ ही रहे थे कि दुश्मन का एक गोला उनके टैंक पर आ गिरा और टैंक में आग लग गई, जिससे वे बुरी तरह घायल हो गए। पीछे से फिर आदेश आया,
1: अरुण तुम्हारे टैंक में आग लगी है, उसे छोड़ो और पीछे आओ।
3: सर मैं अपना टैंक नहीं छोड़ूंगा, अभी मेरी गन काम कर रही है और दुश्मनों को ठिकाने लगाकर ही दम लूंगा।
0: युद्ध के इस महत्वपूर्ण मोर्चे पर अब उस क्षेत्र में केवल सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण ही अपने टैंक के साथ बचे थे। इसके बाद टैंकों का ऐसा भयानक युद्ध हुआ जो युगों युगों तक याद रखा जाएगा।
4: सर सर ये क्या, ये तो टैंकों की पूरी स्क्वाड्रन ही हमारी ओर बढ़ती चली आ रही है साहब।
3: इन्हें रोकना ही पड़ेगा। प्रयाग सिंह टैंक की रफ्तार तेज करो।
5: यस सर।
3: नाथू सिंह निशाना साधो।
4: यस सर। दाहिनी ओर का टैंक बिल्कुल हमारे टारगेट पर है सर।
3: फायर।
4: सर
3: ये तो क्या, अब दूसरों को देखता हूं। टर्न द गन टू द लेफ्ट।
5: जी।
3: फायर।
4: सर सर वो आखिरी वाला टैंक तो वापस मुड़ रहा है सर।
3: हाँ लगता है आक्रमण करेगा, निशाना साधो।
4: ठीक है सर।
0: दो टैंक आमने सामने खड़े थे, दोनों ने एक साथ एक दूसरे पर गोले दागे। और उसी विस्फोट में अरुण ने वीर गति पाई। हालांकि सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल का देहांत हो गया, लेकिन उनकी बहादुरी की वजह से वो दिन भारत का रहा। दुश्मन का एक भी टैंक भारतीय कब्जे वाले इलाके में घुस न सका। हमारी सेना ने उस दिन दुश्मन के 10 टैंक नष्ट किए, जिनमें 4 टैंक अकेले अरुण ने नष्ट किए थे। इस बहादुरी भरे कारनामे के लिए अरुण को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: साथियों, खेत्रपाल परिवार के लिए कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। कुछ सालों बाद एक विचित्र घटना घटी, जिसके विषय में हमने उनके पिता ब्रिगेडियर मदनलाल खेत्रपाल से चर्चा की और उन्होंने जो कुछ भी बताया, हम उसे आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं।
1: कुछ सालों बाद मुझे संदेशा मिला कि पाकिस्तान का एक ब्रिगेडियर मुझसे मिलना चाहता है। क्योंकि मैं उनके नाम से परिचित नहीं था, इसलिए मिलने की कोशिश भी नहीं की। अरुण की यादों के सहारे समय बीतता गया।

0: और 2001 की बात है। मेरा मन हुआ जाकर अपना जन्म स्थान सरगोधा देखाऊं, जो पाकिस्तान में है, और मैं रवाना हो गया। और देखिए कैसा संयोग था कि मेरी मुलाकात उसी पाकिस्तानी ब्रिगेडियर से हुई। उन्होंने मेरी मेजबानी का दायित्व संभाला और मुझे मेरे पैतृक गांव की यादगार यात्रा कराई। मैं उनके घर करीब 3 दिन ठहरा। ज्यों-ज्यों मेरा लौटने का समय नजदीक आता गया, त्यों-त्यों हमारी मित्रता गहरी होती गई। पर समय समय पर ऐसा लगता था कि कुछ बात अभी बाकी है, और वो क्या थी मैं समझ नहीं पा रहा था। बात करते करते बीच में रुकना, उनके परिवार के लोगों की आंखों में करुणा, विदाई के एक दिन पहले हम सब ने एक साथ भोजन किया। सोने का समय हो चला था। अभी हम सोने जा ही रहे थे कि ब्रिगेडियर ने कहा, सर मैं वर्षों से आपसे कुछ कहना चाहता हूं, पर कैसे कहूं ये समझ नहीं आ रहा। ये बात आपके बेटे अरुण के बारे में है। मैंने उनसे पूछा कि तुम अरुण के बारे में जानते हो? उन्होंने कहा, जी बहुत अच्छी तरह से। जिस बहादुरी की वजह से उसकी घर घर में चर्चा होती है, वो नजारा मैंने अपनी आंखों से देखा है। याद आता है वो दिन जब शकरगढ़ की उस युद्धभूमि पर 2 टैंक आमने सामने खड़े थे, जिसमें से एक टैंक में था आपका बेटा अरुण और दूसरे में और कोई नहीं, मैं ही था। हम दोनों ने एक साथ एक दूसरे पर गोले दागे, पर नियति को शायद यही मंजूर था कि मैं जिंदा हूं और अरुण शहीद हो गया। मैंने जो किया वो मेरा काम था, पर सिपाही होने के साथ साथ मैं एक इंसान भी हूं, और जब मुझे पता चला कि उस समय अरुण सिर्फ 21 साल का था, तो उस घटना ने मुझे बड़ी बुरी तरह से झकझोर दिया। जिस बहादुरी से आपके बेटे ने अपनी मातृभूमि की रक्षा की, उसके लिए मैं उसे सलाम करता हूं। मेरे लिए ऐसे व्यक्ति का सामना करना जिसने मेरे पुत्र की हत्या की थी आसान नहीं था, पर उस समय मेरे जहन में बस यही पंक्तियां आईं, हिंद के सैनिक तुझे प्रणाम, सारी दुनिया में तेरा नाम, दुश्मन के गलियारे में भी होती है तेरी चर्चा आम, सलाम सलाम।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल। श्रोताओं, आशा है कि आपको हमारे कार्यक्रम जरूर पसंद आए होंगे, तो फिर देर कैसी, भेज डालिए अपना संदेश। अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है, तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।

उमंग श्रोताव्य था NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। आइए श्रोताव आपको जानकारी दें आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। युवा साथी अपना कार्यक्रम युववाणी शाम 5 बजे से 6 बजे तक सुन सकेंगे। चौपाल कार्यक्रम प्रसारित होगा शाम सात बजे से 7:30 तक। बदलते साथी फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 9 बजे से 10 बजे तक। श्रोताओ आज इस कार्यक्रम में कलाकार अभिजीत होंगे। आइए श्रोताओ अब आपको विविध भारती मुंबई के प्रसारण के लिए चलें।

हमारे साथ ही बिल्कुल चौंक गए हैं। कुछ अलग अलग तरह की टिप्पणियां आई हैं, चलिए आपको सुनवाते हैं। किसी ने लिखा है, वाह ये गाना दिमाग में नहीं आया जबकि बहुत बार सुना हुआ है। आपका नाम भी दुर्लभ है नेहा जी, गाने खोजने में दोपहर को तारे नजर आ गए। देखिए अब ऐसा मजाक मत कीजिए कि नेहा नाम दुर्लभ है, देखिए एक ढूंढने जाएंगे 100 मिलेंगी। चलिए ये तो ही मजाक की बात। किसी ने लिखा है, वाह बहुत सुरीला गीत हो रहा है सुरीले सफर में, नेहा शब्द से मैं पहली बार ये गीत सुन रही हूँ। और किसी ने लिखा है कि हाँ नेहा जी मैंने ये गाना भी लिखा था, क्या बात है आप सभी ने सही पहचाना, ये अच्छा लग रहा है जानकर। मुझे भी थोड़ा सा यही था, शंका थी कि क्या ये गीत सच में कोई पहचान पाएगा या फिर ये शब्द कोई पहचान पाएगा, मगर आपने पहचान लिया तो ये सुनकर मुझे, ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और हमारे एक साथी है जिन्होंने पहले ही लिखा था, ये कमेंट पहले ही आया था कि कुछ गाने दिमाग में आ रहे हैं, काफी सारे तो लोगों ने लिखे हैं, एक तो शायद वो शब्द नहीं लिखा है, वो शाम कुछ अजीब थी या वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं, एक आपके नाम से गाना है वो शायद किसी ने नहीं लिखा है, सजन संग नेहा काहे लगाए हाँ कि हम पछताएं। तो बिल्कुल ये गीत आपने पहले ही बता दिया था और वो गीत हमने सुनवा भी दिया। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार की आवाज में ये गीत, फिल्म का नाम दूर गगन की छांव में, गीत और संगीत किशोर कुमार का।

जी हाँ, तो ये शब्द था गगन, और आप सभी ने जिन्होंने भी इस गीत को लिखा है उन्होंने बिल्कुल सही पहचाना है। हमारे एक साथी लिखते हैं, फुर्सत मिले तो अपनी कमियों को गुदगुदा देना, बेबाक परिंदा बनकर जरा सा मुस्कुरा देना, सफर तो जारी है इस हर पल हर मोड़ पर, कभी खुद को भी उस सुरीले गगन का पता देना। तो ये था हमारा शब्द गगन। और साथियों, आपने किसी ने लिखा है कि वाह नेहा जी, गाने में भी आपने अपना नाम ढूंढ लिया। हाँ जी, ढूंढ लिया, इतना कॉमन सा नाम है। फिर एक साथी ने लिखा है कि नाम दुर्लभ तो नहीं है पर गीत बिल्कुल दुर्लभ है। जी हाँ, ये गीत दुर्लभ है या शायद कम सुनने में आता है। और सच बताऊं तो ये गीत मैंने भी पहली बार ही सुना, जब मैंने शब्द पर गीत ढूंढने की कोशिश की तो मुझे ये शब्द मिला। एक और गीत है जिसमें नेहा नाम आपको मिलेगा, फिर कभी जब सुरीले सफर में आपसे मुलाकात होगी तो उस गीत को शामिल किया जाएगा। देखिए, हिंट दे दी है, अगली बार ढूंढने की पूरी जिम्मेदारी श्रोता वर्ग की रहेगी। चलिए, अब इस सुरीले सफर कार्यक्रम से नेहा अगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

दोस्तों त्रिवेणी में आज गिनती की बात। दोस्तों यूं तो हमारे जन्म से ही जीवन की गिनती शुरू हो जाती है। 365 दिन हुए नहीं कि हम अपना पहला जन्मदिन मनाते हैं, और साल दर साल जन्म दिवस मनाते हुए जिंदगी के सालों की गिनती जारी रहती है। मगर हमारे दिमाग में गिनती का प्रवेश तब होता है जब हमें पाठशाला में दाखिला मिलता है।

पहले स्कूल, स्कूल के बाद यूनिवर्सिटी, और फिर उसके बाद भी चाहे हम किसी की नौकरी करें या अपना व्यवसाय करें। 1, 2, 3, 4 की ये गिनती, इन संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुणा करना या भाग देना हमारे जिंदगी का अहम हिस्सा बन जाता है। अब कॉपी किताबों से निकलकर ये संख्याएं हमारे जीवन में व्याप्त हो जाती हैं, इतनी कि आपस में लड़ पड़ती हैं।

जीवन में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, रिश्तों की और दोस्तों की संख्या बढ़ती जाती है। अब रिश्तों की संख्या को सीमित रखा जा सकता है, यानी परिवार कितना बड़ा हो इसका नियोजन किया जा सकता है, मगर दोस्ती का नियोजन कभी ना करें। दोस्तों की संख्या बढ़ती रहे। जिस दिन हमारा जन्म हुआ उसे हम जीवन का पहला दिन मानते हैं, परंतु दिन ब दिन, साल दर साल, जन्मदिन मनाते मनाते कई वर्षों बाद ये एहसास होता है कि असल में ये उल्टी गिनती चल रही है। कब 5, 4, 3, 2, 1 के बाद शून्य होगा कोई नहीं जानता। इसलिए अच्छे कर्म करें, दूसरों के लिए भी जिए, दोस्तों की संख्या बढ़ाएं, मुश्किलों को घटाते चलें, खुशियों को जोड़ते जाएं, गुजरते दिनों के साथ अपना हर पल रंगीन बनाएं।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपने पसंद के गाने।
3: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम

0: सुनना न भूलें प्रतिदिन सुबह और शाम 6:45 पर विविध भारती का कार्यक्रम संगीत सरिता।
1: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सोमनाथ मंदिर अमृत महोत्सव भारत के दृष्टिकोण को आने वाले 1000 वर्ष तक प्रेरित करेगा। उन्होंने मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर महापूजा की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करने की घोषणा की। राज्य में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का भी शुभारंभ। केंद्र ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के 1 जुलाई से क्रियान्वयन की अधिसूचना जारी की। एसबीआई के शोध के अनुसार वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। अगले वित्त वर्ष में 6.6% की वृद्धि का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत

0: आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि ये आने वाले 1000 वर्ष तक देश की प्रेरणा बनेगा।
1: मैं यहाँ देख रहा हूँ विनाश में सृजन के संकल्प को, जिसे सोमनाथ ने चरितार्थ किया है। मैं यहाँ देख रहा हूँ असत्य पर सत्य की विजय को, जिसे प्रभाष पाटन ने बार बार जिया है। मैं यहाँ देख रहा हूँ हजारों वर्षों की आध्यात्मिक चेतना को, जिसने मानव मात्र के कल्याण की सीख समूचे विश्व को दी है। मैं यहाँ देख रहा हूँ भारत के उस अविनाशी स्वरूप को, जिसे सदियों के कुत्सित प्रयास भी न मिटा सके न हरा सके।
0: गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र तभी लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है जब वो अपनी जड़ों से जुड़ा रहे।
1: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि 11 मई 1998 को 3 परमाणु परीक्षण किए गए थे, जिनके माध्यम से देश के वैज्ञानिकों ने भारत की क्षमताओं का प्रदर्शन पूरी दुनिया के सामने किया।
1: दुनिया भर की शक्तियां भारत को दबोचने के लिए मैदान में उतरी, अनेक प्रकार के बंधन लग गए। उस समय पूरी दुनिया का दबाव भारत पर था, लेकिन अटल जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने दिखाया था कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, दुनिया की कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने सोमनाथ महादेव मंदिर में विशेष महापूजा की। उन्होंने सोमनाथ मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक भी किया। मंदिर के इतिहास में पहली बार शिखर पर 11 तीर्थस्थलों से लाए गए पवित्र जल से जलाभिषेक किया गया। श्री मोदी ध्वजारोहण समारोह में भी शामिल हुए। इस बीच वायुसेना ने एयर शो किया, जिसमें सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम ने सोमनाथ के ऊपर मनमोहक करतब दिखाए। हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा की गई। इसके बाद श्री मोदी ने विशेष प्रदर्शनी का अवलोकन किया। श्री मोदी ने हमीरजी गोहिल सर्कल तक रोड शो भी किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान उत्सव के अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि ये उत्सव भारत की शाश्वत ऊर्जा का उत्सव है और सोमनाथ मंदिर भारत की आध्यात्मिक चेतना और आस्था का सशक्त प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर की दृढ़ता और शाश्वत सभ्यतागत महत्व को उजागर करने वाले संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के लेख को साझा किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ एक मंदिर से अधिक देश के मजबूत मनोबल का प्रमाण है। अपने लेख में श्री शेखावत ने मंदिर के इतिहास को समकालीन भारत के साथ जोड़ते हुए लिखा है कि सोमनाथ की भावना 21वीं सदी के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है। श्री शेखावत ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत वर्ष भर चलने वाले राष्ट्रीय आयोजनों का उल्लेख किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कहा कि राज्य सरकार ने बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को जमीन हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में नई सरकार गठित होने के बाद आज हुई मंत्रिमंडल की पहली बैठक में यह निर्णय लिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की पिछली सरकार ने घुसपैठ को बढ़ावा देने के लिए जमीन रोक रखी थी।
2: आज पहले कैबिनेट में हम लोग बीएसएफ को लैंड ट्रांसफर करने का डिसीजन ले लिया है। लैंड ट्रांसफर आज से शुरू होगा। पहले कैबिनेट ये आने वाला 45 डेज के अंदर पूरा के पूरा जमीन एमएचए को ट्रांसफर करेगा, बीएसएफ फेंसिंग पूरा कर देगा और इल्लीगल इन्फिल्ट्रेटर्स का जो हमारी प्रॉब्लम चल रहा है ये भी कुछ दिन के अंदर रिजोल्व हो जाएगा।
0: श्री अधिकारी ने राज्य में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना और कई अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन की

0: घोषणा की। राज्य को अब आधिकारिक तौर पर आयुष्मान भारत योजना में शामिल कर लिया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ भी प्राप्त किया जा सकेगा। श्री अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देश तत्काल लागू किए जा रहे हैं। मंत्रिमंडल ने चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिए गए वचन के अनुसार विद्यालय की नौकरी के आवेदकों के लिए उम्र सीमा में 5 वर्ष का विस्तार करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। तमिलनाडु विधानसभा में आज 100 से अधिक नवनिर्वाचित सदस्यों ने शपथ ली। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय और कैबिनेट सदस्यों, प्रतिपक्ष नेता उदयनिधि स्टालिन, पूर्व मुख्यमंत्रियों इडापड्डी के पलनीसामी तथा ओ पन्नीरसेल्वम ने भी शपथ ली। इसके अलावा प्रमुख सदस्यों प्रेमलता, विजयकांत, सौम्या, अंबुमणि और गठबंधन के नेताओं ने भी शपथ ली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के क्रियान्वयन के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। यह अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। देश भर में नए ढांचे के क्रियान्वयन के लिए मौजूदा वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। एक रिपोर्ट।
1: विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इसके अलावा यह अधिनियम समय पर मजदूरी के साथ साथ पारदर्शी और जवाबदेही भुगतान पर जोर देता है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने, रोजगार के नए अवसर पैदा करने और गांव के समग्र और सतत विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: महिला श्रमिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम कार्यस्थलों पर बच्चों की देखभाल के लिए एक महत्वपूर्ण प्रावधान करता है। 5 वर्ष से कम उम्र के 5 या अधिक बच्चों की उपस्थिति में उनकी देखभाल के लिए एक महिला श्रमिक को नियुक्त किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच राष्ट्र को सशक्त बनाने में देशवासियों को साझेदार बनने का आह्वान किया है। हैदराबाद में कल एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने राष्ट्र से 7 अपील की। उन्होंने नागरिकों से सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कार पोलिंग के जरिए आयातित ईंधन के उपभोग को कम करके विदेशी मुद्रा भंडार को संरक्षित करने में मदद करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 1 वर्ष के लिए विदेश यात्रा टालने जैसे विवेकपूर्ण खर्च पर दोबारा सोचने का आग्रह किया। उन्होंने 1 वर्ष के लिए विदेशों में शादी कार्यक्रम और अत्यधिक सोने की खरीदारी न करने का आग्रह भी किया। वोकल फॉर लोकल आंदोलन का नारा बुलंद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आत्मनिर्भरता और जैविक कृषि भारत के लिए आवश्यक है।
2: भारत सरकार खेतों में डीजल पंप की जगह सोलर पंप की योजना चला रही है। मैं कोविड काल में भी आग्रह करता था कि हम स्थानीय चीजें खरीदें, वोकल फॉर लोकल के मंत्र को लेकर चले। हम मेड इन इंडिया चीजें खरीदकर भी विदेशी मुद्रा बचा सकते हैं और हमारे देश में स्थानीय उत्पादन की कोई कमी नहीं है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज पश्चिम एशिया की स्थिति की निगरानी करने के लिए गठित अनौपचारिक अधिकार प्राप्त मंत्री समूह की एक बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में एक क्षेत्र की उभरती स्थिति की समीक्षा की गई। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मौजूदा वैश्विक अनिश्चितताओं को देखते हुए नागरिकों और कारोबारियों से विदेशी मुद्रा की आवश्यकता वाली वस्तुओं पर होने वाले खर्च को कम करने का आग्रह किया है। आज नई दिल्ली में आयोजित सीआईआई के वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष अब भी जारी है और शांति की स्थिति अभी दूर है। देश के लिए आर्थिक मोर्चे पर जिम्मेदारी से काम करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नागरिकों को अपने दैनिक जीवन में उन क्षेत्रों की पहचान करनी चाहिए जहां विदेशी मुद्रा का खर्च कम से कम किया जा सके।
3: हमारे प्रधानमंत्री ने हम सभी नागरिकों से उन सभी

0: चीजों पर होने वाले खर्च को कम करने का आग्रह किया है जिनके लिए विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। साथ ही हमें अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करनी भी होगी। ये दोनों बातें एक साथ होनी चाहिए। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम दिए गए आह्वान को गंभीरता से लें।
1: टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर्स कॉल टू द नेशन।
2: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बॉम्बे में एकीकृत कार्बन कैप्चर और उपयोग संयंत्र का उद्घाटन किया। उन्होंने भूवैज्ञानिक कार्बन डाइऑक्साइड पृथक्करण के लिए वैज्ञानिक ड्रिलिंग का भी शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने इस गंभीर वैश्विक समस्या का समाधान विकसित करने के लिए IIT बॉम्बे को बधाई दी और घोषणा की कि इस परियोजना को अगले महीने फ्रांस में होने वाले भारत इनोवेट्स 2026 में प्रस्तुत किया जाएगा। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि वाइस एडमिरल AN प्रमोद ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारतीय विमानों और हवाई अड्डों को निशाना बनाया था। पत्र सूचना कार्यालय PIB की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने श्योपुर जिले में कुनो राष्ट्रीय उद्यान के खुले जंगल में आज दो मादा चीता को छोड़ा। ये दोनों चीते इस वर्ष फरवरी में बोत्सवाना से भारत लाए गए 9 चीतों में से हैं। उन्हें क्वारंटीन और अनुकूलन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद जंगल में छोड़ा गया। इनके आने से देश में चीतों की कुल संख्या 57 हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। वैश्विक उथल पुथल के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा आज जारी रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में अर्थव्यवस्था में 6.6% की वृद्धि होने का अनुमान है। रिपोर्ट में पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान लगभग 7.2% लगाया गया है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत ने विकास की मजबूत गति को बनाए रखा है। IPL क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे धर्मशाला में खेला जाएगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरे कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सोमनाथ मंदिर अमृत महोत्सव भारत के दृष्टिकोण को आने वाले 1000 वर्ष तक प्रेरित करेगा। उन्होंने मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर महापूजा की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सीमा पर बाड़ लगाने के लिए BSF को भूमि हस्तांतरित करने की घोषणा की। राज्य में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का भी शुभारंभ। केंद्र ने विकसित भारत GRAMJI अधिनियम के 1 जुलाई से क्रियान्वयन की अधिसूचना जारी की। SBI के शोध के अनुसार वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आइए आगाज करते हैं गर्लफ्रेंड फिल्म के इस गीत के साथ जिसे गाया है किशोर कुमार और सुधा मल्होत्रा ने। इस गीत को लिखा है साहिर लुधियानवी ने, बोल साहिर लुधियानवी के और संगीत है हेमंत कुमार का।

0: अब क्या कहना है।
1: अब सुनिए आशिक की फिल्म का गीत, मुकेश की आवाज में शैलेंद्र की रचना और शंकर जयकिशन का संगीत।

केएल परदेसी का लिखा ये गीत सुनिए, जिसकी लय बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने। गीत को आवाज दी है शंकर दास, गीता दत्त और साथियों ने। फिल्म का नाम दिल भी तेरा हम भी तेरे।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है, तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।

0: प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल लगवे।
0: तेरा जवाब नहीं।
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
0: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
0: सदा रही है, सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
2: असली नकली इस फिल्म का गीत सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में। शब्द रचना हसरत जयपुरी की, शंकर जयकिशन ने इसकी धुन बनाई है।

धनीराम का संगीतबद्ध किया ये गीत अब सुनिए, शेरोज श्रीवास्तव के लिखा हुआ भी है ये गीत, आवाजें हैं मोहम्मद रफी, सविता बैनर्जी और सीता की, फिल्म का नाम बाजे कुंगरू।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: चाइनाटाउन फिल्म का गीत सुनिए मोहम्मद रफी और साथियों की आवाज में। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा है, रवि की धुन। और सदाबहार नगमे इस कार्यक्रम से इस गीत के साथ नेहा आगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

जलने कहो क्यों जले, बैठ भी जाओ मेहरबान बल्ले बल्ले। उठ के मिस्टर क्यों चले, प्यार पे मेरे कहो क्यों जले, बैठ भी जाओ मेहरबान, दुआ करो मिले तुम्हें।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत म्यूजिक के साथ शुरू हो गए। ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जाने

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सखी सहेली बस थोड़ी ही देर में।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी और
2: मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार।
1: और मंजरी क्या हाल है?
2: हम भी ठीक हैं और हम उम्मीद रखते हैं कि हमारे सभी सखी और सखियां साथी लोग अपने अपने घरों में सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। और भाई रेडियो सेट के करीब तो वो सुबह से होते हैं क्योंकि रेडियो विद भारती तो वो बहुत सुनते हैं शौक से।
1: बिल्कुल।
2: और खासकर सखी सहेली के लिए सब एक साथ जुड़ जाते हैं कि आज कौन आ रहा है, कौन क्या विषय लेकर आ रहा है।
1: भाई कोई भी आए लेकिन हर एक आकर जो है हमारे सभी सखियों और सखाओं से उतना ही प्यार करता है जितने आप और हम करते हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और देखो मंजरी, गर्मी का मौसम चल रहा है, इन दिनों हम गर्मी को लेकर बहुत चिंतित हैं। जो हमारे पशु हैं, पालतू पशु हैं या आवारा पशु हैं, उनका भी हमें इस गर्मी में बहुत ध्यान रखना है, पता है ना आपको?
2: बिल्कुल बिल्कुल। जो हमारे पशु हैं उनके लिए, आप जो घर में पालते हैं तो उनके लिए बाकायदा कुछ लोग तो शेड बनाते हैं और जो नहीं बनाते तो उनके पेड़ के नीचे बंधी रहती है। आपके पास सुविधा है, आप कर सकते हैं मैनेज, तो आप एक थोड़ा सा छप्पर जैसा कुछ डाल दीजिए जिसके अंदर वो पशु रह सके। और उनका खाना तो आप समय पर आप वो सब देते ही।
1: बिल्कुल।
2: नहलाना जिसे कहते हैं, अगर तालाब है तो आप उसमें ले जाके पशु को नहला सकते हैं। तो कुछ लोग नहलाते भी, ऐसा नहीं, हमने देखा है कई बार गांव में जब जाते हैं तो देखते हैं कि तालाब में बहुत सारी भैंसे एक साथ नहा रही हैं। गर्मी इतनी चिलचिलाती, धूप होती, लेकिन वो पूरी बॉडी उसमें ठंडी
1: ठंडी रहती
2: है, तभी निकलती है। तो हमसे जितना हो सके, हम लोगों से उतना हमें उन पशुओं के लिए भी करना चाहिए क्योंकि वो हमारे, हम जब देते तभी वो खाते हैं।
1: नहीं बिल्कुल, ये बात भी है, लेकिन एक जो संवेदनशीलता, जो एक मानवीय रिश्ता होता है, एक संवेदना का जो रिश्ता है, वो हर कण कण में व्याप्त हर कीट पतंगे के लिए हमारे मन में होना चाहिए। गर्मी का मौसम है, गांव में तो इस तरह के छपरा बना दिया जाता है जहां भैंसे हैं, गाय हैं, बकरियां हैं, जो भी आपके पालतू पशु हैं उन पर ध्यान दिया जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है मंजरी, जगह के अभाव के कारण हमारे कुछ साथी लोग क्या करते हैं, पशुओं को खुला छोड़ देते हैं और पशु दिन भर गर्मी में कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं, कुछ न कुछ खाते रहते हैं और ऐसे समय में हमारे द्वारा फेंकी गई पॉलीथीन को भी वो चबाते रहते हैं। इस गर्मी के मौसम में अगर आपने गौर से देखा होगा तो उनके मुंह से फिर झाग आ रहे होते हैं और यही पॉलीथीन उनके पेट में जाकर चिपक जाती है जो उनकी बीमारी का भी, अस्वस्थता का कारण, यहाँ तक कि मौत का कारण भी बन जाती है।
2: तो कहना चाहिए कि हमें इन चीजों पर भी ध्यान देना है कि हम स्वच्छता के ऊपर भी नजर रखें कि पॉलीथीन वगैरह, प्लास्टिक से बनी चीजों को हम डस्टबिन में ही डालें या कचरा जहां डालते वहां डालिए, जिससे हमारे पशु उनको ना खा सकें। और पशुओं का बहुत ख्याल रखिए क्योंकि हम जितना उनसे प्यार करते हैं वो भी हमसे उतना ही प्यार करते हैं। और देखिए मंदाकिनी जी, आज जो हमने विषय लिए उसमें है बिहार के व्यंजन, जिसमें दाल पीठा और सत्तू का शरबत। हमारे साथियों ने भी बहुत सारी रेसिपी लिखकर दी
1: है,
2: तो हम पढ़ेंगे, आनंद लेंगे। फिलहाल तो कुछ बनाएंगे नहीं, ना आपको हम खिलाने वाले हैं। अभी
1: वही हम आपसे पूछने वाले थे कि आप बना के लाई हैं क्या?
2: नहीं नहीं,
1: है ना, तो ये गलत बात है ना,
2: ये अगली बार के लिए, एक बार बताएंगे जब खिलाएंगे, है ना। कथा सुधा में हम कहानी लेकर आए, कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद लो। इसका भाग एक आज हम लोग आपको सुनवाएंगे। और रिश्तों से ज्यादा मित्र करीब, क्या वजह है? तो इसकी वजह आप लिखकर भेजिए हमें संदेश में, और कुछ मीठे खट्टे किस्से भी लिखकर भेजिए। और मंदाकिनी जी, आज है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग एक गीत सुनेंगे।
1: बिल्कुल, सुनते हैं ये गीत।

0: हाँ तो मंजरी गाना तो बहुत सुंदर था, और वैसे तो देखा जाए तो जब हम किसी के साथ चोरी चोरी बंद जाते हैं ना तो यही गाना गुनगुनाते भी हैं।
1: बिल्कुल, और कदम भी तो थिरकने लगते हैं।
0: बिल्कुल,
1: धुन सुनाई देती है, ऐसे मुंह सुनाई देते हैं तो लगता है बस एक बार नाची लो
0: नाची लो, तब तो खैर मन का हाल ही क्या होता होगा ये तो वही जानते हैं जिसके साथ ये होता होगा।
1: जी जी बिल्कुल। तो कथा सुधा में हम आज कहानी सुनाने वाले हैं अपने साथियों को, कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद लो का भाग एक।
0: चलिए तो सुनते हैं कथा सुधा में ये कहानी।
2: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
3: कथा सुधा में आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी, कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद लो। आइए सुनते हैं इस कहानी का पहला भाग।
4: उन दिनों दूध की तकलीफ थी, कई डेयरी फार्मों की आजमाइश की, आहारों का इम्तिहान लिया, कोई नतीजा नहीं निकला। दो चार दिन तो दूध अच्छा मिलता, फिर मिलावट शुरू हो जाती। कभी शिकायत होती कि दूध फट गया, कभी उसमें से नागवार बू आने लगी, कभी मक्खन के रेजे निकलते। आखिर एक दिन एक दोस्त से मैंने कहा, भाई आओ साझे में एक गाय ले ले, तुम्हें भी दूध का आराम होगा, मुझे भी लागत आधी आधी, खर्च आधा आधा, दूध भी आधा आधा। दोस्त साहब राजी हो गए। मेरे घर में जगह न थी और गोबर वगैरह से मुझे

0: मुझे नफरत है। उनके मकान में काफी जगह थी, इसलिए प्रस्ताव हुआ कि गाय उन्हीं के घर रहे। इसके बदले में उन्हें गोबर पर एक छत्र अधिकार रहे। वो उसे पूरी आजादी से पाथे, उपेले बनाए, घर लीपें, पड़ोसियों को दें या उसे किसी आयुर्वेदिक उपयोग में लाएं। इकरार करने वाले को इसमें किसी प्रकार की आपत्ति या प्रतिवाद ना होगा और इकरार करने वाला सही होश हवास में इकरार करता है कि वो गोबर पर कभी अपना अधिकार जमाने की कोशिश न करेगा और न किसी को इस्तेमाल करने के लिए आमादा करेगा। दूध आने लगा, रोज रोज की झंझट से मुक्ति मिली। एक हफ्ते तक किसी तरह की शिकायत न पैदा हुई। गरम गरम दूध पीता था और खुश होकर गाता था, रब का शुक्र अदा कर भाई जिसने हमारी गाय बनाई, ताजा दूध पिलाया उसने, लुत्फ हयात चखाया उसने, दूध में भीगी रोटी मेरी उसके करम ने बख्शी सेरी, खुदा की रहमत है मूरत कैसी भोली भाली सूरत, मगर धीरे धीरे यहां पुरानी शिकायतें पैदा होने लगी। यहां तक नौबत पहुंची कि दूध सिर्फ नाम का दूध रह गया। कितना ही उबालो, न कहीं मलाई का पता, न मिठास। पहले तो शिकायत कर लिया करता था, इससे दिल का बुखार निकल जाता था। शिकायत से सुधार ना होता तो दूध बंद कर देता था। अब तो शिकायत का मौका न था, बंद कर देने का जिक्र ही क्या। भिखारी का गुस्सा अपनी जान पर, पियो या नाले में डाल दो। 8 आने रोज का नुस्खा किस्मत में लिखा हुआ। बच्चा दूध को मुंह ना लगाता, पीना तो दूर रहा। आधो आध शक्कर डालकर कुछ दिनों दूध पिलाया तो फोड़े निकलने शुरू हुए और मेरे घर में रोज बमचख मची रहती थी। बीवी नौकर से फरमाती,
1: ये क्या है, इतना खराब दूध? ये दूध ले जाकर उन्हीं के सर पे पटका। हाँ,
0: मैं नौकर को मना करता। वो कहती,
1: अच्छे दोस्त है तुम्हारे, उसे शर्म भी नहीं आती। क्या इतना अहमक है कि इतना भी नहीं समझता कि ये लोग दूध देकर क्या कहेंगे? गाय को अपने घर मंगवा लो, बला से बदबू आएगी, मच्छर होंगे, दूध तो अच्छा मिलेगा ना। रुपए खर्चे हैं तो उसका मजा तो मिलेगा।
0: चड्ढा साहब मेरे पुराने मेहरबान हैं, खासी बेतकल्लुफी है उनसे। ये हरकत उनकी जानकारी में होती हो, ये बात किसी तरह गले के नीचे नहीं उतरती। या तो उनकी बीवी की शरारत है या नौकर की, लेकिन जिक्र कैसे करूं? और फिर उनकी बीवी से भी तो राह रस्म है, कई बार मेरे घर आ चुकी हैं। मेरी बीवी जी भी उनके यहां कई बार मेहमान बनकर जा चुकी हैं। क्या वो यकायक इतनी बेवकूफ हो जाएंगी? सरीहन आंखों में धूल झोंकेंगी और फिर चाहे किसी की शरारत हो, मेरे लिए ये गैर मुमकिन था कि उनसे दूध की खराबी की शिकायत करता। खैरियत तो ये हुई कि 3रे महीने चड्ढा का तबादला हो गया। मैं अकेले गाय न रख सकता था, साझा टूट गया। गाय आधे दामों बेच दी गई। मैंने उस दिन इत्मीनान की सांस ली। आखिर ये सलाह हुई कि एक बकरी रख ली जाए, वो बीच आंगन के कोने में पड़ी रह सकती है। उसे दूहने के लिए न ग्वाले की जरूरत, न उसका गोबर उठाने, नांद धोने, चारा भूसा डालने के लिए किसी की जरूरत। बकरी तो मेरा नौकर भी आसानी से दूह लेगा, थोड़ी सी चोकर डाल दी, चलिए किस्सा तमाम हुआ। फिर बकरी का दूध फायदेमंद भी ज्यादा है, बच्चों के लिए खास तौर पर, जल्दी हजम हो जाता है, न गर्मी करे न सर्दी, स्वास्थ्य वर्धक है। संयोग से मेरे यहां जो पंडित जी मेरे मसौदे नकल करने आया करते थे, इन मामलों में काफी तजुर्बेकार थे। उनसे जिक्र आया तो उन्होंने एक बकरी की ऐसी स्तुति गाई, उसका ऐसा कसीदा पढ़ा कि मैं बिन देखे ही उसका प्रेमी हो गया।
2: अरे साहब, पछाही नस्ल की बकरी है।

0: ऊंचे कद की, बड़े बड़े थन जो जमीन से लगते चलते हैं, बेहद कम खोर लेकिन बेहद दुधार। एक वक्त में 2-2.5 शेर दूध ले लीजिए। अभी पहली बार ही भी आई है, सिर्फ 25 रुपए में आ जाएगी।
1: मुझे दाम कुछ ज्यादा मालूम हुआ, लेकिन पंडित जी पर मुझे एतबार था। फरमाइश कर दी गई और तीसरे दिन बकरी आ पहुंची। मैं देखकर उछल पड़ा। जो जो गुण बताए थे उनसे कुछ ज्यादा ही निकले। एक छोटी सी मिट्टी की नांद मंगवाई गई, चोकर का भी इंतजाम हो गया। शाम को मेरे नौकर ने दूध निकाला तो सचमुच 2.5 शेर। मेरी छोटी पतीली लबालब भर गई थी। अब मुसलो ढोल बजाएंगे, ये मसला इतने दिनों बाद जाकर कहीं हल हुआ। पहले ही ये बात सूझती तो क्यों इतनी परेशानी होती। पंडित जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया। मुझे सवेरे तड़के और शाम को उसकी सींग पकड़ने पड़ते थे, तब आदमी दुह पाता था। लेकिन ये तकलीफ इस दूध के मुकाबले में कुछ न थी। बकरी क्या है, काम धेनु है। बीवी ने सोचा इसे कहीं नजर न लग जाए, इसलिए उसके थन के लिए एक गिलाफ तैयार हुआ। इसकी गर्दन में नीले चीनी के दानों का एक माला पहनाया गया। घर में जो कुछ झूठा बचता देवी जी खुद जाकर उसे खिला आती। लेकिन एक ही हफ्ते में दूध की मात्रा कम होने लगी। जरूर नजर लग गई होगी। बात क्या है, पंडित जी से हाल कहा तो उन्होंने कहा,
0: अरे साहब, देहात की बकरी है, जमींदार की, बेदरेग अनाज खाती थी और सारे दिन बाग में घूमा चरा करती थी। यहां बंधे बंधे दूध कम हो जाए तो ताज्जुब नहीं, इसे जरा टहला दिया कीजिए।
1: लेकिन शहर में बकरी को टहलाए कौन और कहां, इसलिए ये तय हुआ कि बाहर कहीं मकान लिया जाए। वहां बस्ती से जरा निकलकर खेत और बाग हैं, कहार 1-2 घंटे टहला लाया करेगा। झटपट मकान बदला और गौ की मुझे दफ्तर आने जाने में 3 मील का फासला तय करना पड़ता था। लेकिन अच्छा दूध मिले तो मैं इसका दोगुना फासला तय करने को तैयार था। यह मकान खूब खुला हुआ था, मकान के सामने सहन था, जरा और बढ़कर आम और महुए का बाग, बाग से निकलिए तो कछुओं के खेत थे, किसी में आलू किसी में गोभी। एक काछी से तय कर लिया कि रोजाना बकरी के लिए कुछ हरियाली जाया करे, मगर इतनी कोशिश करने पर भी दूध की मात्रा में कुछ खास बढ़त नहीं हुई। 2.5 शेर की जगह मुश्किल से 1 शेर भर दूध निकलता था। लेकिन यह तस्कीन थी कि दूध खालिस है, यही क्या कम है। मैं ये कभी मान ही नहीं सकता कि खिदमतगारी के मुकाबले में बकरी चराना ज्यादा जलील काम है। हमारे देवताओं और नबियों का बहुत सम्मानित वर्ग गल्ले चराया करते थे। कृष्ण जी भी गाय चराते थे। कौन कह सकता है कि उस गल्ले में बकरियां न रही होंगी। लेकिन आदमी रूढ़ियों का दास है। जो कुछ बुजुर्गों ने नहीं किया उसे वो कैसे करे। नए रास्ते पर चलने के लिए जिस संकल्प और दृढ़ आस्था की जरूरत है वो हर एक में तो होती नहीं। धोबी आपके गंदे कपड़े धो लेगा, लेकिन आपके दरवाजे पर झाड़ू लगाने में अपनी हतक समझता है। मेरे खिदमतगार को बकरी लेकर बाग में जाना बुरा मालूम होता था। घर से तो ले जाए, लेकिन बाग में उसे छोड़कर खुद किसी पेड़ के नीचे सो जाता। बकरियां पत्तियां चर लेती थी, मगर एक दिन उसके जी में आया कि जरा बाग से निकलकर खेतों की सैर करें। यूं बहुत ही सभ्य और सुसंस्कृत बकरी थी, उसके चेहरे से गंभीरता झलकती थी। लेकिन बाग और खेत में घुस गई, आजादी नहीं है इसे वो शायद न समझ सकी। एक रोज किसी खेत में घुस गई और गोभी की कई क्यारियां साफ कर गई। काछी ने देखा तो उसके कान पकड़ लिए और मेरे पास लाकर बोला,
2: बाबूजी, इस तरह आपकी बकरी हमारे खेत चरेगी तो हम तो तबाह हो जाएंगे। आपको बकरी रखने का शौक है तो इसे बांध के रखिए। आज तो हमने आपका लिहाज

0: किया, लेकिन फिर हमारे खेत में गई तो हम या तो उसकी टांग तोड़ देंगे तो कांदी हाउस भेज देंगे।
1: अभी वो अपना भाषण खत्म न कर पाया था कि उसकी बीवी आ पहुंची और उसने इसी विचार को और भी जोरदार शब्दों में अदा किया।
2: अरे मैं हाँ हाँ करती रही, मगर ई बकरिया तो भैया का बताएं हमारे खेत में ही घुस गई, सारा का सारा खेत हमारा चौपट कर दिया। इसके पेट में तो भैया भवनी बैठी है, यहाँ कोई तुम्हारा दबेल नहीं है। हाँ हकीम होंगे, अपने घर के होंगे। देखो बाबू, अगर बकरी रखना है तो बांध कर रखो, बताए देते हैं, नहीं तो इसका गला ऐंठ दूंगी।
1: मैं भीगी बिल्ली बना खड़ा था, जितनी फटकार आज सहनी पड़ी उतनी जिंदगी में कभी नहीं सही, और जिस धीरज से आज काम लिया, अगर उसे दूसरे मौकों पर काम लिया होता तो आज आदमी होता। कोई जवाब नहीं सूझता था, बस यही जी चाहता था कि बकरी का गला घोंट दूं और खिदमतगार को 150 हंटर जमाऊं। मेरी खामोशी से वो औरत भी शेर होती जाती थी। आज मुझे मालूम हुआ कि किन्हीं किन्हीं मौकों पर खामोशी नुकसानदेह साबित होती है। खैर, मेरी बीवी ने घर में ये गुलगपाड़ा सुना तो दरवाजे पर आ गई तो हेकड़ी से बोली,
3: ये ले जा तू कानी हौज पहुंचा दे, और क्या करेगी, नाहक टर्र टर्र कर रही है घंटे भर से। जानवर ही है, एक दिन खुल गई तो क्या उसकी जान ले लेगी। और हाँ, खबरदार जो एक बात भी मुंह से निकाली, क्यों नहीं खेत के चारों तरफ झाड़ लगा देती, कांटों से रूंध दे। अपनी गलती तो मानती नहीं, ऊपर से लड़ने चली आई है। मैं अभी पुलिस में इत्तला कर दूं तो बंधे बंधे फिरोगे।
1: बात कहने की इस शासनपूर्ण शैली ने उन दोनों को ठंडा कर दिया, लेकिन उनके चले जाने के बाद मैंने देवी जी की खूब खबर ली। गरीबों का नुकसान भी करती हो, ऊपर से रोब जमाती हो, इसी का नाम इंसाफ है। देवी जी ने गर्वपूर्वक उत्तर दिया,
3: मेरा एहसान तो मानोगे ना कि शैतानों को कितनी आसानी से मैंने भगा दिया। लगे उल्टे डांटने, गवारों को राह बतलाने का सख्ती के सिवा दूसरा कोई तरीका ही नहीं है। सज्जनता या उदारता उनकी समझ में ही नहीं आती है, उसे ये लोग कमजोरी समझते हैं, और कमजोर को भला कौन नहीं दबाना चाहता।
1: खिदमतगार से जवाब तलब किया तो उसने साफ कह दिया,
4: अरे साहब, बकरी चराना मेरा काम नहीं है।
1: मैंने कहा, तुमसे बकरी चराने को कौन कहता है, जरा उसे देखते रहा करो कि किसी खेत में ना जाए, इतना भी तुमसे नहीं हो सकता।
4: देखिए, मैं बकरी नहीं चरा सकता साहब, कोई दूसरा आदमी रख लीजिए।
1: आखिर मैंने खुद शाम को उसे बाग में चरा लाने का फैसला किया। इतने जरा से काम के लिए एक नया आदमी रखना मेरी हैसियत से बाहर था, और अपने इस नौकर को जवाब भी नहीं देना चाहता था जिसने कई साल तक वफादारी से मेरी सेवा की थी और ईमानदार था। दूसरे दिन मैं दफ्तर से जरा जल्द चला आया और चटपट बकरी को लेकर बाग में जा पहुंचा। जाड़ों के दिन थे, ठंडी हवा चल रही थी, पेड़ों के नीचे सूखी पत्तियां गिरी हुई थी। बकरी एक पल में वहां जा पहुंची, मेरे दलेल हो रही थी, उसके पीछे पीछे दौड़ता फिरता था। दफ्तर से लौटकर जरा आराम किया करता था, आज ये कवायद करनी पड़ी, थक गया, मगर मेहनत सफल हो गई। आज बकरी ने कुछ ज्यादा दूध दिया। ये ख्याल आया, अगर सूखी पत्तियां खाने से दूध की मात्रा बढ़ गई तो यकीनन हरी पत्तियां खिलाई जाएं तो इससे कहीं बेहतर नतीजा निकले। लेकिन हरी पत्तियां आए कहां से, पेड़ों से तोड़ूं तो बाग का मालिक जरूर एतराज करेगा, कीमत देकर हरी पत्तियां मिल न सकती थी। सोचा, क्यों एक बार बांस के लग्गे से पत्तियां तोड़े, मालिक ने शोर मचाया तो उससे आरजू मिन्नत कर लेंगे, राजी हो गया तो खैर, नहीं तो देखी जाएगी। थोड़ी सी पत्तियां तोड़ लेने से पेड़ का क्या बिगड़ जाएगा। चुनाचे एक पड़ोसी से एक पतला लंबा बांस मांग लाया, उसमें एक अंकुश बांधा।

0: और शाम को बकरी को साथ लेकर पत्तियां तोड़ने लगा। चोर आंखों से इधर उधर देखता जाता था, कहीं मालिक तो नहीं आ रहा है। अचानक वही काछी एक तरफ से आ निकला और मुझे पत्तियां तोड़ते देख कर बोला,
1: अरे ये क्या करते हो बाबूजी? आपके हाथ में ये लग्गा अच्छा नहीं लगता। बकरी पालना हम गरीबों का काम है कि आप जैसे शरीफों का? लाइए मैं काट देता हूं।
0: मैं कट गया, कुछ जवाब न सूझा। इसमें क्या बुराई है, अपने हाथ से अपना काम करने में क्या शर्म वगैरह। जवाब कुछ हल्के बेहकीकत बनावटी मालूम हुए। सफेद पोशी के आत्मगौरव ने जबान बंद कर दी। काछी ने पास आकर मेरे हाथ से लग्गा ले लिया और देखते देखते हरी पत्तियों का ढेर लगा दिया और पूछा,
1: ये पत्तियां कहाँ रख जाऊं?
0: मैंने झेपते हुए कहा, तुम रहने दो, मैं उठा कर ले जाऊंगा। उसने थोड़ी सी पत्तियां बगल में उठा ली और बोला,
1: भला आप क्या पत्तियां रखने जाएंगे, चलिए मैं रख देता हूं।
0: मैंने बरामदे में पत्तियां रखवा ली। उसी पेड़ के नीचे उसकी चौगुनी पत्तियां पड़ी हुई थी। काछी ने उनका एक गट्ठा बनाया और सर पर लाद कर चला गया। अब मुझे मालूम हुआ ये देहाती कितने चालाक होते हैं, कोई बात मतलब से खाली नहीं।
2: अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद लो का पहला भाग। पात्र परिचय इस प्रकार है, सूत्रधार जी श्याम, बीवी ममता सिंह, पंडित जी दीपक केसावलेकर, काछी जयंत पात्रिकर, काछी की बीवी चंचल वर्मा, नौकर दीपक केसावलेकर, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। कथा सुधा में सुनिए इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग अगले सोमवार।
3: तो मंदाकिनी जी, अभी हमारे सभी साथियों ने सुनी ये कहानी, उसी पर एक संदेश भी लिखकर भेजा है कि मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध व्यंग कहानी कोई दुख न हो तो बकरी खरीद लो में लेखक दूध की मिलावट से परेशान होकर घर में बकरी पालने की सलाह पर प्रतिक्रिया देते हैं। ये कहानी घरेलू सुख सुविधा, पशुपालन की जिम्मेदारी और पड़ोसियों के साथ होने वाले विवादों पर कटाक्ष करती है। कहानी का सार, दूध की समस्या से तंग आकर लेखक एक दोस्त के साथ मिलकर गाय खरीदते हैं, लेकिन गोबर और साफ सफाई की समस्याओं के कारण दोस्त के घर गाय रहती है और फिर दूध में मिलावट शुरू हो जाती है। बकरी का विचार अंत में, जब गाय का विकल्प काम नहीं करता तो लेखक बकरी खरीदने का फैसला करते हैं। ये सोच करके ये आसान होगा, परिणाम बकरी से सभी भी परेशानी कम नहीं होती क्योंकि वो खेत में घुसकर नुकसान करती है जिससे पड़ोसियों से विवाद होता है। अच्छी सी समीक्षा लिखकर भेजी है इन्होंने।
4: बिल्कुल सही कहा। और देखिए वही जो थोड़ी देर पहले हम कह रहे थे कि लोग अपने पालतू पशुओं को खुला छोड़ देते हैं और वो खुला जो पशु है जाकर कहीं ना कहीं कोई ना कोई नुकसान कर देते हैं, तो आपस में लड़ाई झगड़ा होने की भी संभावना बनी रहती है। इसलिए अपने पशुओं को हमें बांध कर रखना चाहिए। और अभी वक्त है मंजरी एक अंतराल का।

0: इस अंतराल के बाद सभी सुनने वालों का फिर से स्वागत है।
1: और हमारे साथियों ने भी बहुत सारे संदेश दिवस के ऊपर लिखकर भेजे हैं। एक साथी लिखते हैं कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के प्रमुख कारण हैं।

0: नहीं, यहाँ से लिखा है इन्होंने कि भारत में हर साल 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, जो 11 मई 1998 को पोखरण में हुए सफल परमाणु परीक्षण ऑपरेशन शक्ति की याद दिलाता है। ये दिन देश के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और तकनीकी उपलब्धियों को सम्मानित करने और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के प्रमुख कारण है कि पोखरण 2 परमाणु परीक्षण 11 मई 1998 को भारत ने राजस्थान के पोखरण में 3 सफल परमाणु बम परीक्षण किए, जिसके बाद देश परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बन गया। वैज्ञानिक उपलब्धियों का जश्न, ये दिन देश की आत्मनिर्भरता और विज्ञान के क्षेत्र में हुई प्रगति का सम्मान करता है। स्वदेशी तकनीकी, इस दिन भारत में पहले स्वदेशी विमान हंसा 3 का परीक्षण और त्रिशूल मिसाइल का सफल परीक्षण भी हुआ था। पूर्व पीएम वाजपेयी का योगदान, इन्होंने लिखा है, तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देश की तकनीकी क्रांति को रेखांकित करने के लिए इस दिन को घोषित किया था।
1: बिल्कुल सही लिखा और आपने बहुत ही डिटेल में अपनी बात कही है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि भारत में हर साल 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है, जो 11 मई 1998 को पोखरण में हुए सफल परमाणु परीक्षण ऑपरेशन शक्ति की हमें याद दिलाता है। ये दिन देश के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और तकनीकी उपलब्धियों को सम्मानित करने और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के प्रमुख कारण उन्होंने बताए हैं कि पोखरण यानी परमाणु परीक्षण 11 मई 1998 को भारत ने राजस्थान के पोखरण में 3 सफल परमाणु बम परीक्षण किए, जिसके बाद देश परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बन गया। और इसके साथ ही ये दिन देश की आत्मनिर्भरता और विज्ञान के क्षेत्र में भी प्रगति का भी दिन है। और जैसा कि अभी आपने बताया था कि हंसा 3 का परीक्षण और त्रिशूल मिसाइल का सफल परीक्षण भी इसी दिन हुआ था
0: जी। और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2026 की थीम है यंत्र नई प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और त्वरण को आगे बढ़ाने का युगांतर है। ये दिन जो 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षणों की याद दिलाता है, यानी कि जो हमारी तकनीक है वो कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है और इसके पीछे वैज्ञानिक, इंजीनियर जो भी योगदान देते हैं, तो उनको एक कहना चाहिए एक सम्मान देने के दिवस मनाया जाता है। और वैज्ञानिक नवाचार को बढ़ावा देने और भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता को याद करने के लिए ये दिन समर्पित है। तो इस दिन की सभी को हार्दिक बधाई देते हैं।
1: बिल्कुल। और अब सुन लेते हैं गीत

0: देखिए, हम बात करने वाले हैं रिश्तों से ज्यादा मित्र करीब क्या वजह है। तो ये केवल आज के समय की बात नहीं मंदाकिनी जी, बल्कि इंसानी भावनाओं और व्यवहार से जुड़ा एक गहरा विषय है। परिवार और रिश्तेदार हमारे जीवन की नींव होते हैं, लेकिन कई बार मित्र हमारे मन के अधिक निकट आ जाते हैं। इसके पीछे कई भावनात्मक, सामाजिक और मानसिक कारण तो होते ही हैं, क्योंकि हमारी जो सबसे पहली वजह होती है कि मन की आजादी। हम अपने दोस्तों के साथ खुलकर मन की बात करते हैं, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि वो हमारी बात को इधर उधर नहीं पहुंचाएगा। और ये भी, मित्र बनाने से पहले हमें ये भी देखना पड़ता है कि हमारा मित्र वो सही है कि नहीं। हमने जो अपने दिल की बात कही है वो किसी और को तो नहीं बता रहा है। तो मित्र वही अच्छा होता है जो दूसरे मित्र की बात को अपने तक रखे। और रिश्तों में क्या होता है, रिश्तों में जैसे हमने कोई बात बताई तो वो बस एक दूसरे को बताने लग जाते हैं, तो बात एक घर से ना होकर कई घरों में पहुंच जाती परिवार में। तो इसीलिए यही वजह होती है कि हम मित्र के बहुत करीब होते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। लेकिन क्या है, जो साइकोलॉजिकली हम जब जुड़ते हैं ना, तो हम दोस्ती में ज्यादा फ्रीडम महसूस करते हैं, है ना। रिश्तों में एक बंधन होता है, जब हम किसी रिश्ते में बंधे होते हैं या रिश्तेदारी में निभा रहे होते हैं, वहां एक बंधन है, सीमाएं हैं, बहुत सी चीजें हैं। लेकिन दोस्ती में कोई सीमा नहीं होती है। आप खुले तरीके से अपनी बात कह सुन सकते हैं, अपने मन को हल्का कर लेते हैं, और दोस्ती होती भी ऐसी है। आपने देखा है अपने कॉलेज के स्टूडेंट, हमारे स्कूल की जो सहेलियां थी, हम उनसे क्या क्या बातें कर जाते थे, उनकी क्या क्या बातें सुन लेते थे,
0: उनकी डांट भी हम सुन लेते थे, उनकी राय भी हम सुन लेते थे, और रूठना मनाना तो चलता ही था। रिश्तों में क्या होता है, जब कहते हैं ना मन में खटास आ जाती है, दोस्ती में भी खटास
1: आती है, लेकिन वो दोस्ती नहीं होती। मैं समझती हूँ अगर दोस्ती में खटास आती है तो कहीं स्वार्थ आ जाता है, तब दोस्ती में खटास आती है, वरना तो दोस्त हमेशा से दोस्ती रहते हैं। जहाँ दोस्ती टूटी नहीं, दोस्त दूर हो गए, इसका मतलब कहीं ना कहीं स्वार्थ मन में कुछ था। वरना आज भी हमारी कुछ सहेलियां या हमारी मित्र आज भी बरसों से हैं, उनसे अगर हम इतने दूर रहकर भी हम बात करते हैं, कभी तुम्हें अपने बचपन के लोग मिलते होंगे तो तुम बात करती हो ना, क्योंकि उनसे कोई स्वार्थ नहीं है।
0: बिल्कुल, सौ की सीधी एक बात कि आपके अंदर अगर स्वार्थ है, ईर्ष्या, जलन है, तो
1: आप नहीं निभा पाओगे,
0: दोस्ती नहीं निभा पाओगे।
1: तो हमारी दोस्ती शब्द तो बहुत बड़ा है, मंजरी, मुझे लगता है कि हम आपसी बातचीत को भी नहीं लंबा कर सकते, जारी नहीं रख सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं अहंकार या कुछ बातें हमारे बीच में आ गई हैं। लेकिन अगर वो नहीं आई हैं, तो वो दोस्ती का अगर हमने तमगा नहीं भी दिया, तब भी वो बातचीत लंबी चल सकती है।
0: बिल्कुल। और हमारे साथी भी लिखते हैं कि सभी रिश्ते हमें जन्म के साथ मिलते हैं, दोस्त हम खुद चुनते हैं। सही बात है। स्कूल, कॉलेज, नौकरी, आस पड़ोस में चारों तरफ हम मित्रों के साथ और वे हमारे साथ हैं। हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास इस तकनीकी के युग में भी सच्चे मित्र हैं। बहुत तो मिलना नहीं होता बाहर रहने वाले मित्रों से, पर आज भी खतों मोबाइल के द्वारा जुड़े हैं। मित्रों से जुड़े रहने में परिवार का सहयोग भी सहयोग है। और बहुत अच्छी बात है, जो आजकल हमें सोशल मीडिया की सुविधाएं मिली हुई है, व्हाट्सएप है या मोबाइल है, तो इनके द्वारा हम अपने मित्रों को खोज भी लेते हैं, पुराने कहां गए।
1: सही बात है, कुछ मित्रों ने हमें खोज लिया, अरे आप कहां रहती हैं, वही मंदाकिनी है हमने जो कभी साथ पढ़ा करती थी, तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगी, बहुत बड़ी बात है कि दोस्ती हो तो कृष्ण और सुदामा जैसी, है ना।
0: बिल्कुल सही बात,
1: वो एक बहुत बड़ा उदाहरण है दोस्ती का, जहां उसके आगे और पीछे कुछ भी नहीं है,
0: कुछ भी नहीं। अगर वो उनकी दोस्ती को समझ लिया तो समझ लीजिए आपने सब कुछ
1: समझ लिया। तो हम अगर उसकी 10% दोस्ती भी निभा पाए तो समझ लीजिए कि हम सच्चे दोस्त हैं, है ना। एक श्रोता लिखते हैं कि रिश्ते खून से तैयार होते हैं, दोस्त प्यार से मिलते हैं, रिश्तों में नसीब का साथ है, दोस्तों में सुखद सहवास है, रिश्ते बंधनकारक है, मित्र स्वयं स्फूर्त है। आज के जमाने में रिश्तेदार पहले तन और फिर धीरे धीरे मन से दूर हो जाते हैं, और समान विचारों वाले दोस्त नजदीक आते रहते हैं।

0: कभी कभी रिश्ते दिल को जला देते हैं तो दोस्त सच्चे स्नेह के फूल खिला देते हैं, इसलिए रिश्तों से भी मित्र ज्यादा करीब होते हैं।
1: और हमारे एक साथी लिखते हैं, अक्सर मित्र दोस्तों का रिश्ता खून या भावनात्मक रिश्तों से ज्यादा करीबी और भावनात्मक रूप से सुरक्षित तो होते हैं, क्योंकि दोस्ती में अपेक्षाएं कम और समझ ज्यादा होती। कई बार दोस्त सुख दुख में परिवार से बेहतर साथ निभाते हैं और बिना किसी निर्णय के हमें अपनाते हैं। दोस्ती की मिसाल लोग महाभारत के पात्र कर्ण और दुर्योधन का भी देते हैं। बहुत सही बात लिखी इन्होंने।
0: बिल्कुल, वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज के दौर में रिश्तों रक्त संबंध से ज्यादा दोस्तों का करीब होना एक आम हकीकत बन गया है। इसके पीछे भावनात्मक मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक कई कारण हैं। यहाँ कुछ मुख्य वजह हैं, क्योंकि दोस्त अक्सर परिवार से ज्यादा करीब होते हैं बिना शर्त स्वीकृति के। दोस्त हमें वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं जैसे हम हैं, और रिश्तेदारी में अक्सर अपेक्षाएं सामाजिक दबाव होता है, जबकि दोस्ती में हम अनौपचारिक रहते हैं, स्वैच्छिक संबंध होते हैं। परिवार हमें मिलता है लेकिन दोस्त हम खुद बनाते हैं। ये चुनाव हमारी रुचियों, विचारों और मूल्यों की समानता पर आधारित होता है, जिससे जुड़ाव गहरा होता है और भावनात्मक सुरक्षा भी रहती है।
1: और हमारे एक साथी और लिखते हैं कि रिश्तों से ज्यादा करीबी की बात हो तो सबसे पहले मित्र ही आएगा, क्योंकि कई बार दोस्ती खून के रिश्तों से ज्यादा करीब और गहरी होती है, जो जीवन के हर सुख दुख की घड़ी में परिवार की तरह साथ खड़े होते हैं। दोस्त वो भाई बहन होते हैं जिससे हम खुद को चुनने का मौका मिलता है। जो रिश्तेदार से ज्यादा असरदार होता है, इसमें शुक्रिया या सॉरी की औपचारिकता नहीं होती, जबकि बेहद अनौपचारिक और सुकून देने वाली होती है। ये भी कहा जाता है कि रिश्ते बहुत मिलते हैं पर सच्चे दोस्त बहुत कम मिलते हैं।
0: बिल्कुल, बहुत कम मिलते हैं, बहुत मुश्किल से मिलते हैं। बहुत खुशनसीब होते हैं वो जिन्हें सच्चे दोस्त मिलते हैं, है ना। और कहें तो एक गाना सुनवाएं पहले।

0: हाँ तो मंजरी बताइए, हमारे दोस्ती में और क्या क्या होता है?
1: दोस्ती में बहुत सारी बातें होती हैं, एक दूसरे के सुख दुख बांटते हैं और कभी कभी एक साथ घूमने भी जाते हैं, तो दोस्तों के साथ बड़ा मजा आता है क्योंकि आपस में खर्चे भी शेयर कर लेते हैं
0: मतलब दोस्ती में भी हम खर्चा देखते हैं भाई, मुझे तो लगता है दोस्ती में हम खर्चा देखते ही नहीं है।
1: आजकल दोस्तों में क्या होता है कि चल थोड़ा तू लगा थोड़ा मैं लगा, ऐसा करते हैं और खूब इंजॉय कर लेते हैं।
0: मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी तो मैं तो बिल्कुल शेयर नहीं करने वाली हूँ, तुम्हें सारा खर्चा करना पड़ेगा।
1: देखती हूँ, चलिए ठीक है कर लेंगे। और हमारे साथी लिखते हैं, रिश्तों से ज्यादा मित्र करीब, क्या वजह? मुझे लगता है कि दोस्ती और रिश्तेदारी दोनों की अपनी अपनी जगह है और दोनों को बनाए रखना जरूरी है। दोस्ती में विश्वास और समझ होती है जबकि रिश्तेदारी में प्यार और बंधन होता है।
0: ये तो बात सही है, लेकिन ऐसा नहीं, रिश्तेदारी में भी कई लोग हमें बहुत अच्छे मिलते हैं जिनसे बहुत लंबे समय तक हमारा नाता जुड़ा होता है। एक हमारे दोस्त लिख रहे हैं कि रिश्ते हमारे जीवन की जड़ें हैं, वे हमें आधार देते हैं, लेकिन मित्रता उस ठंडी छांव की तरह है जो सफर की थकान मिटा देती है। मित्र करीब इसलिए होते हैं क्योंकि उनके साथ हम होते हैं। रिश्तों में हम बंधे होते हैं पर मित्रता में हम मुक्त होते हैं, और मनुष्य का स्वभाव है कि वो वही सबसे ज्यादा जुड़ाव महसूस करता है जहां वो पूरी तरह स्वतंत्र हो। शायद इसलिए कहा गया है कि एक सच्चा मित्र ईश्वर का वो तरीका है जिसमें वो बताता है कि वो हमारी कितनी परवाह करता है।
1: बहुत सुंदर सी बात लिखी है। और ऐसे हमारे एक साथी और लिखते हैं कि आज का विषय बहुत ही सुंदर है, मुझे लगता है कि मित्र हमारे जीवन के वो चुने हुए रिश्ते हैं जो जहां दिखावे की जरूरत नहीं होती। रिश्तों में हम अक्सर अपनी जिम्मेदारियों से बंधे होते हैं, लेकिन मित्रों के साथ हम अपनी रूह से जुड़े होते हैं। एक सच्चा दोस्त वही है जो आपकी खामोशी को भी शब्दों से ज्यादा बेहतर समझ ले, शायद इसीलिए वो रिश्तों से भी ज्यादा करीब महसूस होते हैं। बहुत सुंदर,
0: बिल्कुल सही। और एक आखिरी हम और ले लेते हैं, उसके बाद एक गीत हमारे श्रोताओं के लिए। लिखते हैं कि पारिवारिक रिश्तों में अक्सर एक मर्यादा और अपेक्षाओं का बोझ होता है, वहां गलतियों पर टोकने या उपदेश देने का डर रहता है, लेकिन एक सच्चे मित्र के सामने हम अपनी कमियों और गलतियों को बिना किसी डर के रख सकते हैं। मित्रता में जज किए जाने का डर कम और स्वीकार किए जाने का एहसास ज्यादा होता है।
1: जी,
0: है ना,
1: बिल्कुल सही बात लिखी है। तो हम लोग सुनते हैं,
0: हमारे दोस्त भी चाहेंगे कि हम उन्हें गीत सुनवा लें।

0: तो मंजरी भाई ये तो बातें हो गई हैं दोस्ती की बातें की। दोस्त तो सबसे प्यारा होता ही है और बड़े खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनको ताउम्र के लिए दोस्त मिलता है। तो दोस्त के साथ साथ अगर जब हम कुछ मिल बैठकर खाते हैं तो कितना मजा आता है ना।
1: जी बिल्कुल। और आज हम बात करने वाले हैं बिहार के जो व्यंजन है हमारे दाल पीठा और सत्तू का शरबत। तो हमारे साथियों ने लिखकर भेजा, हम उन्हीं के कमेंट्स को लेते हैं। एक लिखते हैं कि दाल पीठा जिसे फरा यूपी में से पनगोजा बोलते हैं, गेहूं के आटे में भी बनती है लेकिन इसका असली स्वाद चावल के आटे में मिलता है, जिसमें चना उड़द की दाल को भिगोकर लहसुन मिर्च के साथ पीस कर नमक मिलाकर गर्म पानी से गूथा हुआ चावल के आटे में भरा जाता है, फिर इसे उबलते पानी में पकाते हैं, इसे धनिया टमाटर मूली की चटनी के साथ खाते हैं, या फिर इसके टुकड़े करके कढ़ाई में तेल या घी में हरी मिर्च राई का तड़का देकर इसको थोड़ा सा भून लेते हैं खाते हैं। अपने स्वाद के अनुसार लोग इसमें भुने आलू का भरावन, चटपटी मसालेदार भुनी अलसी, तिल का स्टफिंग भी करके पीठा बनाते हैं, जो भरकर स्टफ करके बना हुआ पीठा और जो दाल में पका वो दाल पीठी कहलाता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम लोग फरा तो बनाते ही हैं चने की दाल से, तो इसी तरह का है, बहुत अच्छा व्यंजन है। और हमारे साथी लिखते हैं कि आप कुछ पढ़ने वाली थी ना,
0: नहीं आप पढ़िए ना, क्या
1: लिखते हैं कि सत्तू और सतुई दोनों अलग अलग होते हैं। सत्तू दो तीन तरह के अनाज उसमें मिले रहते हैं, जिसमें चना मसूर मक्का और जौ होता है, जिसे लोग खाते हैं। सतुई यह सिर्फ भुने चने का बनता है जो शरबत में प्रयोग होता है, यानी सत्तू और सतुई। ये बहुत अच्छी जानकारी दी है जो हमें पता चल गया कि हम
0: दोनों में क्या फर्क होता है। हाँ, जो मैं पढ़ने वाली थी वो ये कि एक मेरे साथी ने लिखा है, बिल्कुल मेरे मन की बात लिख दी है कि बिहार की व्यंजन दाल पीठा सत्तू का शरबत, अब तो भूख लग गई।
1: क्या बात यानी आप इतने से ही निकल ली
0: तो अगली बार आप मेरी अच्छी दोस्त है ना
1: जी,
0: तो अगली बार आप ये सत्तू और सतुई बनाकर लेकर आने वाली है। ठीक है, तो सुन लेते हैं गीत।

0: जाना।
1: तो मंजरी, कार्यक्रम सखी सहेली का वक्त अब पूरा हो रहा है। इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी और
2: मंजरी वर्मा लेते हैं विदा। तो सभी को मेरा
1: प्यार भरा नमस्कार।
2: सखी सहेली कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
3: सखी सहेली।

0: सेहतनामा कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को राजेंद्र त्रिपाठी का नमस्कार। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और आज के हमारे इस प्रोग्राम में हमने आमंत्रित किया है मुंबई के सुप्रसिद्ध हेमेटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट फिजिशियन डॉक्टर आशय प्रमोद करपे को। डॉक्टर साहब, विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार राजेंद्र जी, मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए शुक्रिया।
0: हम अपने सुनने वालों को शुरुआत में बताना जरूरी समझते हैं कि आज की हमारी चर्चा का जो विषय रहेगा वो है थैलेसीमिया, उपचार और इससे बचाव। तो शुरुआत हम ऐसे ही करते हैं, कई बार हम अस्पतालों में देखते हैं किसी दंपत्ति के साथ कोई बच्चा होता है और बहुत बीमार सा और चेहरे पे बिल्कुल नूर नहीं,

0: जैसे खून की कमी हो, इस तरह के कोई बच्चे दिखाई देते हैं तो हम पूछते हैं क्या हो गया है, तो बोले ये थैलेसीमिया का मरीज है। तो सबसे पहले हम अपने सुनने वालों को बहुत ही संक्षेप में और सरल जानकारी के रूप में आप बताइए कि थैलेसीमिया बीमारी का इतिहास क्या है और इसके बारे में गहराई से लोग क्या समझते हैं और दरअसल ये क्या है।
1: थैलेसीमिया एक रक्त की बीमारी है जो आनुवंशिक रीतिया संक्रमित होती है आगे चल के, तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये बीमारी चलते ही रहती है। अगर हम देखेंगे

0: अगर इस तेज रफ्तार में कभी कभी दिल थोड़ा धीमा पड़ जाता है ना।
1: पड़ तो जाता है, तो बस यही है हमारा काम, आपके उस दिल की आवाज को सुनना और उसे हर किसी तक पहुंचाना।
0: तो आज के इस खास सफर में हम लेकर आए हैं कुछ दिलचस्प बातें, कुछ ऐसे टॉपिक्स जो आपसे जुड़े हैं और कुछ ऐसे पल जो आपको मुस्कुराने पर मजबूर कर देंगे।
1: और हाँ दोस्तों, अब आप सोच रहे हैं कि आज क्या खास होने वाला है, तो बस इतना समझ लीजिए कि आज की ये शाम होगी थोड़ी सी गीतों भरी, थोड़ी सी जानकारियों से भरी और पूरी तरह आपकी।
0: तो कहीं जाइएगा नहीं, जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब शुरू होने जा रहा है
1: आपकी सोच, आपकी आवाज़ और आपके जज्बातों का सबसे खूबसूरत सफर, और इस सफर का नाम है युववाणी। तो कार्यक्रम का आगाज करते हैं और सुन लेते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: दोस्तों, जिंदगी में हर इंसान चाहता है कि लोग उसे समझें, उसकी बात को महत्व दें, उसकी मौजूदगी को महसूस करें। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि आखिर किसी इंसान को समाज में सम्मान कैसे मिलता है? क्या ऊंची आवाज में अपनी तारीफ करने से, या फिर लोगों पर अपना रौब दिखाने से?
1: अगर इसका जवाब हम ढूंढे खुशी तो नहीं, क्योंकि सच तो ये है कि सम्मान अर्जित किया जाता है।
0: हाँ, ये तो बात है,
1: मांगा नहीं जाता। और यही बात आज के समय में समझना बहुत जरूरी है। आज लोग चाहते हैं कि हर कोई उनकी इज्जत करे, उनकी हर बात माने, लेकिन खुद दूसरों से बात करते वक्त उनके शब्दों में विनम्रता ही नहीं रहती।
0: हाँ, कुछ लोग तो ऐसे चिल्लाते हैं, मतलब लगता है कि लड़ जाएंगे। हाँ, पर वो नॉर्मल बात कर रहे होते हैं, पर उनकी टोन से ऐसा लगता है कि जैसे वो तो वो लड़ रहे हों। हाँ, और सम्मान पता है एक ऐसा एहसास है जो दिल से निकलता है, इसे कमाया नहीं जाता कि हाँ मेरा कोई सम्मान करे। ये चीजें दिल से निकलती हैं, कभी जबरदस्ती हासिल नहीं किया जा सकता। कई बार हम देखते हैं कि कुछ लोग बहुत साधारण होते हुए भी सबके प्रिय बन जाते हैं, एकदम सिंपल, कॉमन, सिंपल सा ड्रेसअप, और ज्यादा तारीफ भी नहीं करते वो, बस सिंपल अपनी बात कह के चुप हो जाते हैं। लेकिन फिर भी हर इंसान उनकी तारीफ करता है और उनकी मौजूदगी से खुश रहते हैं लोग। और वहीं कुछ लोग धन, शक्ति और ऊंचे पद के बावजूद लोगों के दिलों में जगह नहीं बना पाते।
1: ये तो बिल्कुल सही कहा तुमने कि सादगी में जो बात है वो और किसी में कहा।
0: कहते हैं ना, सादगी में ही सुंदरता है।
1: दोस्तों, सम्मान का जो रिश्ता है वो इंसान की सोच और व्यवहार से होता है, उसके पद या पैसे से नहीं। और हाँ, असली सम्मान वही है जो आपके पीछे भी बना रहे हैं।
0: हाँ, ये तो है। जब आप कहीं मौजूद ना हो, फिर भी लोग आपके व्यवहार, आपकी अच्छाइयों और आपके स्वभाव की तारीफ करें, बस वही सच्चा सम्मान है।
1: और क्योंकि सम्मान विश्वास से मिलता है खुशी।
0: हाँ, ये तो है।
1: और विश्वास बनता है हमारे कर्मों से। अगर हम अपने शब्दों का ध्यान रखें, अगर हम किसी का दिल ना दुखाए, अगर हम सफलता मिलने के बाद भी जमीन से जुड़ रहे हैं, तो लोग बिना कहे ही हमें सम्मान देने लगते हैं। यहाँ मैंने एक बात कही शब्दों वाली बात खुशी। हाँ? तो उस पर तुम गौर करना कि कहते हैं ना कि शब्दों को संभाल कर बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ, एक शब्द औषधि बने, एक बने घाव।
0: क्या बात है ना? बिल्कुल, शब्द ही कहते हैं ना कि मुंह से निकला शब्द कभी वापस नहीं आता।
1: हमारे शब्द ही है जो हमें अच्छा या बुरा बना देते हैं।
0: इसलिए इन शब्दों को नाप तोल कर प्रयोग कीजिए,
1: क्योंकि हम जैसा व्यवहार खुद के लिए चाहते हैं ना, वैसा ही हम दूसरों के साथ करें।
0: हाँ, और आजकल छोटी छोटी बातों पर लोग रिश्ते तोड़ देते हैं, बड़ों से बहस करने लगते हैं, दूसरों की भावनाओं का मजाक बना देते हैं। लेकिन जो इंसान दूसरों की भावनाओं को समझता है, वही असल में बड़ा इंसान कहलाता है।
1: और दोस्तों, सोशल मीडिया की इस दौर में लोग लाइक्स और फॉलोअर्स को अपनी पहचान समझने लगे।
0: हाँ, जो तो पता है लाइक तो कैसे कर देते हैं, एकदम रैंडम देखा और लाइक कर दिया।
1: लेकिन याद रखिए, मोबाइल स्क्रीन पर मिलने वाली ये तारीफ कुछ समय की होती है, पर इंसानियत से कमाया गया सम्मान जिंदगी भर साथ रहता है।
0: बिल्कुल, और सम्मान पाने का सबसे आसान तरीका है अपने व्यवहार को इतना अच्छा बनाइए कि लोग आपको देखकर मुस्कुरा दें।
1: और कहते हैं ना कि मुस्कुराहट तो हमेशा हमें चेहरे पर रखनी चाहिए।
0: अरे हमेशा, क्योंकि पता है कोई कैसी भी कंडीशन हो, कुछ भी सिचुएशन हो, चाहे वो परिस्थिति हमारे अनुकूल ना हो, लेकिन अगर हम अच्छे से बोल रहे हैं, उस परिस्थिति को मुस्कुरा कर सहन कर रहे हैं, तो वो सिचुएशन भी आसान हो जाती
1: है। और कहते हैं ना कि शब्दों की इत्तेफाक में आप कुछ यूं बदलाव करके देखिए, कि शब्दों की इत्तेफाक में आप कुछ यूं बदलाव करके देखिए, आप देख करके ना मुस्कुराएं, बस मुस्कुरा कर देखिए, अच्छा
0: लगता है। इसलिए

0: दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: फिलहाल हम भी हमारे दोस्तों की मुस्कुराहट को बरकरार रखते हैं और एक बार सीधा लिए चलते हैं फिर से गीत संगीत की ओर और सुनवा देते हैं ये प्यारा संगीत।

1927 से पहले भारत के पास ऐसा कोई सशक्त माध्यम नहीं था जो भारत को एक सूत्र में पिरो सके। 23 जुलाई 1927 को बॉम्बे से पहली बार रेडियो की आवाज गूंजी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के नाम से। 8 जून 1936 को इसे नया नाम मिला ऑल इंडिया रेडियो। एक ऐसी आवाज जो हर दिल तक पहुंची। धीरे धीरे ये सिर्फ एक आवाज नहीं रही, ये बनी भरोसे की अटूट पहचान, सूचना का सटीक स्रोत और भावनाओं की मजबूत डोर। यहीं से शुरू हुई आकाशवाणी की गौरवशाली यात्रा जो आज भी हर सुबह हर घर में गूंजती है।

0: कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युववाणी, आपकी रेडियो दोस्त मनीषा और
1: खुशी के साथ। दोस्तों, कुछ लोग किताबें लिखते हैं, कुछ लोग भाषण देते हैं, लेकिन कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो इंसान को खुद से मिलने का रास्ता दिखाते हैं। एक ऐसे ही महान दार्शनिक, चिंतक और आध्यात्मिक विचारक थे जिद्दू कृष्णमूर्ति।
0: दोस्तों, आज हम सब उनकी जयंती पर उन्हें याद कर रहे हैं। एक ऐसी सोच को जिसने दुनिया को ये सिखाया कि सच्ची आज़ादी बाहर नहीं इंसान के भीतर होती है।
1: बिल्कुल मनीषा, और जय कृष्णमूर्ति का जन्म 11 मई 1895 में मदनपल्ले में हुआ था। वे बचपन से ही बेहद शांत और गंभीर स्वभाव के थे। आगे चलकर उन्होंने पूरी दुनिया में शिक्षा, आत्मज्ञान और मानवता पर अपने विचार रखे।
0: और खुशी, तुम्हें पता है कि उनकी सबसे खास बात जो थी ना, वो ये थी कि उन्होंने कभी किसी धर्म, संगठन या परंपरा को अंतिम सत्य नहीं माना। वे कहते थे कि अपने भीतर की आवाज को सुनो, क्योंकि असली शिक्षक आपका मन ही है।
1: बिल्कुल, हमारे अंदर का मन ही हमारा सबसे अच्छा शिक्षक होता है। वही हमें क्या सही है, क्या गलत है, किस रास्ते पर जाना है, हमारा मन गवाही दे देता है। तो दोस्तों, आज की भागती दौड़ती जिंदगी में हम अक्सर दूसरों के जैसे बनने की कोशिश करते हैं। कभी समाज का दबाव, कभी तुलना करना, तो कभी सफलता की अंधी दौड़।
0: लेकिन खुशी, जय कृष्णमूर्ति ने युवाओं को हमेशा ये ही संदेश दिया कि खुद को समझना ही जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा है।
1: बिल्कुल, अभी आपने बताया ना कि उन्होंने यही कहा कि अपने भीतर की आवाज को सुनो, क्योंकि असली शिक्षक और वही है। अभी जैसे फिर यही बात दूसरी यही निकल कर आई कि कभी कहीं ना कहीं हम समाज के दबाव में चले जाते हैं, खुद की तुलना दूसरों से करने लगते हैं और सफलता के पीछे भागने लगते हैं। अगर सफलता नहीं मिली, असफल भी हो गए,
0: तो दुखी हो जाते हैं। और जैसा कि तुमने कहा ना खुशी भी, कि हम कभी कभी तुलना करने लग जाते हैं, तो ये सबसे बड़ी बुरी बात है।
1: और आज के समय में सबसे ज्यादा यही हो रहा है।
0: कभी भी अपनी तुलना किसी से ना करें, क्योंकि अपने आप को हम एंटिक माने।
1: हाँ, ईश्वर का हम ऐसे पूरे वर्ल्ड में हमें वन ही पीस है।
0: हाँ।
1: और उन्होंने

0: ने शिक्षा को सिर्फ नौकरी पाने का माध्यम नहीं माना, बल्कि इंसान को बेहतर बनाने का रास्ता बताया। और ये बात बहुत सही है कि शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करती है।
1: उनका मानना था खुशी कि अगर शिक्षा इंसान में डर, लालच और भेदभाव खत्म नहीं कर सकती तो वह अधूरी है। और शायद यही वजह है कि आज भी दुनिया भर के लोग उनके विचारों से प्रेरणा लेते हैं।
0: हाँ, और वो कहते थे कि जिस दिन आप बिना डर के खुद को समझना शुरू कर देंगे, उसी दिन से आपका जीवन शुरू हो जाएगा।
1: और आज सच में आज के युवाओं के लिए उनका जीवन एक प्रेरणा है। उन्होंने कभी भी अंधविश्वास या भीड़ का अनुसरण करने की सलाह नहीं दी, बल्कि हमेशा कहा कि सोचो, समझो और अपने अनुभव से सीखो। जैसा कि अभी हमने दोस्तों को बताया खुशी यहाँ पर कि अपने अनुभव से सीखो, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। हमें गलतियों से सीखना चाहिए।
0: बिल्कुल सीखना चाहिए। जिंदगी सिर्फ अपने हिसाब से जीने का नाम नहीं है दोस्तों, बल्कि दूसरों की भावनाओं को समझते हुए आगे बढ़ने का नाम है।
1: क्योंकि कई बार क्या होता है ना खुशी, कि हमारे शब्द, हमारा व्यवहार और हमारा जो रवैया होता है, ये किसी के चेहरे पर मुस्कान भी ला सकता है और किसी के दिल को चोट भी पहुंचा सकता है।
0: तो आज की तेज रफ्तार दुनिया में लोग सुनते कम है और बोलते ज्यादा है।
1: हर कोई चाहता है कि उसकी बात समझी जाए, लेकिन बहुत कम लोग दूसरों की भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं।
0: हाँ,
1: और यही वजह है कि रिश्तों में दूरियां बढ़ रही हैं। दूसरों की भावनाओं को समझना यानी संवेदनशील होना, किसी के दुख में उसका सहारा बनना या किसी की खामोशी को महसूस करना, ये बहुत बड़ी बात है।
0: हाँ, और हमें याद रखना चाहिए कि शब्द मुफ्त में मिलते हैं, लेकिन उनका असर अनमोल होता है। इसीलिए बोलने से पहले सोचिए, मजाक करने से पहले सामने वाले की भावनाओं को समझिए, और किसी को जज करने से पहले उसकी परिस्थिति को जानने की कोशिश कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं इस बेहद ही खूबसूरत से गीत के साथ।

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: मनीषा पता है अभी मैं जब ऑफिस आ रही थी ना, इतनी तेज धूप लग रही थी कि पूछो ही मत, बस मैं चक्कर खा के कहीं गिरी नहीं।
1: ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा, धूप जो है वो तो बहुत तीखी और तेज,
0: हाँ सीधी सिर में लगती है। और मेरे को तो पता है, मेरे तो चश्मा लगा हुआ है, तो मेरे को तो आगे का भी बहुत ऐसे ब्लर ब्लर सा दिखने लग जाता है तपती धूप में,
1: धूप के साथ साथ गर्म हवाएं।
0: और दोस्तों, सुबह की धूप अब तपते अंगारों में बदलने लगी है, धरती की तपन बढ़ रही है, गर्म हवाएं इन दिनों अब ज्यादा चलने लगी हैं।
1: बिल्कुल ठीक कहा खुशी, और ऐसे मौसम में सिर्फ गर्मी नहीं बढ़ती बल्कि हीट वेव का खतरा भी बढ़ जाता है।
0: हाँ वो तो है।
1: और तुम जानती हो हीट वेव वह स्थिति

0: जब तापमान सामान्य से बहुत अधिक बढ़ जाता है और लगातार गर्म हवाएं जब चलती रहती हैं।
1: हाँ, लेकिन कभी ये जो आंधी तूफान आते हैं शाम को, रोज तो नहीं आते, पर अभी दो चार दिन पहले आए थे तब कितना सुकून मिला था,
0: मौसम थोड़ा सा ठंडा सा हो गया था।
1: लेकिन वही अगले दिन सुबह उठते ही और सुबह 7 बजे से ही गर्म हवाएं स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों, ये केवल मौसम का बदलाव नहीं बल्कि स्वास्थ्य पर भी सीधा हमला है। लू लगने पर शरीर का तापमान तेजी से बढ़ रहा है और बढ़ सकता है, तो इसमें पसीना आना बंद हो सकता है, चक्कर, कमजोरी, सिर दर्द, उल्टी और बेहोशी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। सबसे अधिक खतरा बच्चों को होता है,
0: बच्चों को होता है, बुजुर्गों को होता है, और जो लोग बाहर काम करते हैं ना खुशी, उन लोगों को भी इसका खतरा बना रहता है। लेकिन हम थोड़ी सी सावधानी रखें तो इससे सुरक्षित रहा जा सकता है।
1: हाँ बिल्कुल, सुरक्षा ही हर चीज का उपाय है।
0: इसलिए तेज धूप में निकलने से बचें, बार बार पानी पीते रहें, सिर को गमछे, टोपी, कपड़े से ढक करके रखें, और खुशी जहाँ तक हो सके हल्के रंग के और सूती कपड़े पहने।
1: हाँ वो तो है। और दोस्तों, आज का पर्यावरण असंतुलन और लगातार बढ़ते तापमान न कि हीट वेव की समस्या को गंभीर बना दिया है। पेड़ों की कटाई और पर्यावरण कहीं ना कहीं इस बढ़ती गर्मी के बड़े कारण ही हैं।
0: बिल्कुल ठीक कहा खुशी, कि जो पर्यावरण असंतुलन है,
1: हाँ,
0: उसी की वजह से जो है हीट वेव की समस्या को गंभीर बना दिया।
1: ग्लोबल वार्मिंग जिसे कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, इसीलिए हमारा प्रकृति को बचाना भी बहुत जरूरी है। पेड़ लगाना, पानी बचाना और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार बनना, यही हमारे आने वाले कल को सुरक्षित बनाने का रास्ता है।
0: तो दोस्तों, गर्मी के इस मौसम में अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए। अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें,
1: खूब सारा पानी पीजिए,
0: जरूरी काम हो तो ही घर से बाहर जाएं, और पूरी सावधानी के साथ रहें।
1: शायद गवर्नमेंट की गाइडलाइन भी आई हुई है कि अनावश्यक बाहर न निकलें दिन में, दोपहर के समय, जैसे 1 बजे से लेके 4 बजे तक, इस तरह।
0: जैसा कि तुमने कहा कि 1 बजे से 4, तो इस समय की जो धूप होती है और जो हवाएं होती है ना, ये हमारे शरीर के लिए बेहद खतरनाक
1: साबित होती है। तो दोस्तों, दिन में बाहर निकलने से बचें, ढेर सारा पानी पिए, खूब सारे फ्रूट्स खाएं, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें,
0: ख्याल रखें। फिलहाल हम आपके जो मनोरंजन है उसका ध्यान रखेंगे और आपको लिए चलेंगे गीत संगीत की ओर, और सुन लेते हैं ये प्यारा संगीत।

0: खुशी, हमारे जो भारत का स्वतंत्रता संग्राम है ना, ये केवल संघर्षों और आंदोलनों की कहानी नहीं है,
1: बिल्कुल,
0: बल्कि उन अनगिनत महान व्यक्तित्वों की गाथा है जिन्होंने अपने साहस, त्याग और देश प्रेम से राष्ट्र को नई दिशा दी।
1: बिल्कुल सही कहा मनीषा।
0: दोस्तों, आज 11 मई का दिन है और आज के दिन मनाई जाती है भारतीय स्वतंत्रता सेनानी आसिफ अली की जयंती।
1: दोस्तों, आसिफ अली का जन्म 11 मई 1888 को उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में हुआ था। उन्होंने असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। वे अमेरिका में भारत के पहले राजदूत और ओडिशा के राज्यपाल बने।
0: दोस्तों, इनके बारे में हम आपको बता दें कि आसिफ अली 2 सितंबर 1946 से जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारत सरकार की अंतरिम सरकार में रेलवे और परिवहन प्रभारी बने।
1: और आसिफ अली उन महान व्यक्तित्वों में से एक हैं जिन्होंने भारत की आजादी के लिए अपना जीवन समर्पित किया। वे स्वतंत्रता सेनानी, प्रसिद्ध वकील और समाज सेवी थे। उन्होंने अंग्रेजी भाषा के खिलाफ आवाज उठाई और महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाए गए आंदोलनों में सक्रिय भूमिका

0: का निभाई।
1: और देखा जाए दोस्तों तो युवाओं के लिए आसफ अली का जीवन एक संदेश है कि शिक्षा, साहस और ईमानदारी के बल पर समाज और देश की सेवा की जा सकती है। उन्होंने हमेशा एकता, भाईचारे और लोकतांत्रिक मूल्यों को महत्व दिया।
0: हाँ, और दोस्तों आज जब हम आधुनिक भारत में स्वतंत्र होकर अपने सपनों में जी रहे हैं, सपनों को भी जी रहे हैं, तब हमें उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को याद करना चाहिए, उनके बलिदान को याद करना चाहिए कि जिनसे हमें आज़ादी मिली है।
1: और आसफ अली की जो जयंती है केवल एक महान व्यक्ति को याद करने का अवसर नहीं है, बल्कि उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने का दिन है। हमें उनके साहस, सादगी, राष्ट्रप्रेम और ईमानदारी से प्रेरणा लेनी चाहिए। तो खुशी, फिर से हमारी वाणी को थोड़ी सी देर के लिए यही विराम देते हैं और सुन लेते हैं एक और गीत।

0: एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में, और मैं हूँ आपकी अपनी खुशी,
1: और मैं हूँ मनीषा।
0: दोस्तों आज की दुनिया इतनी तेज हो गई है कि हर इंसान बस भागता ही दिखाई देता है। मोबाइल एक सेकंड लेट चले तो गुस्सा, मैसेज का रिप्लाई देर से आए तो बेचैनी, और अगर कामयाबी जल्दी ना मिले तो निराश।
1: सच में खुशी, आज हर चीज इंस्टेंट चाहिए।
0: हाँ,
1: लेकिन इस जल्दबाजी में शायद हम सब जो है सब्र करना भूलते जा रहे हैं।
0: हाँ बिल्कुल, ये बात तो तुमने बहुत सही कही।
1: पहले लोग सपनों के लिए सालों मेहनत करते थे, धीरे धीरे आगे बढ़ते थे,
0: लेकिन आज सोशल मीडिया देखकर लगता है कि सबको रातों रात सफल होना है।
1: और जब चीजें अपने समय से मिलती है ना, तो लोग खुद को दूसरों से तुलना करके परेशान होने लगते हैं।
0: हाँ, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हर इंसान का समय अलग अलग होता है, हर कहानी की रफ्तार अलग अलग होती है।
1: बिल्कुल ठीक कहा, और किसी ने बेहद ही खूबसूरत बात कही है कि धीरे पकने वाला फल ही सबसे मीठा होता है।
0: ये तो बहुत सही बात है, और आज की पीढ़ी थकी हुई इसलिए भी लगती है क्योंकि वो हर समय खुद को साबित करने की दौड़ में लगी हुई है।
1: लेकिन खुशी, जिंदगी कोई रेस नहीं है।
0: हाँ ये तो है,
1: जहाँ सबसे आगे निकलना ही जीत हो, कई बार धीरे चलना भी जरूरी होता है।
0: हाँ,
1: ताकि हम खुद को महसूस कर सकें।
0: बिल्कुल, पेड़ भी एक दिन में बड़ा नहीं होता, रिश्ते भी एक दिन में मजबूत नहीं होते, और सपने भी एक रात में पूरे नहीं होते।
1: बिल्कुल ठीक कहा ये बात तो तुमने, और हर अच्छी चीज को वक्त चाहिए होता है।
0: हाँ,
1: और उस वक्त के साथ एक और चीज है, पता है क्या?
0: क्या?
1: सब्र।
0: बिल्कुल, तो दोस्तों अगर आपकी मेहनत का रिजल्ट अभी नहीं दिख रहा तो परेशान मत हुई है।
1: बस कोशिश ही करते रहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि
0: कोशिश
1: करने वालों की जीत होती है।
0: बिल्कुल, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसलिए धीरे चलिए लेकिन खुद पर भरोसा रखिए,
1: क्योंकि जिंदगी में जो चीजें समय लेकर मिलती है उनकी खुशी सबसे ज्यादा खास होती है।

0: होगा और चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान भी ले आया होगा।
1: बिल्कुल खुशी, और अगर हमारी बातों में आपको अपना कोई किस्सा दिखा हो या कोई एहसास जुड़ा हो तो समझिए हमारा ये साथ सफल हो गया।
0: हाँ, क्योंकि युवाणी सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, ये आपकी सोच, आपके जज्बात और आपकी आवाज का एक खूबसूरत मंच।
1: तो अब हमें दीजिए इजाजत, लेकिन याद रखिए जिंदगी को थोड़ा हल्का रखिए, मुस्कुराते रहिए और अपने सपनों को उड़ान देते रहिए।
0: हम फिर मिलेंगे इसी जोश, इसी मुस्कान और ढेर सारी नई बातों के साथ। दीजिए इजाजत खुशी
1: और मनीषा को। नमस्कार।

अभी आपने सुना युवा साथियों के साथ कार्यक्रम युवावाणी। ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है, FM 102, FM 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 KHz पर। लीजिए बताऊ, अब सुनिए हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार कुछ ही पलों में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं, बल्कि आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बनेगा। गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव में प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र अपनी जड़ों से जुड़कर ही लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है।
1: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
0: प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75 रूपए का विशेष सिक्का भी जारी किया। सरकार ने कहा है कि देश भर में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और घरेलू एलपीजी की आपूर्ति निरंतर जारी है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं को ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की है।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
0: रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन 2026 के लिए देश में उर्वरकों का भंडार 51% से अधिक है। सरकार ने कहा है कि देश के पास 60 दिन का कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस तथा 45 दिन का एलपीजी भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में हुई बैठक के दौरान ये जानकारी दी गई। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां संघर्ष शुरू होने के 70 दिन के बाद भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर हैं।

भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल शोधक और पेट्रोलियम उत्पादों का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है। सरकार ने कहा है कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों से की गई 7 अपीलों का पालन करने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने कल देशवासियों से 1 वर्ष तक विदेश यात्रा से बचने और स्वदेशी उत्पादों को अपनाने की अपील की थी। श्री मोदी ने लोगों से खाना पकाने के तेल की खपत कम करने, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने तथा सोने की अनावश्यक खरीदारी से बचने का भी आग्रह किया था। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी कर दी है। ये अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। अधिनियम का उद्देश्य 1 वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। निर्धारित समय में काम नहीं मिलने पर

0: जी रामजी अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी कर दी है। ये अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। निर्धारित समय में काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बाघ, शेर, चीता जैसे बिग कैट्स के संरक्षण के लिए कॉरपोरेट फंडिंग बहुत जरूरी है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि भारत अगले महीने राष्ट्रीय राजधानी में पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 1313 अंक की भारी गिरावट के साथ 76015 पर बंद हुआ। निफ्टी 360 अंक कम होकर 23816 पर आ गया। एएफसी अंडर 17 एशिया कप महिला फुटबॉल का क्वार्टर फाइनल भारत और मेजबान चीन के बीच सुझाव में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक चीन ने 2-0 की बढ़त बना ली थी। उधर आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी कोटा बूंदी का ये चंबल चैनल है। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत।

श्रेया घोषाल और सोनू निगम की सुरीली आवाजों में अभी आपने सुना ये गाना लगे रहो मुन्ना भाई फिल्म से। गीत के बोल स्वानंद किरकिरे के और धुन बनाई शांतनु मोइत्रा ने। आइए अब चलते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनवाते हैं एक और प्यारा सा नगमा सिम्बा फिल्म से।

सिम्बा फिल्म से राहत फतेह अली खान, असीस कौर और तनिष्क की सुरीली मधुर आवाजों में अभी आपने सुना ये गाना। गीत के बोल रश्मि के और संगीत तनिष्क बागची का। लीजिए अब सुनिए सिंगिस किंग फिल्म से राहत फतेह अली खान और श्रेया घोषाल की आवाजों में ये गाना। गीत के बोल मयूर के और संगीत बनाया प्रीतम ने।

श्रोताओं, मौसम फिल्म का ये गाना आपने सुना राहत फतेह अली खान की आवाज में, गीत के बोल इरशाद कामिल के और संगीत प्रीतम का। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। FM 102, FM 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 KHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल। अब से कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे हिंदी और राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार और जिले की चिट्ठी का प्रसारण हमारे जयपुर केंद्र से। प्रतीक्षा कीजिए।

ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब से थोड़ी देर बाद 6:30 बजे से आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, उसके बाद जिले की चिट्ठी और फिर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार।

अदबी दुनिया की अजीम शख्सियात और उनके कारनामों से आपको रूशनास कराना, हल्काए इल्म अदब की सरगर्मियों से हर वक्त बाखबर करना, मुशायरों के जरिए शोराए कराम के फिक्र फन की बुलंदियों को छूना, अलावा अजीम मुल्की और बैनुल अक़वामी मामलात, सियासी नजरियात, माशियात और सकाफत पर मुदल्लल मुबाहिसे और इजहार ख्याल, साथ ही अवामी मफादात की तबलीग तशहीर, जिसका मकसद है वो है आपका अपना डी डी उर्दू चैनल।

नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें हैं आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक बताया। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर राज्य भर के शिवालयों में विशेष आयोजन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश के राजमार्गों पर बिना रुके वाहनों के टोल काटे जाने की नई प्रणाली का शुभारंभ किया। प्रदेश के युवाओं में विज्ञान और तकनीकी कौशल को बढ़ावा देने के लिए ब्रह्मगुप्त पुरस्कार शुरू करने की घोषणा। जयपुर के कोचिंग हब में इनोवेशन सेंटर बनेंगे। और राज्य के पश्चिमी जिले भीषण गर्मी और लू की चपेट में, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा और जोधपुर के कई हिस्सों में जनजीवन प्रभावित। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। गुजरात के सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर देश भर में आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। सोमनाथ लोगों को याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र तभी लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है जब वह अपनी जड़ों से जुड़ा रहे।
1: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
0: राज्य में भी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अवसर पर शिवालयों में विशेष पूजा अर्चना के कार्यक्रम आयोजित किए गए। जयपुर के झारखंड महादेव मंदिर में राज्य स्तरीय समारोह रखा गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि 75 वर्ष पूर्व सरदार वल्लभ भाई पटेल के संकल्प से सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार हुआ, जो हमारी अजय सांस्कृतिक भावना को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में तनोट माता, पुष्कर, खाटू श्याम जी और गलता तीर्थ जैसे आस्था के केंद्रों को विकसित करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है।
2: राजस्थान के अंदर उस तीर्थ को हम विकसित करना चाहते हैं, लगातार उसके लिए हम काम कर रहे हैं। अब देख रहे हैं कि जहाँ भी हमारी विरासत है और विरासत को संभालते हुए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। अब तक हमने 91,000 से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा कराई है। हर साल हम 50,000 हमारे उन बुजुर्गों को यात्रा कराने का काम हम करते हैं। इस वर्ष भी हमने 6,000 वरिष्ठ जनों को हवाई मार्ग से पशुपतिनाथ, नेपाल में 50,000 वरिष्ठ जनों को एसी ट्रेन से विभिन्न स्थलों पर यात्रा कराई है।

0: केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राजमार्गों पर बिना रुके वाहनों के टोल काटे जाने की नई प्रणाली का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री ने आज नई दिल्ली के मुंडका बरक्कलवाला टोल प्लाजा पर इस बैरियर रहित तकनीक की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस उन्नत प्रणाली से टोल प्लाजा पर लगने वाला समय कम होगा और ईंधन की बचत होगी तथा प्रदूषण में काफी कमी आएगी। नई तकनीक के तहत वाहन चालक 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से टोल कॉरिडोर से गुजर सकेंगे और टोल का भुगतान स्वचालित रूप से कट जाएगा। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से सालाना लगभग 285 करोड़ रुपए के ईंधन की बचत होगी। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि बाघ, शेर, चीता जैसी बिग कैट्स के संरक्षण के लिए कॉरपोरेट फंडिंग बहुत जरूरी है। श्री यादव आज नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ CII के वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। श्री यादव ने बताया कि अगले महीने भारत में पहली और दूसरी तारीख को नई दिल्ली में इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस के तहत पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। उन्होंने बताया कि बीते 10 वर्षों के भीतर देश में टाइगर रिजर्व्स की संख्या में बढ़ोतरी हुई है।
1: 10 सालों में हमने टाइगर रिजर्व्स की संख्या बढ़ा करके 58 कर दी है। हिंदुस्तान के हर जगह पे हमारे पास दुनिया का हर तरह का जंगल है और दुनिया में जो 7 बिग कैट्स है, भारत ही एक ऐसी कंट्री है आउट ऑफ 7 5 बिग कैट्स हमारे यहाँ पर है। हमने दुनिया को कंजर्वेशन का एक ये रास्ता दिखाया है कि हमारे यहाँ से चीता जब एक्सटिंक्ट हुआ तो दुनिया का फर्स्ट वाइल्ड चीता का इंटर कॉन्टिनेंट ट्रांसलोकेशन करने का काम भारत को करने का ये अवसर प्राप्त हुआ।
0: केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के क्रियान्वयन की अधिसूचना जारी कर दी है। यह नया कानून इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाएगी। इस योजना पर चालू वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। महिला श्रमिकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए कार्यस्थलों पर बच्चों की देखभाल का भी विशेष प्रावधान किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के युवाओं में विज्ञान और तकनीकी कौशल को बढ़ावा देने के लिए महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री ब्रह्मगुप्त के नाम पर ब्रह्मगुप्त पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जयपुर के कोचिंग हब में इनोवेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा। वे आज जयपुर में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम के दौरान श्री शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश भर के विज्ञान क्लबों से जुड़े छात्र छात्राओं से सीधा संवाद किया। इससे पहले राज्यपाल हरिभाव बागड़े ने केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान सीरी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने विज्ञान और तकनीक का उपयोग समृद्ध और स्वस्थ जीवन के लिए करने का आह्वान किया। श्री बागड़े ने संस्थान से अनाज और सब्जियों में पेस्टिसाइड तथा रसायनों की के लिए उप मुख्यमंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बचत और संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग की अपील को राष्ट्र को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। श्री बैरवा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वैश्विक संकटों के दौरान प्रधानमंत्री ने हमेशा ऐसे दूरदर्शी निर्णय लिए हैं जिनसे देश सुरक्षित रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को देखते हुए नागरिक एकजुट होकर प्रधानमंत्री की इस अपील का समर्थन करें।
2: जब भी ऐसी कोई वैश्विक महामारी हुई हो या वैश्विक समस्या हुई हो तब उन्होंने एक एक स्टेप लिया जिससे कि हमारे देश में कोई इस तरह की कोई परेशानी नहीं आए। जो पेट्रोल डीजल के लिए, गैस के लिए और सोना नहीं कर दे, एक उन्होंने कहा है, संदेश दिया है कि अफवाह नहीं करें। इसलिए उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है। हम सबको आपके माध्यम से भी कहना चाहूंगा कि

0: फिजूल खर्ची नहीं करके हम एक आय को हमारी को जिसका अगर हम बचत करेंगे तो निश्चित रूप से वो हमारे काम।
1: प्रदेश में जनगणना 2027 के तहत 1 मई से शुरू हुई स्वगणना में पिछले 10 दिन में 6.5 लाख से अधिक परिवारों ने भाग लिया है। इन परिवारों ने इस डिजिटल प्रक्रिया को पूरा कर लिया है। स्वगणना के मामले में जयपुर जिला अव्वल है। 50,000 से अधिक परिवारों ने स्वगणना पूरी की है। सीकर जिला 32,000 परिवारों की स्वगणना के साथ दूसरे स्थान पर है। गौरतलब है कि स्वगणना की प्रक्रिया 15 मई तक जारी रहेगी। प्रगणक 16 मई से घर घर जाकर मकान सूचीकरण और मकानों की गणना करेंगे। यह काम 14 जून तक चलेगा। उधर बालोतरा जिले में शत प्रतिशत स्वगणना पूरी करने वाले प्रगणकों और सुपरवाइजरों को आज जिला कलेक्टर ने सम्मानित किया। भीलवाड़ा की रूपाहेली टेक्सटाइल पार्क में उद्योग लगाने के इच्छुक निवेशकों के लिए रीको ने भूखंड आवंटन की प्रक्रिया शुरू की है। इसके तहत 1500 से लेकर 36,000 वर्ग मीटर तक के औद्योगिक भूखंड उपलब्ध कराए जा रहे हैं। राइजिंग राजस्थान अभियान के तहत राज्य सरकार के साथ एमओयू करने वाले निवेशक रीको के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आगामी 14 मई तक आवेदन कर सकते हैं। रीको ने इस पार्क में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए लगभग 221 करोड़ रुपए विकसित किए हैं। राज्य के पश्चिमी जिले भीषण गर्मी और लू की चपेट में हैं। जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर के कई हिस्सों में आज लू से जनजीवन प्रभावित रहा। कुछ स्थानों पर तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। दिन के साथ साथ रातें भी इन दिनों तप रही है। कई जिलों में न्यूनतम तापमान भी 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर मापा गया। राज्य में सर्वाधिक तापमान बाड़मेर में 47.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं फलोदी में तापमान 46.8 तथा जैसलमेर में 46.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार न्यूनतम और अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी का सिलसिला अगले 4-5 दिन बना रहेगा। जोधपुर और बीकानेर संभाग में इस दौरान लू का दौर जारी रहने की संभावना है। उधर अगले 48 घंटों में बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग तथा शेखावाटी अंचल में कहीं कहीं तेज आंधी के साथ हल्की बारिश होने के आसार हैं। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा मार्ग पर आज तड़के एक सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई। वंडर चौराहे के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से हुए इस हादसे में इन युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। ये युवक मजदूरी कर वापस घर लौट रहे थे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक बताया। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर राज्य भर के शिवालयों में विशेष आयोजन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश के राजमार्गों पर बिना रुके वाहनों के टोल काटे जाने की नई प्रणाली का शुभारंभ किया। प्रदेश के युवाओं में विज्ञान और तकनीकी कौशल को बढ़ावा देने के लिए ब्रह्मगुप्त पुरस्कार शुरू करने की घोषणा। जयपुर के कोचिंग हब में इनोवेशन सेंटर बनेंगे। और राज्य के पश्चिमी जिले भीषण गर्मी और लू की चपेट में। जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा और जोधपुर के कई हिस्सों में जनजीवन प्रभावित। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से बालोतरा जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख बंशीलाल ने तैयार किया है। बालोतरा रिफाइनरी में जुलाई महीने से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है। इस महीने के दूसरे पखवाड़े से यूनिट की कमीशनिंग का काम शुरू हो जाएगा। पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिफाइनरी को राष्ट्र को समर्पित करने वाले थे, किंतु उद्घाटन से ठीक एक दिन पहले यूनिट में आग लगने की घटना के बाद ये कार्यक्रम निरस्त कर दिया गया। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। रिफाइनरी से जिले की तकदीर और तस्वीर बदल रही है। इससे बालोतरा प्रदेश का तेजी से आगे बढ़ता जिला बन चुका है। तेजी से हो रहे विकास की कड़ी में अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे, पचपदरा बालोतरा में लग्जरी होटल्स और कई नई कॉलोनियां विकसित हुई हैं। साथ ही रेलवे की ओर से बालोतरा से रिफाइनरी तक नई रेल लाइन के सर्वे का काम किया जा रहा है। वहीं कई लंबी दूरी की रेलगाड़ियां भी बालोतरा बाड़मेर तक पहुंच रही हैं। दूसरी तरफ रीको ने रिफाइनरी से निकलने वाले बाय प्रोडक्ट के उद्योगों के लिए जमीन आरक्षित की है। बोरावास कलावा में औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करते हुए पहले चरण में भूखंडों की नीलामी भी की जा चुकी है। वहीं ये स्थान पेट्रो

केमिकल्स हब बनने की ओर तेजी से रफ्तार पकड़ रहा है। बालोतरा रिफाइनरी क्षेत्र को औद्योगिक हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में जिला कलेक्टर सुशील कुमार यादव की अध्यक्षता में पिछले दिनों महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें स्थानीय उद्यमियों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और रीको के अधिकारियों ने औद्योगिक विकास की संभावनाओं और निवेश को बढ़ावा देने पर विस्तृत चर्चा की। बैठक में जिला कलेक्टर ने कहा कि रिफाइनरी परियोजना के शुरू होने के बाद बालोतरा और आसपास के क्षेत्रों में औद्योगिक विकास की अपार संभावनाएं बनी है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं और क्षेत्र आर्थिक रूप से मजबूत बन रहा है। बैठक के दौरान राजस्थान पेट्रो जोन की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करते हुए जिला कलेक्टर ने बताया कि रिफाइनरी के पास बोरावास कालावा, सिंधियों की ढाणी, वेदरलाई, मालियों की ढाणी, थोब और जेरला क्षेत्र में पेट्रोकेमिकल आधारित उद्योगों के लिए औद्योगिक भूखंड उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ग्राम रथ अभियान के जरिए जिले के गांवों ढाणियों के लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। 27 अप्रैल से शुरू हुआ ये अभियान 15 मई तक चलेगा। ग्राम रथों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में 13 विभागों की सरकारी योजनाओं, खासतौर पर कृषि से संबंधित योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाई जा रही है। कृषि के अलावा उद्यानिकी, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, सहकारिता, सिंचाई, राजस्व, पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग शामिल है। रथ पर एलईडी स्क्रीन के माध्यम से योजनाओं का प्रचार किया जा रहा है। हर रथ

0: नाटकों के माध्यम से योजनाओं का प्रचार कर रहे हैं। जिले की सिवाना, पचपदरा और बायतू विधानसभा क्षेत्रों के गांवों में ये रथ पहुंच रहे हैं। वहीं बड़ी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर रात्रि चौपाल भी आयोजित हो रही है, जिसमें स्थानीय विधायक, जिला कलेक्टर और जिला स्तरीय अधिकारी पहुंचकर आमजन की परिवेदनाएं सुन रहे हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े पिछले दिनों बालोतरा जिले के दौरे पर रहे। श्री बागड़े ने आसोतरा में ब्रह्मधाम में पूजा अर्चना की और गादीपति तुलसाराम महाराज का आशीर्वाद लिया। इसके बाद वे मवड़ी के ब्रह्म ऋषि खेतेश्वर वेद विज्ञान गुरुकुल पहुंचे। उन्होंने गुरुकुल के वार्षिक उत्सव में हिस्सा लिया। हमारे वेदों में ज्ञान का अथाह सागर समाया हुआ है और भारत ने अपने इसी ज्ञान और दर्शन के बल पर पूरे विश्व में सम्मान प्राप्त किया है। जिले में 4 मई से 10 मई तक अग्निशमन सप्ताह मनाया गया। इस वर्ष अभियान की थीम सुरक्षित विद्यालय, सुरक्षित अस्पताल और अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूक समाज रखी गई है। अभियान के तहत जागरूकता गतिविधियों के साथ आपातकालीन सेवाओं को प्रभावी बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया। वहीं बालोतरा जिला अस्पताल में अग्नि सुरक्षा मॉक ड्रिल आयोजित की गई। इसके साथ ही बालोतरा जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ। पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ मिंदर ने आस्था दिव्यता और देश री आत्मारी निशानी बतायो। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व रे मौके प्रदेश में आई खास आयोजन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी देश में आए हाईवे माथे बिना रुकिया गाड़ियां रा टोल काटन रा नुआ सिस्टम री शुरुआत कीनी। राज्य रा नौजवाना माए विज्ञान और तकनीकी कौशल बधावन सारू ब्रह्म गुप्त पुरस्कार शुरू करण रो ऐलान। जयपुर रा कोचिंग हब माए इनोवेशन सेंटर बनाया। और प्रदेश रा आतुणी जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतर, जूनपुर की हलका माए जिंदगी माथे घणो असर पड़ियो। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। गुजरात रा सोमनाथ मंदिर ने उजू बनावन रा 75 साल पूरा भेवन रा मौके आखा देश माए आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाई गयो। मोदी सोमनाथ मंदिर माए पूजा अर्चना कीनी। गुजरात माए राखी जिया सोमनाथ अमृत महोत्सव माए श्री मोदी कहो के

0: सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था दिव्यता और देश रे आत्मा रे निशानी है। वह कहो कि सोमनाथ लोगा ना याद दिलावे है कि जड़ाऊ जुड़ियो रहवन री सूरत में आई कोई देश लंबा भगत ताई मजबूती चाल सके है।
1: आजादी के समय सरदार साहब से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
0: सोमनाथ स्वाभिमान पर्व रे मौके राज्य स्तर रो कार्यक्रम जयपुर रा झारखंड महादेव मंदिर में राखी चियो। इन माय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो के 75 साल पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल रा संकल्प ओ सोमनाथ मंदिर ने ओजो सुधारी जियो जो माणी बेहतरीन सांस्कृतिक भावना रो दर्शाव करे है। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री विकास और विरासत री सोच री सराहना करता थका कहो कि देश भर माए अयोध्या काशी और उज्जैन सरीखी धार्मिक ठोड़ा रो कायाकल्प करियो जा रियो है और राज्य सरकार री तनोट माता पुष्कर खाटू श्याम जी और गलता तीर्थ सरीखा आस्थारा केंद्रा ने विकसित करण सारू लगातार काम कर रही है।
2: राजस्थान के अंदर उस तीर्थ को हम विकसित करना चाहते हैं, लगातार उसके लिए हम काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जहाँ भी हमारी विरासत है और विरासत को संभालते हुए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। अब तक हमने 91,000 से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा कराई है। हर साल हम 50,000 हमारे उन बुजुर्गों को यात्रा कराने का काम हम करते हैं। इस वर्ष भी हमने 6,000 वरिष्ठ जनों को हवाई मार्ग से पशुपतिनाथ नेपाल में 50,000 वरिष्ठ जनों को एसी ट्रेन से विभिन्न स्थलों पर यात्रा कराई है।
0: केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी कहो है कि मल्टी लेन फ्री फ्लो टोल सिस्टम सागे देश में हाईवे मैनेजमेंट रो नुओ दौर शुरू हुयो है। वे आज नई दिल्ली रा मुंडका बकरवाला टोल प्लाजा में बिना बैरियर वाली तकनीक री शुरुआत कीनी। श्री गडकरी कहो कि ई तकनीक गाड़ियां टोल कॉरिडोर 100 किलोमीटर प्रति घंटा री रफ्तार निकल सकेला और टोल रो चुकारो आपू आप वह जावेला। वे कहो कि ई व्यवस्थाओं हर साल करीब 285 करोड़ रुपया रो तेल बचेला। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव कहो है कि बाघ शेर और चीता सरीखा मोटा जिनावरा न बचावन सारू कारोबारियां का न्यू रकम देवनू

0: दुनिया का फर्स्ट वाइल्ड चीता का इंटर कॉन्टिनेंट ट्रांसलोकेशन करने का काम भारत को करने का यह अवसर प्राप्त हुआ।
1: केंद्र सरकार विकसित भारत जी राम जी रोजगार और आजीविका मिशन कानून लागू भेवन री अधिसूचना जारी कर दीनी है। ई पाछे ओ कानून 1 जुलाई आखा देश में लागू भे जावेला। इन तेत गावाई हलका माए साल माए 125 दिन री मजूरी री गारंटी दी जावेला। ग्रामीण विकास मंत्रालय रे मुजब ई मद माए चालू माली साल माए 95,692 करोड़ रुपया राखी जा है। इस आगे महिला मजूरानी भागीदारी बधावन सारू कमठाणा माथे बच्चा नी देखभाल रा खास प्रावधान करी चिया है। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रदेश रा नौजवाना माए विज्ञान और तकनीकी कौशल ने बधावो देवन सारू महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री ब्रह्म गुप्त रा नाम परा ब्रह्म गुप्त पुरस्कार

समृद्ध और स्वस्थ जीवन सारू काम लेवन बाबत कहो है। वे आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस रे मौके जयपुर रा केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान सिरी का नींव राखी जा कार्यक्रम माई बोल रहा है। श्री बागड़े इन संस्थान अनाज और तरकारियां ने बचावन सारू काम ली जावन वाली कीड़ा मारन री दवाइयां और रसायना री जांच सारू नुआ उपकरण विकसित करन बाबत कहो। वे कहो कि मौजूदा दौर माए खान पीन री चीजा माए जहरीली चीजा री मौजूदगी री जांच घनी मोटी जरूरत है। ई मौके राज्यपाल राजस्थान विज्ञान महोत्सव 2026 री स्मारिका और पोस्टर रो विमोचन कीनो। चालू माली साल 2026-27 माए देश री माली व्यवस्था माए 6.6% फीसदी री बढ़ोतरी रा

0: या वैश्विक समस्या हुई हो, तब उन्होंने एक एक स्टेप लिया जिससे कि हमारे देश में कोई इस तरह की कोई परेशानी नहीं आए, जो पेट्रोल डीजल के लिए, गैस के लिए और सोना नहीं कर दे। एक उन्होंने कहा है, संदेश दिया है कि अफवे नहीं करें, इसलिए उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है। हम सबको आपके माध्यम से भी कहना चाहूंगा कि फिजूल खर्ची नहीं करके हम एक आय को हमारी को, जिसका अगर हम बचत करेंगे तो निश्चित रूप से वो हमारे काम।
1: प्रदेश में जनगणना 2027 रातेत 1 मई चल रहा जनगणना रा पहला दौर रातेत करीजी स्वगणना में लाडला 10 दिन में 6.5 लाख उम्बत्ता परिवार शामिल भैर डिजिटल प्रक्रिया पूरी कर लेनी है। स्वगणना रा मामला में अव्वल जयपुर जिला में 50,000 उम्बत्ता परिवार स्वगणना पूरी कर लेनी है। सीकर जिलो 32,000 परिवार की स्वगणना सागे दूजा नंबर माथे है। ध्यान योग है कि स्वगणना रो काम 15 मई ताई चलेला। 16 मई 14 जून ताई प्रगणक घर घर जार मकाना री गिनती करेला। इबीच बालोतरा जिला में सगला घरां में स्वगणना पूरी करावन वाला प्रगणका और सुपरवाइजरां रो आज जिला कलेक्टर मान कीनो। भीलवाड़ा रा रूपाहेली टेक्सटाइल पार्क में कारखाना लगावन वाला सारू रिकोरियो रो प्लॉट देवन री प्रक्रिया शुरू करीची है। इना तेत 2,500-36,000 वर्ग मीटर ताई रा प्लॉट मुहैया कराया जावेला। राइजिंग राजस्थान अभियान रा तेत राज्य सरकार सागे करार करन वाला निवेशक रिकोरा ऑनलाइन पोर्टल रे जरिए 14 मई ताई अर्जी दे सके है। ई पार्क माए बुनियादी सुविधा विकसित करण सारू करीब 221 करोड़ रुपया मंजूर करी चिया है। रबे मौसम राज्य रा आतुणी हलका माए घनी जोरदार गर्मी बीच लू बाज रही है। जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा और जोधपुर रा कई हलका माए आज लू बाजनो जिंदगी माथे घणो असर पड़ियो। बाड़मेर माए 47.3, फलौदी माए 46.8, जैसलमेर माए 46.5 और बीकानेर माए 45.3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज करीचियो। कई थोड़ा रात्रि बगती तापमान 30 डिग्री सेल्सियस ऊंचो दर्ज करीचियो। मौसम केंद्र जयपुर रे मुजब दिन और रात्रि बगत तापमान माए बढ़ोतरी आवता 4-5 दिन ताई चालती रेवन रा आसार है। इन दौरान जोधपुर और बीकानेर संभाग माए लू बाजती रेवन री शंका है। इबीचे आवता 48 घंटा माए बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग और शेखावाटी हलका माए कठा कठा तेज आंधी सागर छाटो छिटको वेवन री संभावना है। चित्तौड़गढ़

0: जिला में निम्बाहेड़ा गेला माथे वंडर चौराहा कने आज तड़के अनजान गाड़ी री फेंट में आ जावनु तीन जना री मौके ही मौत वेकी। ए लोग मजूरी कह रर पाछा घरां जा रहा हा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी हर महीना प्रसारित करया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात माय 31 मई ने विचार बतावेला। आ ई कार्यक्रम री 134वीं कड़ी फैला। इन सारू आप ही मुफ्त नंबर 1800117800 माथे 29 मई ताई राय दे सको हो। नरेंद्र मोदी ऐप और माई जीओवी ओपन फोरम रे जरिए ही विचार दिया जा सके है। आखिर माय खास समाचार एक और फिर सुन ले रहो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ मंदिर ने आस्था दिव्यता देश री आत्मा री निशानी बतायो। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व रे मौके प्रदेश में आई खास आयोजन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी देश में हाईवे माथे बिना रुकियां गाड़ियां रा टोल काटन रा नया सिस्टम री शुरुआत कीनी। राज्य रा नौजवाना में विज्ञान और तकनीकी कौशल बढ़ावन सारू ब्रह्मगुप्त पुरस्कार शुरू करण रो ऐलान। और प्रदेश रा अतुनी हल्का में जबरदस्त गर्मी और लू। ईसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो फियो। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7 बजे हैं। लीजिए श्रोताओं अब सुनिए कार्यक्रम चौपाल।

चौपाल कार्यक्रम सुन वाला सभी करसान भाई बरना कथाई आपका साथी जुगल भाई को गुणो गुणो और राम राम। करसान भाई बरनाओ खेती बाड़ी को काम चर खेती बाड़ी का काम मत आपने तय रात और दिन घाणी का बोल के नहीं चाहनी पड़ोगो यदि जारकणों का पंद पड़ेज। ये टाइम गर्मी भी अच्छी पड़ रही है करसान भाई बहनों, ये गर्मी के टाइम पर जो आपन खेत पर जाओ चाह बार साफ सफाई को काम चाल रहे छे और आग आपन खरार भी करेंगा और असाड़ी भी जमाऊंगा घर सु बार कड़ा तो पानी पीर कड़ा रोटी घर कड़ा माता पर स्यापी या सापो जरूर बांधा गर्मी सो बचपा का पूरा पूरा उपाय करा क्योंकि ये टाइम की गाड़ी गर्मी पड़ रही है इसो बचाव ही सब कुछ कर सा। एक साथ साथ ही अपना जो अणबोल्या साथी चे अपना पशु वहाँ को भी खाबा पीबा को आवास की इनकी सारी बातों को बहुत बहुत आपने ताई ध्यान रखानी चाहिए क्योंकि वो कौन सुखेगा वो तो अपना अणबोल्या साथी चे वहाँ की भावना तो आपने ताई सब वहाँ की भावना को तो कदर आपने ताई करनी पड़ो। करसान भाई बनो एक दूसरा का पूरक चा और खेती बाड़ी अब आज की तारीख में खेती जो चे वह तकनीकी की खेती हो बलागी करसान भाई बनो आपने ताई भी आपने खेती में आपना जो औजार चे वहां में सुधार करनी पड़ोगो नई नई तकनीकी आ गई नया नया स्टार्टअप आ गया वहां का माध्यम से ही आपने ताई काम करनी पड़ोगो। करसान भाई बनो आज आपनी सरकार नया नया जो खेती बाड़ी में स्टार्टअप चे वहां शुरुआत करवा कर लेकर भी MSME के तहत और दूसरा योजना के तहत कई लाखा को यो लोन भी दे रही छे और जो करसान भाई पढ़े लिखे छे वो इमें नवाचार भी कर रहा छे और नया नया स्टार्टअप भी शुरू कर रहा छे जिमें नरा तो जो ऐसा निंजा कार्ड स्टार्टअप छे जी मैं करसान भाई बनाओ सब्जी फल सीधा दुकान होटल यहीं पहुंचा बापा अपन काम कर सका छा एग्रो स्टार छे इमें इको माध्यम से खेती की सलाह और सामान की होम डिलीवरी कर सका जा किसान कनेक्ट चे शहरा में सीधा ग्राहक के ताई अपन अपनी ताजी फल सब्जी से जोड़ सका जा सीधा ग्राहक बना सका जा। करसान भाई बनो अपना खुद के ताई भी एग्री बिजनेस अपन घर को अपन शुरू कर सका जा जिमें जैविक खेती चे मशरूम की खेती चे वर्मी कंपोस्ट यूनिट डाल सका चा पोली हाउस इका माध्यम से अपन शिमला मिर्च खीरा ककड़ी ये 12 महीना तैयार कर सका।

चा, मधुमक्खी पालन चे, इको भी आपन काम कर सका चा। ये नया नया स्टार्टअप चे जय शुरू कर रहा अपन अपनी खेती बाड़ी के चार चांद लगा सका चा। जो अपनी पारंपरिक खेती चे इसो अलग हटर यदि आपने काम करेंगा तो आज का ही जमाना में आगे बढ़ सका चा, न तो जहाँ चा वहाँ का वहीं रहेगा, वही दो कणों का पंद पड़ेगा। करसान भाई बनाओ टेक्नोलॉजी वाला बिजनेस भी चे, जी मैं आजकल ड्रोन से स्प्रे करवा की सेवा आपने प्रारंभ करा चा। आज आपने सरकार ने ड्रोन दी दी है ना, इस तरह की आपने किसान बनने भी तैयार करी जो ड्रोन चलाओ, जो ड्रोन का माध्यम से दवाया खेती बाड़ी में छिड़काव को काम करे। सरकार ने आपने हर ग्राम पंचायत स्तर पर या जो भी ग्रुप चाहो किसाना को वो कस्टम हायर सेंटर खोल सके। कस्टम हायर सेंटर वो हो चे जो मशीना आपने पास गांव में उपलब्ध कोई ना, जो महंगी चे, जो ट्रैक्टर आपन न करी सका महंगो चे, असा जो साधन चे वो कस्टम हायर

0: इस बीच जी मैं आजकल ड्रोन से स्प्रे करवा की सेवा आपन प्रारंभ करा चा। आज आपनी सरकार ने ड्रोन दी दी है ना, इस तरह की आपनी किसान बने भी तैयार करी जो ड्रोन चलाओ, जो ड्रोन का माध्यम से दवाया खेती बाड़ी में छिड़काव को काम करे। सरकार ने आपने हर ग्राम पंचायत स्तर पर या जो भी ग्रुप चाहो किसाना को वो कस्टम हायर सेंटर खोल सके। कस्टम हायर सेंटर वो चे जो मशीना आपने पास गांव में उपलब्ध कोई ना, जो महंगी चे, जो ट्रैक्टर आपन न खरीद सका महंगो चे, अस्या जो साधन चे वो कस्टम हायर सेंटर का माध्यम से वहां से आपन किराए पर ले सका चा और आपनो काम समय पर खेती बाड़ी में आपन चला सका चा। यो काम भी आपनी सरकार ने कस्टम हायर सेंटर का माध्यम से खोल रखो चे। फूड प्रोसेसिंग को काम आपन कर सका जा किसान भाई बनाओ, आपन कोई भी चीज बाजार में बेचबा जावा तो उनको प्रोसेस कर रहे दी आपन बेचेगा तो दो पैसा ज्यादा ही मिलेगा। चाहे साग सब्जी को काम हो, चाहे आपन सोयाबीन का प्रोडक्ट हो, चाहे बाग बगीचा में का प्रोडक्ट हो, या साग सब्जी में जहाँ टमाटर चाहिए कि प्योरी बना सका चा, केचप बना सका चा, कई तरह का प्रोडक्ट बना कर कर आपन बाजार में बेच सका चा। तो जो आपनी फसल चे हूँ कहता ही जो टेक्नोलॉजी वाला जो बिजनेस है वहां में आपन फूड प्रोसेसिंग का माध्यम से भी आपन ज्यादा पीसो कमा सका जा। और आजकल तो एक नयो खेती बाड़ी में एग्री टूरिज्म, हाँ किसान भाई बनाओ जब से कोरोना काल आए थे के बाद में लोगा में एग्री टूरिज्म की भावना बढ़ी छे। लोग गांव में जा रहे छे, बड़ा बड़ा फार्म हाउस खोल रहे छे और वहाँ फार्म हाउस पर बढ़िया सुंदर घर बना और वहाँ खेती बाड़ी कर वहाँ कहता है जैविक फल जैविक सब्जियां दूध इन तरह का प्रोडक्ट तैयार कर वहाँ कहता है और गाँव में रात रह रहे छे लोग वहाँ एग्री टूरिज्म का ताई बढ़ाओ मिल रही है और इन तरह का काम अब लोग करवा ला गया चे। तो ये अस्या का काम चे, यदि रोड के पास में बढ़िया आपने पास जमीन चे तो आपन भी एग्रो टूरिज्म में जा सका चा और आपन भी बढ़िया काम कर सका चा। और किसान भाई बनाओ इन टाइम की कद्दू और खीरा वर्गीय फसला में आबार चाल रही है, कद्दू भी आ रही है, लौकी आ रही चे, गिलकी आ रही चे, तुरई आ रही चे, खीरा ककड़ी आ रहा चे, हैं इन तरह का खरबूजा आ रहा चे, तरबूज आ रहा चे। ये जो खीरा वर्गीय जो फसला चा आपनी यहाँ में ये टाइम के बार काई काम करा, कस्या कस्या काम करनी चाहिए और की तरह से यहाँ की देखभाल करनी चाहिए। आपनी चौपाल में चे ऋषि का चौधरी और आप चे विशेषज्ञ उद्यान विभाग के विखे कोटाम, तो सुना यहाँ की बातचीत। किसान भाई बनाओ आज आपनी चौपाल में छे ऋषिका चौधरी और आप छे विशेषज्ञ उद्यान की कृषि विज्ञान केंद्र कोटा। ऋषिका जी माँ की चौपाल में आपको बहुत बहुत स्वागत, राम राम साहब।
1: राम राम सा किसान भाइयों।
0: और सबसे पहले तो यह बात बताओ कि इन टाइम की जहाँ गर्मी चर आग किसान भाई घर अकाई जुताई करवा की असाड़ी जमावा की तैयारी करेगा तो कद्दू और खीरा वर्गीय जो फसला चाहे यहाँ में काई काम कर सके जी किसान भाई?
1: अभी जैसे कि गेहूं और खेत खाली रहते हैं तो हम जैसे पोली हाउस में भी लगा सकते हैं और बेम्बू लगा के बाहर भी इन सब्जियों को लगा सकते हैं
0: जी,
1: जिनसे मतलब अपन को मुनाफा भी ज्यादा होता है और ये जल्दी भी दे देती है हमें फसलें। तो जैसे हम खीरा लगा सकते हैं, खीरा जैसे पोली हाउस में लगाते हैं तो उसमें सब चीजें मेंटेन रहती है, टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है, ह्यूमिडिटी भी अपने अकॉर्डिंग मेंटेन कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं मल्च लगाते हैं। मल्चिंग का क्या काम रहता है कि वो वीड्स को कंट्रोल करती है, जो खरपतवार है वो कम करती है और जो पानी की बचत भी करती है
0: जी।
1: और हम जैसे कुकुम्बर और ये जो चीजें लगाते हैं हम ड्रिप से लगाते हैं। ड्रिप से क्या होता है कि पानी सेव होता है, बूंद से बूंद गिरता है
0: जी।
1: तो वेस्ट भी नहीं होता पानी, और फसल के लिए भी अच्छी होती है। ज्यादा पानी दोगे तो वो फसल भी जो मीठापन होता है उन्हें वो टेस्ट नहीं आ पाता। तो उसमें बूंद से बूंद गिरता है तो प्रॉपर अमाउंट में पानी मिलता है उनको, और पानी के थ्रू हम खाद भी देते हैं। जैसे फर्टिलाइजर को अगर पानी के साथ मिक्स करें तो लिक्विड फर्टिलाइजर बोलते हैं, जैसे वेजिटेटिव स्टेज पे हम देते 19-19-19
0: जी,
1: और जैसे फ्लावरिंग स्टेज होता है

0: तो 12 61 0, और जब फ्रूट आ जाते हैं तब 0 0 50 देते हैं, जिससे फ्रूट भी अच्छी क्वालिटी में होते हैं, टेस्ट में भी अच्छे होते हैं, और इसके अलावा हम उसमें वीट को कंट्रोल करते हैं। और कुकुम्बर लगाने से पहले हम उसमें क्या करते हैं, काली पॉलिथीन लगा देते हैं, जिससे क्या होता है कि सूरज की किरणें पड़ती है तो वो जो भी बीमारियाँ है, जो भी कीटनाशक, वो उनको मार देती है। और हम इसमें गुड़ाई उड़ाई भी कर लेते हैं, तो उसमें हम जैसे वर्मी कंपोस्ट और जैसे आजकल चल रहा ट्राइकोडर्मा, इनको मिक्स करते हैं। उससे पहले क्या करेंगे कि जैसे 2 कट्टे हमने वर्मी के लिए, और कुछ मतलब जैसे 2 थैलियां जो 2 2 किलो की आती है ट्राइकोडर्मा डालेंगे, उनको मिक्स करेंगे तो ट्राइकोडर्मा उसमें और बनने लगेंगे, तो उससे क्या है ना उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी और बीमारियां नहीं आएगी और पैदावार भी अच्छी होगी। तो मिक्स करके फिर गुड़ाई उड़ाई करके उसमें डाल देते हैं
1: जी।
0: फिर हम खीरे जो फसल है वो बैल से चढ़ाई जाती है, तो जो सिंगल बैल सिंगल स्टेम जो होती है वो ज्यादा सही रहती है, और उसमें जब साइड शूट्स जो आ जाते हैं तो उनको भी रिमूव कर देना चाहिए।
1: जी, जी।
0: खीरा ऐसा फसल है कि हमें बहुत उसमें फ्रूटिंग होती रहती है।
1: और फिर अब इस समय तो जैसे शादी ब्याह ये
0: इनमें मांग भी ज्यादा रहती है, तो गर्मियों में जैसे कीड़े भी कम आते हैं क्योंकि इतनी ह्यूमिडिटी होती नहीं है, बारिश में जैसे कीड़े भी ज्यादा आएंगे तो उसके लिए कंट्रोल करने के लिए हमें केमिकल्स भी डालना पड़ेगा। तो गर्मियों में क्या है कीड़े नहीं आएंगे तो हमें वो केमिकल्स भी नहीं डालना पड़ेगा। और वैसे भी आजकल जो अभियान चल रहा है संतुलित उर्वरकता, तो उसमें यही बताया है कि हमें कम से कम DAP यूरिया डालना है, क्योंकि इससे पहले हम क्या करवा सकते हैं, सोइल टेस्टिंग भी करवा सकते हैं। सोइल टेस्टिंग से पता लग जाएगा कि हमारे मिट्टी में क्या कमी है, हम वही डालें। अपन क्या करते हैं दूसरों को देख के ज्यादा कि हमारे पड़ोसी ने इतना डाला तो हम उससे ज्यादा डालेंगे, इससे ज्यादा पैदावार होगी, बल्कि ऐसा कुछ नहीं होता। हमें जितनी उसकी कमी है ना उतना ही डालना है। जैसे हम रोटी खाते हैं जिसकी 2 रिक्वायरमेंट है वो 2 ही खाएगा, ज्यादा डालने से वो नुकसानदायक
1: है। और ऋषिका जी बात कर रहे अपन खीरा वर्गीय कद्दू वर्गीय फसल, तो इस टाइम की जो किसान भाई बन छे जका खेत खाली छे तो खीरा वर्गीय इमा कसी कसी फसल बो सके जबारी,
0: जैसे खीरा बो सकते हैं, तोरई बो सकते हैं, टिंडा भी बो सकते हैं, और जो बाहर से जो एक सब्जी आई है जुगनी,
1: अच्छा
0: हाँ, जो मतलब एक कद्दू ही होता है, कद्दू की प्रकार की होती है लेकिन लंबी होती है वो,
1: अच्छा अच्छा,
0: जिसको अपन जैसे सलाद वलाद में भी खा लेते हैं और सब्जी भी बनती है, और बल्कि बहुत अच्छी सब्जी बनती है। और करेला भी लगा सकते हैं, करेला तो ऐसी फसल है जिसमें बीमारियां भी कम होती है, जैसे कड़वी चीज है तो कड़वी में जो जानवर है वो भी कम खाना तो इसमें बीमारियां कम होती है और अच्छी फसल होती है, पैदावार भी अच्छी देती
1: है। तो ये आभारी टाइम की जैसे बीज का माध्यम से या नर्सरी तैयार करनी पड़ेगी,
0: सब में अलग अलग चीजें होती है।
1: अच्छा,
0: जैसे हम टमाटर है, टमाटर की हम नर्सरी तैयार करते हैं, एक स्ट्रक्चर आता है जिसको बोलते हैं प्रोट्रे, उसमें 98 सेल्स होते हैं, मतलब छेद होते हैं, छोटे छोटे ढक्कन जैसे होते हैं, तो उसमें अपन उसका सीड लगाएंगे। उसमें हम क्या करते हैं जैसे वर्मिक्यूलाइट, परलाइट, कोकोपीट और सैंड, ये मिक्सचर होता है
1: जी।
0: तो इसमें क्या होता है कि इनकी ये प्रॉपर्टी होती है, इन जो अपन डालते हैं वर्मिक्यूलाइट परलाइट, ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी अच्छी होती है, और तो इसमें हम तैयार कर लेते हैं। फिर उसके बाद मतलब 1 महीने बाद उसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं, या तो ओपन फील्ड में कर सकते हो या फिर पोली हाउस में कर सकते हो। इससे क्या होगा कि हम जैसे नर्सरी से भी हम मुनाफा पा सकते हैं, अपन जैसे बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं, दूसरे अपने दोस्त अपने परिवार में भी दे सकते हैं, या फिर पड़ोसी आस पड़ोसी में
1: नर्सरी तैयार करके भी पैसा कमा सकते हैं किसान भाई बहन अन्य किसान, क्योंकि नर्सरी यदि महीना भर पहले की होगी तो उनकी फसल भी जल्दी आओगी, है ना
0: जी,
1: यो भी तो दो
0: नर्सरी से जो सीड डाल के पौध तैयार करते हैं उसको सीडलिंग बोलते हैं, तो सीडलिंग भी अपन इस मार्केट में बेच सकते हैं, तो ये भी एक अच्छा माध्यम है कमाने का। नर्सरी का तो अभी बहुत आने वाले जमाने में बहुत चलन चल रहा है
1: जी जी।
0: तो जैसे टमाटर की भी कर सकते हैं, खीरे की भी कर सकते हैं, जो सीड से फिर ट्रांसप्लांट कर देंगे हम पोली हाउस में या फिर ओपन फील्ड में भी कर सकते हैं।
1: जो खीरा वर्गीय जो अबार फसला है, जैसे आपने की कभी तुरई बीच है, लौकी बीच है, टिंडा बीच है, ये सब फसला जो करसान लगा रखी है जाकि अबार फसल चाल रही।

0: वाकई कोई हारी बीमारियां उत्पन्न हो सके जी टाइम की?
1: वैसे तो बीमारियां तो नहीं लगेगी क्योंकि बारिश के समय होती है, बट फिर भी जैसे जो सकिंग इंसेक्ट्स होते हैं कई बार वो लग जाते हैं। कई बार क्या हो रहा है कि टेम्परेचर में इतना चेंजेस आ रहा है कि कभी इतनी गर्मी पड़ती है, हाँ, कभी एकदम से बारिश आ जाती
0: जी,
1: है
0: जी, जी, जी।
1: तो उस समय ये चीजें हो सकती है। फिर हमें जो कि ये जो देखते हैं बीमारियों का जो इंसेक्ट पेस्ट का देखते हैं वैज्ञानिक, हमें उनसे संपर्क करना चाहिए कि इसमें ये बीमारी लगी तो क्या डाले
0: जी, जी।
1: किसानों को मतलब पूछ के ही करना चाहिए, अपने मनमर्जी से नहीं करना चाहिए।
0: बहुत बढ़िया। अच्छा आप ऋषिका जी एक बात और, जैसे फसल कोई भी हो प्रसंस्करण करके यदि आपने कोई बेचा तो उनको पीसो तो ये कद्दू वर्गीय या सब्जी है प्रसंस्करण की महत्ता चाहिए?
1: हाँ हम इनमें भी कर सकते हैं। जैसे हम जैसे बहुत सारे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है, जैसे बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, जैसे करेले का जूस भी बनता है, और भी जैसे टमाटर से हम केचप सॉस, ये जैसे देखते हैं कृषि विज्ञान केंद्र पे फूड प्रोसेसिंग यूनिट भी है, वहाँ पे ये चीजें बनाई जाती है। तो अगर अच्छी पैदावार देंगे तो हम वैल्यू एडिशन से भी अच्छा कमा सकते हैं।
0: अच्छा, अच्छा।
1: जो आजकल सिस्टम चल रहा है कि एग्री मतलब सोइल टू स्पून, तो ये चीजें हम अच्छे अगर पैदावार होगी तो वो क्वालिटी अच्छी बनेगी, वैल्यू एडिशन भी अच्छा होगा।
0: तो एक जैसे फल यदि एक जैसी सब्जी होगी तो बाजार में उनको भाव भी ज्यादा मिलेगा,
1: भाव भी ज्यादा होगा।
0: और वो देखे थे ना जो मार्केटिंग करे छे वो बढ़िया सुंदर सुंदर पहले सजा के आगे रखे छे बाकी सब्जी, तो अच्छो देकर ही लोग बात करे, तो प्रसंस्करण कर यदि अपनी सब्जियां भी बेचा तो अपना किसान भाई रुपया दो रुपया पांच रुपया ज्यादा ही ले सके छे।
1: जी जी। अब जैसे कोरिएंडर है, धनिया है, गार्लिक है, तो इनके भी बहुत सारे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है। जैसे धनिया के बिस्किट बन रहे हैं, धनिया की बर्फी बन रही है
0: जी।
1: तो ऐसे कई चीजें हैं जिनसे अपन मुनाफा पा सकते हैं।
0: बहुत बढ़िया।
1: बस एक अच्छी दिशा चाहिए होती है किसान भाइयों को, वरना किसान भाई तो हर चीज में आगे है।
0: बहुत बढ़िया। अंत में जो ये किसान भाई बहन आपकी बातचीत सुन रहे थे, यहाँ कहता है सलाह का रूप में संदेश का रूप में टाइम की जो आपने कद्दू वर्गीय खीरा वर्गीय जो फसला छे इमें काई ध्यान रखना चाहिए, विशेष काई संदेश देवो चाहो जो काई कबो चाहो?
1: मैं यही कहना चाहती हूँ किसान भाइयों को कि हमें एक ही खेती पे निर्भर नहीं रहना चाहिए, हमें अलग अलग चीजें करनी चाहिए। जैसे हम उद्यानिकी में जैसे अमरूदों के बीच में हल्दी लगा सकते हैं, उससे क्या होगा कि आप जैसे अमरूद फ्रूटिंग आएगी तो हम अमरूद बेच देंगे, जब वो खत्म हो जाएंगे या फिर उसी के बीच में हम हल्दी भी दे सकते हैं। हल्दी में भी वैल्यू एडिशन होता है, जैसे उससे हल्दी पाउडर बनता है, और जैसे करेला ये चीजें भी करनी चाहिए क्योंकि इंटीग्रेटेड अप्रोच होनी चाहिए, तो वो रेगुलर अपन को इनकम आती रहेगी।
0: बहुत बढ़िया। ऋषिका जी आपने आकाशवाणी कोटा से बात करी, इनके लेकर आपका ताई बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सर।
1: धन्यवाद सर। राम।
2: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में, अरे वाह।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: और किसान भाई बनाओ खेती बाड़ी को काम चर, खेती बाड़ी का काम मत हो, लोक गीत न हो, श्याम की को टाइम चे, और पंचीड़ा की तरह अपन खेता के आडिसो घर आडी लोटा चा, ठंडी ठंडी बाढ़ शुरू हो जाए चे, और सारा जीव भी अपना अपना घर की आडी लोटे चे। करसान भाई बनाओ माटी सब कुछ, ये माटी में माटी होगा मलर काम करेगा, जब भी यो खेत आपनो साथ देगा, और की बीच न आखिरी में भी काम करता करता माटी में ही मलनी पड़े चे, तो माटी में मिल जाना रे हरि बल्लभ वैष्णव और सात्या को गायो, बहुत ही बढ़िया भजन, प्रेरणादायक भजन, माटी में मिल जाना रे बंदे।
5: और माटी में मिल जाना रे प्राणी, और माटी में मिल जाना

क्या तन माज तारे एक दिन माटी में मिल जाना। बहुत ही बढ़िया प्रेरणादायक भजन आप लोगों ने सुनो। करसान भाई बनाओ एकीकृत कीट प्रबंधन, कीड़ा मकोड़ा को प्रबंधन की तरह सु करा, इनकी जो तैयारी चे वह अपने अभाण सु कर सका। इनके लेकर पांच मुख्य बिंदु चे, पांच

मुख्य सिद्धांत छे। सबसे पहले तो कीड़ा मकोड़ा की रोकथाम, यो ही सबसे बड़ो महत्वपूर्ण काम। अब इन रोकथाम का लेकर इन टाइम की आपन काई काम कर सका छा, करसान भाई बनाओ इन कीड़ा मकोड़ा की आग न आओ, यहाँ की रोकथाम का लेकर गर्मी में गहरी जुताई करा, ताकि वो गहराई से जो मिट्टी का कीड़ा छे उमे जो पीपा जो पैदा हो गया वो धूप से मर जाओ छे, और वो मर जाओगा तो आग वाकत आए आग बढ़बा को समय न मिलोगो। दूसरा जो किस्म आपन बाहोचा वहां को अस्यो चयन करा कि जो रोग रोधी होनी चाहिए, जैसे धान की फसल छे पूसा बासमती 17-18 जो ब्लास्ट रोग आओ छे आपन उसे वह सुरक्षित छे। चौथी बात करसान भाई बनाओ का अपने ताई हमेशा फसल चक्र अपने चाहिए। एक खेत में लगातार एक ही एक फसल यदि अपन बाऊंगा तो उमे कीड़ा मकोड़ा आबा की ज्यादा संभावना छे। फसल यदि बदल बदल बाऊंगा तो उमे कीड़ा मकोड़ा आबा की भी कम संभावना छे और फसल भी छोकी हो छे। सर्दी में और अटी बरसात की जो आपन फसला बाऊचा उनका ऐसा न कटी तो अपना धान और सोयाबीन धान और आज आपन देख रहे हैं सोयाबीन की स्थिति का योगी धान में भी कतने आरी बीमारियां बला। तो जी खेत में अस धान बाई चे उमे और चीज बावा, जी में पहली सरसों सोयाबीन बाई ची उमे धान लगावा, ऐसा उलट पुलट करता ना फरती फसल बाता ना तो यह कीड़ा मकोड़ा पर अपन नियंत्रण कर सका जा। दूसरी सबसे बड़ी बात चे वह अपने हाथ में करसान भाई बनाओ का आपने ताई निगरानी। हाँ, जो करसान भाई बन खेत की परिक्रमा करतो रहो, खेत पर जातो रहो, फसल का ताई देखतो रहो तो उनकी फसल सबसे बढ़िया रह चे, क्योंकि वो रोज उनका ताई देख चे कहीं कीड़ा मकोड़ा तो ना गया। तो यदि आपन निगरानी तंत्र मजबूत रखानेगा तो भी आपन अपनी फसल का ताई बचाव मजबूत कर सका जा। दूसरा आजकल या कीड़ा मकोड़ा से बचा पा कर लेकर भी आपने यांत्रिक चीजें आ गई, जिमें आपने फेरोमन ट्रेप चे लाइट ट्रेप चे जो लाइट यूसु कीड़ा मकोड़ा आकर्षित हो और उमे बंद हो जाओ चे। और भी कई कारण चे जैविक नियंत्रण, जैविक नियंत्रण में अपन रासायनिक दवा दे दे रासायनिक दवा दे दे अपना जो भाई लाचा आपनी चिड़िया आपना जो पक्षी चा जो खेत की वहां का कीड़ा मकोड़ा खाओ चा फसल का और आपनो साथ दे चा वहां का ताई आज आपन ने खत्म कर दियो। और यही कारण चेक आपन ताई वापस से जैविक खेती के आनी पड़ोगो, ताकि ये जो अपना साथी चे ये साथी भी आपनो साथ निभा सके और यहाँ को भी आपन साथ निभा सका। तो जैविक खेती रासायनिक दवा को कम से कम प्रयोग करा और जैविक खेती के आड़ी आपन ले रावा। और आखिरी चे को जो आपने रासायन नियंत्रण जरूरी चे करसान भाई, जो दवा को अंधाधुन जो आपन प्रयोग कर रहा चा ईसु आपना खेत की मिट्टी या अपनी फसल पे असर न हो रो, ईसु मनुष्य का स्वास्थ्य पर यानी पूरी पृथ्वी पर जलवायु पर पानी पर पशु पर पक्षी पर सब ईसु दुखी होता जा रहा। यदि आपन न ताई मनुष्य जीवन बचाणो छे, ई धरती माता के ताई बचाणो छे, अपना खेत की माटी के ताई बचाणो छे और अपना परिवार के ताई स्वस्थ रखाणो छे, तो आपने ताई रासायनिक दवा को कम से कम प्रयोग करनी पड़ेगो। और जीवन में यो लक्ष्य बनानी पड़ेगो कि जो अपना पशु चा गाय बल बसिया यहाँ के ताई वापस से पालनी पड़ेगो और यहाँ का गोबर के ताई खेत में डालनी पड़ेगो। और जैविक खेती के आड़ी जब ताई आप नाऊंगा जहाँ ताई अपना अपना परिवार के साथ अपना स्वयं का स्वास्थ्य के साथ और देश के साथ भी न्याय न कर पाऊंगा। जी देश का खेती बाड़ी स्वस्थ चे वो देश का लोग मस्त चे, जी देश का लोग बाग स्वस्थ रहेगा तो
तू देश अपना आप निश्चित रूप से प्रगति करोगो और प्रगति भी वही करे छे जे स्वस्थ रह छे। न तो अपना शरीर में भी यदि हारी बीमारियां छे तो अपनी खेती बाड़ी उसे फेल हो जाओ छे। करसान भाई बहनों गोलियां दवाया खाबा में टाइम कट जाओ छे। तो आपने ताई जीवन में यह लक्ष्य बनावा का आपने ताई जो कीट नियंत्रण प्रबंधन छे उनको अभान सुई शुरुआत करनी पड़ेगी।

घर में की गहरी इकाई करनी पड़ेगी, यहाँ से शुरू ले और रासायनिक दवा को कम से कम प्रयोग करेगा वहां तय अपना तय चालनी पड़ेगो। यदि जार अपन अपना परिवार अपना समाज और अपना देश के साथ न्याय कर पाऊंगा और ये देश के तय वापस से स्वस्थ बना पाऊंगा तो ये बात को अपन विशेष दिया। घड़ी की सुई करे चेक चौपाल कार्यक्रम को टर्म पूरा हो गयो। आपका साथी जुगल भाई कहता है आज्ञा दियो। राम राम।

अभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम चौपाल। यह आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है, FM 102, FM 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज़ पर। लीजिए अब सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम लोक संगीत।

लोक गायिका रेखा राव के सुरों में अभी आपने सुना ये खूबसूरत सा लोक गीत। लीजिए अब सुनिए सीमा मिश्रा और राकेश काला के सुरों में अगला लोक गीत।

श्रोताओं, अभी आपने सुना सीमा मिश्रा और राकेश काला की आवाज में ये खूबसूरत लोकगीत। अब कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। नमस्कार कोटा कार्यक्रम में मंगलवार दिनांक 12 मई 2026 को प्रातः 7 बजे से 7:30 के मध्य आप सुनेंगे हमारी अतिथि विशेषज्ञ श्रीमती अभिलाषा जैनवियर के साथ भेंट वार्ता, जिसका विषय है नर्सिंग एक सेवा कार्य। इस बातचीत में अतिथि विशेषज्ञ के साथ भेंट की है राजेश महावर ने। अवश्य सुनिएगा चंबल चैनल का सूचनाओं पर आधारित सुबह सवेरे का ये कार्यक्रम नमस्कार कोटा। समय है प्रातः 7 बजे से। कार्यक्रम संबंधी सूचना यहीं समाप्त होती है।

लोक गायिका रेखा राव के सुरों में अभी आपने सुनी लोक रचना। लीजिए अब पेश है सीमा मिश्रा और साथियों की आवाजों में अगला लोक गीत।

फिल्म संगीत कार्यक्रम में पहला नगमा आपको सुनवा रहे हैं कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में खूबसूरत फिल्म से। गीत के बोल हैं गुलजार के और धुन बनाई है जतिन ललित ने।

अभी आपने सुना जख्म फिल्म से अलका याग्निक के सुरों में ये खूबसूरत नगमा। गीत के बोल आनंद बख्शी के और धुन बनाई एमएम करीम ने।

समीर का लिखा और संजीव दर्शन की धुन से सजा अलका याग्निक के शुरू में अभी आपने सुना तलाश फिल्म का ये गाना। लीजिए अब पेश है अजनबी फिल्म से उदित नारायण और अलका याग्निक के शुरू में ये गाना।

अजनबी फिल्म से उदित नारायण और अलका याग्निक के सुरों में भी आपने सुना ये खूबसूरत सा गीत। गीत के बोल लिखे समीर ने और धुन बनाई अनु मलिक ने।

समीर का लिखा और नदीम श्रवण की धुन से सजा दिल का रिश्ता फिल्म से गीत आपने सुना अलका याग्निक और कुमार सानू के शुरू में। अब सुनिए कार्यक्रम संबंधी सूचना। नमस्कार, कोटा कार्यक्रम में मंगलवार दिनांक 12 मई 2026 को प्रातः 7 बजे से 7:30 के मध्य आप सुनेंगे हमारी अतिथि विशेषज्ञ श्रीमती अभिलाषा जैनवियर के साथ भेंट वार्ता, जिसका विषय है नर्सिंग एक सेवा कार्य। इस बातचीत में अतिथि विशेषज्ञ के साथ भेंट की है राजेश महावर ने, तो सुनिएगा अवश्य चंबल चैनल का सूचनाओं पर आधारित सुबह सवेरे का ये कार्यक्रम नमस्कार कोटा प्रातः 7 बजे से। इसी के साथ कार्यक्रम संबंधी सूचना समाप्त हुई।

अभिजीत की सुरीली आवाज में अभी आपने सुना खूबसूरत फिल्म का ये गाना, गीत के बोल गुलजार के और धुन जतिन ललित की। लीजिए अब सुनिए कुमार सानू और अलका याग्निक के सुरों में हम है राही प्यार के फिल्म का ये नगमा।

हम है राही प्यार के फिल्म का ये गाना आपने सुना कुमार सानू और अलका याग्निक के सुरों में, गीत के बोल समीर के और धुन नदीम श्रवण की।

अनुराधा पौडवाल और सोनू निगम की आवाज़ों में अभी आपने सुना हम किसी से कम नहीं फिल्म का ये गाना, गीत के बोल आनंद बख्शी के और संगीत अनु मलिक का। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। FM 102, FM 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल का प्रसारण है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या का अगला अंक। प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को दशक के सबसे बड़े संकटों में से बताया। सरकार ने कहा, पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी की। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व सरमा कल असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये राज्य में एनडीए का लगातार तीसरा कार्यकाल होगा। मौसम विभाग ने गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल लू चलने का अनुमान व्यक्त किया और भारतीय पुरुष टीम वनडे क्रिकेट टीम रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर बरकरार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम एशिया संघर्ष को एक दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े।
1: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
0: प्रधानमंत्री ने लोगों से 7 सूत्रीय अपील को अपनाने का आग्रह दोहराया।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। उन्होंने नागरिकों से स्वदेशी उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करने का आह्वान किया। इससे पहले प्रधानमंत्री सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल हुए। श्री मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि लगातार आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बना रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र अपनी जड़ों से जुड़ा रहकर ही लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है।
1: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
0: प्रधानमंत्री ने सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75 रुपए का विशेष सिक्का भी जारी किया। केंद्र सरकार ने कहा है कि पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां संघर्ष शुरू होने के 70 दिन के बाद भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर हैं। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा

0: तेल शोधक और पेट्रोलियम उत्पादों का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है। सरकार ने कहा कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अधिकारियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपीलों को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ने लोगों से मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कार पूलिंग को अपनाकर पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने का आग्रह किया था। उन्होंने एक वर्ष के लिए विदेश यात्रा टालने जैसे विवेकपूर्ण खर्च पर दोबारा सोचने का आग्रह नागरिकों से किया था। श्री मोदी ने एक वर्ष के लिए विदेशों में कार्यक्रम आयोजित करने या अत्यधिक सोने की खरीदारी को सीमित करने का भी आग्रह किया था। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों से रासायनिक उर्वरकों का उपयोग 50% तक कम करने, प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को अपनाने का आग्रह किया। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने कहा है कि देश भर में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और घरेलू एलपीजी की आपूर्ति निरंतर जारी है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं को ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की है।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
0: रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि देश में उर्वरकों का पर्याप्त भंडार है।
3: For the season of खरीफ 2026,
4: खरीफ 2026 सीजन के लिए उर्वरकों का भंडार 51% से अधिक उपलब्ध है। प्रमुख उर्वरकों की अधिकतम खुदरा मूल्य MRP में भी लगभग स्थिरता बनी हुई है। संकट काल के बाद देश में उर्वरकों का घरेलू उत्पादन 76.78 लाख मीट्रिक टन रहा है, जबकि आयात के माध्यम से 19.94 लाख मीट्रिक टन उर्वरक प्राप्त हुए हैं। संकट की स्थिति के बाद लगभग 97 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।
0: कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी देशवासियों से प्रधानमंत्री की 7 अपीलों का पालन करने का आग्रह किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोगों और कारोबारियों से विदेशी मुद्रा की आवश्यकता वाली वस्तुओं पर खर्च कम करने का आग्रह किया। वहीं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी कर दी है। ये अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देशभर में लागू हो जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि देशभर में इसके कार्यान्वयन के लिए वर्तमान वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
2: विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इसके अलावा यह अधिनियम समय पर मजदूरी के साथ साथ पारदर्शी और जवाबदेह भुगतान पर जोर देता है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आज ही के दिन वर्ष 1998 में पोखरण में 3 परमाणु परीक्षण किए गए थे। उन्होंने बताया कि पिछले एक दशक में देश में स्टार्टअप्स के साथ रक्षा उत्पादन और निर्यात में कई गुना वृद्धि हुई है।
3: वर्ष 2014 में हमारे पास 350 से 400 स्टार्टअप थे। आज हमारे पास 2 लाख से अधिक स्टार्टअप हैं। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में हम दुनिया में तीसरे स्थान पर हैं। सिर्फ एक दशक में हमारा रक्षा उत्पादन 174 गुना बढ़कर 1,54,000 करोड़ रुपए हो गया है और हमारा रक्षा निर्यात भी एक दशक में 34

0: अपना बढ़कर 23,622 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है।
1: अप टू 23,622 करोड़।
2: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बाघ, शेर, चीता जैसे बिग कैट्स के संरक्षण के लिए कॉरपोरेट फंडिंग बहुत जरूरी है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि भारत अगले महीने राष्ट्रीय राजधानी में पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसका उद्देश्य बाघ, शेर, चीता और हिम तेंदुआ सहित 7 प्रमुख बिग कैट्स की प्रजातियों का संरक्षण करना है।
0: IBCA प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक पहल है बिग कैट्स के संरक्षण के महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे कि उनके रहने के ठिकाने, तकनीक आधारित निगरानी, सामुदायिक संरक्षण, क्षमता निर्माण और संरक्षण के प्रति जागरूकता को सहयोग देने के लिए कॉर्पोरेट जगत का साथ बेहद महत्वपूर्ण है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप इन बिग कैट्स को बचाने के लिए आगे आएं।
3: टू कम फॉरवर्ड टू सेव द बिग कैट्स।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। असम में कल हेमंत बिस्व सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसी के साथ श्री सरमा लगातार दो बार मुख्यमंत्री बनने वाले पहले गैर कांग्रेसी नेता बन जाएंगे। ये राज्य में एनडीए का लगातार तीसरा कार्यकाल होगा। पुदुचेरी में बुधवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉक्टर मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। राज्य में नई गठित सरकार के बाद पहली मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की पिछली सरकार ने घुसपैठ को बढ़ावा देने के लिए जमीन रोक रखी थी। राज्य में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना सहित कई अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन की भी घोषणा की गई। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
4: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 76,015 पर बंद हुआ। निफ्टी 23,816 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 83 पैसे की गिरावट दर्ज करते हुए 95.31 रूपए प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ।
2: मौसम विभाग ने गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल लू चलने की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 4-5 दिन तक रात में गर्मी रहने की संभावना है। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में अगले 2-3 दिन में अधिकतम तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। इस बीच असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले 2 दिन में तेज वर्षा हो सकती है। दिल्ली में कल बादल छाए रहने और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC की एक दिवसीय टीम रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। आज जारी की गई रैंकिंग में न्यूजीलैंड पर भारत की बढ़त 8 अंक से घटकर 5 रह गई है। भारत 1 अंक के नुकसान के साथ 119 अंक से घटकर 118 पर आ गया है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लड़कियों के अंडर 17 वर्ग में आज 8 मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गए। हालांकि 4 भारतीय मुक्केबाजों को आज सेमीफाइनल में हार के बाद कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक पंजाब किंग्स ने 15 ओवर में 2 विकेट पर 149 रन बना लिए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरे कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग शामिल होंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताया। सरकार ने कहा पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा LPG का 45 दिन का भंडार उपलब्ध। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी की। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व सरमा कल असम के

0: मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 9 बजे हैं। लीजिए, अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम बदलते साथी।

श्रोताओं, फिल्म संगीत के कार्यक्रम बदलते साथी में आज के हमारे मुख्य कलाकार हैं अभिजीत भट्टाचार्य। तो इनके साथ हम आपको सुनाने वाले हैं अन्य साथियों के गाने। तो लीजिए, पेश है पहला गीत। यस बॉस फिल्म से अभिजीत और अलका याग्निक के सुरों में, गीत के बोल लिखे जतिन ललित ने और संगीत है जावेद अख्तर का।

अलका याग्निक और अभिजीत की सुरीली आवाजों में यस बॉस फिल्म का ये गाना आपने सुना, गीत के बोल जावेद अख्तर के और धुन जतिन ललित की। लीजिए अब सुनिए अगला गाना।

जावेद अख्तर का लिखा और जतिन ललित के संगीत से सजा चलते चलते फिल्म का ये गाना आपने सुना अभिजीत और अलका याग्निक के सुरों में। लीजिए अब पेश है

दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म से आशा भोसले और अभिजीत की आवाज में खूबसूरत गाना आपने सुना, गीत के बोल आनंद बख्शी के और संगीत जतिन ललित का। इसी के साथ अब सुनिए एक था राजा फिल्म से अभिजीत और ज्योति की आवाज में समीर का लिखा और आनंद मिलिंद की संगीत से सजा ये गाना।

खिलाड़ी फिल्म का अभिजीत, उदित, कविता और सपना के साथ अन्य साथियों की आवाज़ों में ये गाना आपने सुना। गीत के बोल श्याम राज के और संगीत जतिन ललित का। इसी के साथ अब सुनिए मैं हूं ना फिल्म से अभिजीत और श्रेया की आवाज़ों में जावेद अख्तर का लिखा और अनु मलिक की धुन से सजा ये गाना।

खिलाड़ी फिल्म का अभिजीत और अलका की आवाज में ये गाना आपने सुना। गीत के बोल लिखे अनवर सागर ने और धुन बनाई जतिन ललित ने। लीजिए अब सुनिए अलका याग्निक और अभिजीत की आवाज में बादशाह फिल्म का ये गाना।

समीर का लिखा और अनु मलिक की धुन से सजा अलका याग्निक और अभिजीत की आवाज में बादशाह फिल्म का ये गीत आपने सुना। अब श्रोताओं कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। नमस्कार कोटा कार्यक्रम में मंगलवार दिनांक 12 मई 2026 को प्रातः 7 बजे से 7:30 के मध्य आप सुनेंगे हमारी अतिथि विशेषज्ञ श्रीमती अभिलाषा जैनवियर के साथ भेंटवार्ता, जिसका विषय है नर्सिंग एक सेवा कार्य। इस बातचीत में अतिथि विशेषज्ञ के साथ भेंट की है राजेश महावर ने, तो सुनिएगा अवश्य। चंबल चैनल का सूचनाओं पर आधारित सुबह सवेरे का यह कार्यक्रम नमस्कार कोटा प्रातः 7 बजे से। कार्यक्रम संबंधी सूचना यहीं समाप्त होती है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत बदलते साथी। लीजिए अब पेश है अगला गाना।

यस बॉस फिल्म से अभिजीत और अलका याग्निक के सुरों में एक खूबसूरत गाना आपने सुना। गीत के बोल लिखे जावेद अख्तर ने और धुन बनाई जतिन ललित ने। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम बदलते साथ ही यहीं समाप्त होता है। FM 102, FM 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 KHz पर ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं विविध भारती मुंबई के कार्यक्रमों का प्रसारण कुछ ही पलों में।

0: ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों में।
1: पश्चिमी संघर्ष को एक दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है।

छाया गीत के सुनने वालों को जयंत का नमस्कार।

देखा है, जिस दिल में एक सपना सा जागा है।

नजरों ने नजरों से जो कह दिया है सब कुछ, तो अब पर्दा किस बात का है। अनजान थे कल, आज दिल के इतने करीब हो, तो फिर पर्दा किस बात का है।

दिल की बातें हैं, ये कोई पानी पे लिखी इबारत नहीं है। संभाले हैं दर्द एक दूजे के, ये कोई तिजारत नहीं है।

0: हो कसम
1: खाती हूँ कसम
0: खाती हूँ कसम।
2: छाया गीत के बाकी गीत इस अंतराल के बाद।

0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया की।
1: रोक लो अपनी मस्त अंगड़ाई, दोनों आलम न टूट जाए कहीं।

कुछ इस तरह से जुड़े हैं दिल से दिल के तार, बस मुस्कुरा भर देते हो और ढह जाता है शिकवों का अंबार।

खिल उठी है रात रानी की खुशबू तेरी सांसों में, इस मदहोशी का क्या करें। एक होने को बेताब है तन और ये मन, दिलों की गर्मजोशी का क्या करें।

0: विविध भारती मुंबई के कार्यक्रमों का प्रसारण अभी आपने सुना। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। FM 102, FM 103.6 मेगाहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज़ पर। लीजिए श्रोताओं, अब सुनिए हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से कुछ ही पलों में, प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम एशिया संघर्ष को एक दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताया है। उन्होंने राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से 7 सूत्री अपील को अपनाने का आग्रह दोहराया।
2: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दो

0: दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले।
1: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। इससे पहले प्रधानमंत्री सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल हुए श्री मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि ये आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बनेगा। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75 रूपए का विशेष सिक्का भी जारी किया। केंद्र सरकार ने कहा है कि पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन और एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में हुई मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां पश्चिम एशिया संघर्ष शुरू होने के 70 दिन के बाद भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। सरकार ने कहा कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता ऊर्जा सहयोग सहित द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नीदरलैंड जाएंगे, जहां वे किंग विलियम अलेक्जेंडर, क्वीन मैक्सिमा और प्रधानमंत्री रॉब जेटन से मिलेंगे। तीसरे चरण में प्रधानमंत्री स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंचेंगे, जहां वे प्रधानमंत्री उल्फ किस्टरसन के साथ व्यापार, हरित ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती तकनीकों समेत कई क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। इस दौरान भारत और नॉर्डिक देशों के बीच तकनीक, हरित ऊर्जा, रक्षा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री इटली जाएंगे, जहां वे राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये यात्रा यूरोप के साथ भारत के व्यापार और निवेश संबंधों को और मजबूत करेगी। प्रवर्तन निदेशालय ने आज पश्चिम बंगाल सरकार के पूर्व अग्निशमन और आपातकालीन सेवा मंत्री सुजीत बसु को दक्षिण दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता से गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान नगर पालिका में नौकरी दिलाने के बदले सुजीत बसु पर धन और अन्य लाभ लेने का आरोप है। असम में कल हेमंता बिस्व सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के निमंत्रण पर 13 से 15 मई तक चीन की यात्रा पर रहेंगे। चीन के विदेश मंत्रालय ने आज ये जानकारी दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. Prime Minister Narendra Modi today called upon the citizens to unite to ease burden on national resources stemming the West Asia conflict, one of decades' biggest crises. The Prime Minister was addressing the gathering after inaugurating the Sardar Dham Hostel at Vadodara in Gujarat.
1: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत